FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 29वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 20 अगस्त सन 2026, प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है, आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 6:05 पर चिंतन, इसके पश्चात भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना जयपुर केंद्र से सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची

0: ई 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के सातवें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के आयु युवा जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, एनएसएस वॉलेंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नक्काशीदार चीजें जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं। गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। दिन की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे विचारों के साथ जिनसे मन को नई ऊर्जा और सोच को नई दिशा मिलती है। अब आपके सामने प्रस्तुत है चिंतन। आज के चिंतन का विषय रहेगा फूल।

जब से ये धरती है तब से ही फूल इस धरा को महका रहे हैं। मनुष्य के अस्तित्व से भी पहले इस धरती पर पानी और वनस्पति ने ही अपने सौंदर्य को बिखेरा होगा। दूर दूर तक फैली हुई घाटियां हरियाली की चादर ओढ़े अपने सतरंगी रूप में जब हमारे सामने होती है तब हमें यकीन ही नहीं होता कि ईश्वर कितना मेहरबान है। और प्रकृति की इस छटा में चार चांद लगाते हैं वो पुष्प जो अपनी रंगीनियत से धरती की हरियाली को श्रृंगारित करते हैं। फूल और उनके पराग, उनका रस तितलियों और भंवरों के लिए ही होता है। कितने ही कीट पतंगों का जीवन फूलों पर निर्भर है, एक फूल पर तितली का मंडराना हमें एक अलग ही आनंद देता है। एक फूल का अपने पेड़ पर खिलना ठीक वैसा ही है जैसे किसी माँ की गोद में उसका शिशु खिलखिला रहा हो। एक फूल का खिलना हमें उम्मीद से भर देता है। जब फूल खिलखिलाते हैं तब जीवन के सभी दुख हम भूल जाते हैं। फूलों का खिलना हमें सकारात्मकता से भर देता है और फिर ऊस की बूंदों को अपने आप में समेटे जब गुलाब अपनी पूरी रंगीनियत के साथ मुस्कुराता है तब हमें उसकी तपस्या को भी समझना चाहिए। फूल अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, अपनी खूबसूरती और सुगंध वो हमेशा दूसरों पर न्यौछावर करता है। इसमें एक बड़ा संदेश हम सबके लिए भी है कि हमारी अच्छाइयां मनुष्यता के लिए हों। हमारे आंगन के बगीचे और गमलों में मुस्कुराते फूलों को देखिए, वो हमसे यही कह रहे हैं कि आप भी मुस्कुराइए। आपकी

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमी चैनल है। सुबह का शांत वातावरण और भक्ति के मधुर स्वर मन को सुकून देने के साथ साथ भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार है सतीश भाटिया।

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए।

महाराज दशरथ ने उन्हें ये कहकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाए। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 6:40 हुए हैं, आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुख्य कार्यक्रम, उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही पलों में हमारे किसान भाई बहन सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर लोक भजन आज हम आपको सुनाएंगे प्रेमदास व साथियों की आवाज में।

7:20 पर आप सुनेंगे वातायन। वातायन में आपको सुनाएंगे कहानी। कहानी का विषय है अमृत कलश। कहानीकार रहेंगे भरत चंद्र शर्मा। कुछ देर से कार्यक्रम सुन पाएंगे आप 8:15 पर। कार्यक्रम की थीम रहेगी सद्भावना।

राजस्थानी लोक संगीत 8:45 पर सुगम संगीत का आनंद आप लेंगे 9:10 पर। ठीक 11 बजे भी आप सुगम संगीत सुन सकते हैं। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे 9:30 पर। फिल्म संगीत 11:30 पर। समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से प्रातः 8 बजे, हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से 9 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम 7:30 पर 10 बजे दिन के 12 बजे के बाद भी आप विविध भारती सुन सकते हैं।

एक नजर शाम की सभा की तरफ। 5:05 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी 7 बजे हमारे जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम धीरे धीरे बाता 5:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात्रि 10 बजे।

0: इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न किया। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 6:45 का समय हुआ है। लीजिए सुनिए खेती नी बात।
1: कार्यक्रम हमारा द्वारा सब भाई बहनों ने सरते के लिए बहनों राम राम राम राम बहनों बहनों सर ऊपर अपने बात करो। वर्षा ऋतु में अपने खेत्र में जाओ तो घना प्रकार ना जहरीला जानवर ने अना मौसम में अपने खेत्र में जाओ तो हम सावधानी रखे पड़े इन बार हम चर्चा करो। उपाय वे नहीं खेत्र में काम रहने जाए से उड़े अपने फसलें भी अच्छी थे रही। बारिश में अपने सोयाबीन मक्का कपास दलहनी फसलें करी थी कहीं कि बरसात के मौसम में घना प्रकार ना जीव जानवर थे रही। अने बेला में बरसात में पानी भरा गया जिनकी की जहरीला जानवर है जिनके सांप है बिच्छू है ये वगैरह बाहर तो निकले रहे। अपने जान अगर ध्यान नहीं रखा गलती थी घना पर पॉक पड़ गया तो अपन कल भी शकी घना बहुत घना प्रकार।

0: दुर्घटना थी जाए ने आ समय आवे कि घना जहरीला जानवर खेतरा में रहे किनिक काटी लीधु थी मृत्यु थी गई एवं समाचार आम थी गया है। तो एने बदले अपने थोड़ा विशेष ध्यान रखो पड़े कि जब आप खेतरा में जाओ तो एक तो अच्छा जूता पहन जाओ जो बरसाती जूता आए पेरिन जाओ है। बीजो अपने इंडिया हो तो हेडा ऊपर अगर खेतर महीने अपने जाओ पड़े तो ध्यान थे कि अंबारी में जाओ जो है। इन्हें अलावा पा एक लाकड़ी राखो जेम थे कि है रस्तो बनाते जाइन पर जाओ है जहाँ झाड़िया वगैरह रही उन्हें ध्यान रखो है कि अपना पग में पड़ जा पग में ना तो भी ध्यान रखो कि इनमें कोई प्रकार जानवर वगैरह नहीं लकड़ी थी घास फूस हटा पास अपने आगे बढ़ो बीजो एक ध्यान रखो कि कई भी झाड़िया हो या फिर अपने खेतर में फसल वैसे घास उगी हो तो इन्हें भी ध्यान रखो है कि सावधान थी हटअप भी है वना देखिए डायरेक्टर में हाथ नाखी अपने घास वगैरह उखड़वा जाऊंगा या खरपतवार उखड़वा जाऊंगा थी सके कई प्रकार नो जानवर हो कई प्रकार बिच्छू वगैरह हो भी काटी सके तो होने बात में अपने विशेष ध्यान रखी कार्य करव है। बीजू आ समय में अगर मौसम थोड़ा अगर कोरो हो तो खरपतवार उखाड़वा काम भी कर लेव है अपने खेतर में अपनी फसल हाथे हाथी खरपतवार भी थती जा समय समय पर उखाड़ती पड़ी थती जा हाथे जे अपने खेतर में अपने फसलों में उर्वरक मिलो खाद मिलो इन पोषण खरपतवार प्राप्त करते करी ले अपने फसल कमजोर रही जा खरपतवार बड़ी थी जा तो समय समय पर उखाड़वा काम करव है। बीजो अपने घर ने आसपास बागवानी वगैरह भी करो तो बागवानी भी विशेष ध्यान रखो कि भी अगर झाड़ी हो खरपतवार वगैरह उगी हुई तो इन्हें भी ध्यान रखो हाथी घर ने आसपास खुली जगह पर भी करो तो इन भी अगर कोई बड़ी बड़ी घास थी जा तो इन भी जहरीले जानवर वगैरह नंपाई सके तो इन भी समय समय पर सफाई करते रहो अपने घर ने आसपास भी देखो है कि कई प्रकार जहरीले जानवर वगैरह अणम छुपाने जगह नहीं हो। बीजो बरसात समय जगह जगह पर अपने बरसाती पानी खटते रहे एम थी मच्छर वगैरह भी पनपी जाए तो इन्हें भी समय समय पर साफ सफाई करते रहो घर में आसपास कई नाली वगैरह हो जिनमें पानी खटते रहो तो सफाई कर नाखो है या फिर इनमें मच्छर ना लारवा मर जाए दवाई में छिड़काव करो इन्हें हाथे अपन घर में आसपास कई भी खाली बर्तन पड़ो है जिनमें बरसाती पानी खट्ट थे तो इन्हें भी ध्यान रखो कि वो बर्तन वगैरह नहीं पड़ेगा रहे जिन्हें बरसाती पानी इकट्ठे थी रहे खड्डा वगैरह हो तो इन्हें भी भर देवा है इन चीजों में ध्यान रखो है ताकि अपने दुर्घटना थी बची लेवा। हाँ घर में बाहर अपने जूते वगैरह मिलो तो इनमें भी घना बदम था कि जानवर वगैरह नहीं आगे कोई रही सके अपने बना दी के पैर लंबा तो अपने काटी भी सके तो ध्यान रखो कि जूते वगैरह अपने पैर बारते तो इन्हें अच्छी तरह थी कंकी साफ सफाई कर पसे पैर वो है तो आ कुछ चीजें हैं जो बरसात के मौसम में अपने ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा अपने बिजली में उपकरण है इनमें भी अड़वा में अपने विशेष सतर्कता बरती है अगर बरसात के मौसम में अपने थोड़ी सावधानी कार्य करेंगा तो अपने दुर्घटना थी बची रही सको सर पर अपने बरसात के मौसम में सावधानी रखो इन बारे में बात करी बात ऐसी कर रही थी पर सरो ना समय है पूरा थी गये तो अस्त रीता बेन ने आज्ञा लो
1: राम राम राम राम।
2: अभी आपने खेती की बात सुनी ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए लोकभजन। लोकभजन आज हम आपको सुना रहे हैं प्रेमदास विसाथियों की आवाज में।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से आप सुन रहे हैं लोक भजन प्रेमदास व साथियों की आवाज में। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: प्रेमदास व साथियों की आवाज में गाए लोक भजन यहीं संपन्न किए गए। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 7:20 होने को है। आप सुनेंगे वातायन। वातायन में आपको सुना रहे हैं कहानी अमृत कलश। कहानीकार है भरत चंद्र शर्मा।
1: अमृत महोत्सव वर्ष में ऐसा कहा जाए कि यह संकल्पों का वर्ष है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के जुनून और जज्बे को कायम रखते हुए हम देश के प्रति, मानव जाति की सेवा के प्रति संकल्पित हो, यह हमारी अवधारणा हो। मित्रों, इसी विषय पर आधारित मेरी एक कथा रचना आपके समक्ष प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक है अमृत कलश। चारों तरफ उल्लास का वातावरण है। तिरंगे अपनी शान से लहरा रहे हैं। उमंग उल्लास के इस वातावरण में रत्ना का मन मयूर भी नाच रहा है। आजादी के तराने गूंज रहे हैं। टीवी, क्या रेडियो, क्या अखबार, सभी जगह देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। रत्ना भी भाव विभोर होकर गुनगुनाने लगती है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कुछ ही देर में वो दूसरे गीत पर फिर भाव विभोर हो जाती है। हम अपनी

आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। रत्ना उमंग से सराबोर है, वहीं उसके पति प्रशांत लंबी चादर तान कर सो रहे हैं। चाय का कप लेकर रत्ना उनके सामने खड़ी है, उन्हें जगा रही है कि आज आजादी का महापर्व है और आप अभी तक नहीं उठे। उबासियां लेते हुए प्रशांत ने कहा, आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो आराम करने दो। रत्ना, ये छुट्टी का दिन नहीं है, आजादी का महापर्व है, हमें अपने कर्तव्यों को याद रखने का दिन है। प्रशांत, देखो रत्ना, तुम्हारा आदर्शवाद, तुम्हें मुबारक हो। जीवन में कहां काम आता है आदर्शवाद, तुम्हारे और मेरे पिताजी भी तो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और तुम्हारे पिताजी तो गांधी जी के आश्रम में भी कुछ समय तक रहे। क्या हुआ, किसी ने स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम तक नहीं लिखा? रत्ना, दरअसल मेरे पिता आत्म स्वाभिमानी थे, कभी चलकर स्वयं नाम लिखवाने गए भी नहीं। और तुम्हें पता है, आज जिस स्वच्छ भारत की संकल्पना की बात हम करते हैं, वो तो उनके खून में थी। तभी तो घर के सामने वाली सड़क पर हर त्योहार पर सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाया करते थे, याद है ना तुम्हें? प्रशांत खींच उठे, तो बताओ रत्ना, मैं क्या करूं? स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता तो उसमें कूद जाता। रत्ना, देखो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अब खून देने का यही अर्थ है कि हम अपना खून पसीना देकर राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना सहयोग करें। और तुम्हें स्वामी विवेकानंद जी के शब्द भी तो याद होंगे, उन्होंने क्या कहा है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी देश को कुछ देना सीखें। प्रशांत, रत्ना वो सब तो ठीक है, पर अब मैं तो सरकारी सेवा से भी रिटायर हो गया, न मेरे पास कोई पद है न कोई कद है, और वैसे भी अब आराम के दिन है, दोनों टाइम थोड़ी चहलकदमी करो और आराम से सो। रत्ना, देश सेवा और समाज सेवा करने के लिए न किसी पद की आवश्यकता होती है न किसी कद की, बस एक भावना, एक जज्बा और मन में एक उमंग चाहिए। क्या तुम्हें याद है 5 वर्ष पहले वाली हमारी अंडमान निकोबार यात्रा, अंग्रेजों ने जिन स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दी थी, उन्होंने कैसे कठोर कारावास और यंत्रणा को सहते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वहां उन्हें कोलू के बेल की तरह घाणी में चलाया जाता था और उनकी लाश समुद्र के अंदर फेंक दी जाती थी। और अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इन जैसे कितने ही बलिदानियों को क्या हम भूल जाए, जिन्होंने इस देश को अपना खून देकर आजाद करवाया, उस देश के नवनिर्माण के लिए उनकी स्मृति में

0: कुछ संकल्प लेने का दिन है। प्रशांत को लगा कि उसके दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी पिता भी जैसे आज कुछ संदेश दे रहे। कुछ हलचल हुई, सड़क पर कुछ गरीब बच्चे छोटे छोटे तिरंगे झंडे लेकर बड़ी उमंगों के साथ कुछ गा रहे हैं। तन पर कपड़ा नहीं है पर हाथ में तिरंगा झंडा, उनके जोश और जुनून का यह वातावरण निर्माण कर रहा है कि पढ़े लिखे आदमी को भी बहुत कुछ सीख दे रहा है। रत्ना, देखो आज सुबह सवेरे जल्दी उठकर मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं और उसे किसी यतीम बच्चों की बस्ती में बांट कर आओ। कोरोना के कारण स्कूल तो बंद हैं, छोटे स्कूल या गरीब बच्चे पढ़ते हैं आस लगाकर बैठे होंगे, तो जिस तरह से उत्तरायण पर हम सुबह सवेरे उठकर कुछ नेक कार्य करते हैं, ठीक इसी तरह जाओ और बच्चों की उमंगों के साथ अपना स्वर मिलाओ। तुम्हें पता है कोरोना में ऑक्सीजन की, प्राणवायु की कितनी किल्लत हुई थी। मैंने तो उसी दिन संकल्प लिया पौधे लगाने का और मैं लगा भी रही हूं, पर क्या तुम मेरे इस संकल्प में सहभागी बनोगे? और प्रशांत नए जोश से भर उठे। रत्ना, मैं तुम्हारे उगाए गए पौधों की देखभाल करूंगा, हरे भरे वृक्ष बनाऊंगा और इस पृथ्वी की चुनर को हरी भरी धानी संकल्पित कर देने का परिश्रम करूंगा। तभी रेडियो पर सुमधुर गीत बज उठा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: अमृत कलश कहानी अभी आपने सुनी भरत चंद्र शर्मा से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 7:30 लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, रखवाला फिल्म का नाम था। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे पराया धन फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम है राही प्यार के।

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेला फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज।
1: एक बात पूछूं।

कठपुतली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा, माफ कीजिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम हम हैं राही प्यार के संपन्न होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग

0: परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4था संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग

0: दोहराई।
1: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास लापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
1: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है।

0: घाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केवंझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग, भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमरीकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिन्दुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडेम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। FM में 101.3 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः 8:15 हुए हैं। आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कुछ दिल से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनाली। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। दोस्तों, मन से मन तक जुड़ने का नाम सद्भावना। जी, कहते हैं इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और भावनाओं से होती है। किसके प्रति सम्मान रखना, उसकी खुशियों में खुश होना, उसके दुख में साथ खड़े होना और बिना किसी स्वार्थ के लिए उसका अच्छा सोचना, यही तो है सद्भावना। सद्भावना एक ऐसा सुंदर भाव जो बिना किसी भाषा के भी दिल की बात कह देता है। इसके लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला देना, किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, किसी बुजुर्गों का हाथ थाम लेना या किसी अनजान व्यक्ति के प्रति भी सम्मान भाव रखना, ये सभी सद्भावना के रूप में है।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: दोस्तों हमारा समाज अनेक रंगों से मिलकर बना है, अलग अलग धर्म भाषाएं संस्कृति और परंपराएं हमारी विविधता में सुंदर बनाती है, लेकिन इस विविधता के बीच जो भाव ना है वह सभी को एक दूसरे से जोड़ती है, वह है आपसी प्रेम समानता और सद्भावना। इन सभी के बीच से जुड़े रहने के कारण हम अनेकता में भी एकता के साथ रहते हैं।

दोस्तों, दिलों में प्यार रहे तो दूरियां मिट जाती है। सद्भावनाएं की एक किरण से अंधेरी राह जगमगाने लग जाती है। तो दोस्तों, आइए सद्भावनाओं को केवल एक शब्द ना रहने दें, बल्कि इसे अपने व्यवहार का एक हिस्सा बनाए। किसी के चेहरे की मुस्कान की वजह बने, किसी दुख के उसका सहारा बने। जहां भी जाए अपना साथ प्रेम और सद्भावना को लेके जाए, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR। न्यूज ऑन AIR आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो।

0: जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: हम आपको बता दें कि आज 20 अगस्त है और हम सद्भावना दिवस मना रहे हैं और इसी उपलक्ष में आज हम सद्भावना पर बात कर रहे हैं। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, शांति और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देना।

तो सोई सद्भावना दिवस एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारी विविधता में छिपी एकता है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग परंपराएं, फिर भी हम सब एक देश, एक भावना और एक साझा भविष्य से जुड़े हैं। आइए आज के दिन हम संकल्प लें, अपने आसपास नफरत नहीं करेंगे, संवाद बढ़ाएंगे, सद्भावना सम्मान देंगे और दूरियां नहीं रखेंगे, दिलों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। दिलों को जुड़ने वाली डोर का नाम सद्भावना है, इसे बनाए रखेंगे। अलग अलग होकर भी साथ चलने का नाम है सद्भावना। तो आइए सद्भावनाओं को केवल एक दिवस तक सीमित ना रखें, इसे अपने विचारों, शब्दों और व्यवहार का एक हिस्सा बनाएं। यही एकता की शक्ति है, यही शांति की राह है और यही हमारे सुंदर भारत की पहचान है।

अभी आपने कुछ देर से कार्यक्रम सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए राजस्थानी गीत सीमा मिश्रा की आवाज में।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
4: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट अब 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ,
5: और उसमें 8 से

0: स्टड है।
1: हाँ? पता नहीं,
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

सीमा मिश्रा, बद्री व्यास और साथियों की आवाज में गए इस राजस्थानी गीत के साथ ही राजस्थानी कार्यक्रम यही समाप्त किया। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9 बजने को ही लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

पारित उन विधेयकों का विवरण सदन के समक्ष रखेंगे जिन पर राज्यपाल की अनुमति मिल चुकी है। वहीं आज कई राजनीतिक हस्तियों के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इनमें त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल, विधानसभा के पूर्व सदस्य ब्रह्मदेव कुमावत, विष्णु मोदी, बाबूलाल बैरवा और नवनीत लाल निनामा सहित 7 शख्सियत शामिल हैं। गौरतलब है कि ये सत्र करीब 5 दिन चलने की संभावना है। इस दौरान राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 और राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक सहित वाणिज्य कर और अन्य संशोधन विधेयक सदन में पेश किए जा सकते हैं। इससे पहले कल जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित जिलों में कार्रवाई तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में मतदान कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद जिलों में चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा के साथ ही निगरानी बढ़ाई गई है। सवाईमाधोपुर में सार्वजनिक स्थानों से प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान लोगों से अपने लाइसेंस शुदा हथियार जमा कराने को कहा गया है। कोटपूतली बहरोड़ में बहरोड़ नीमराणा कोटपूतली

0: नौटा और विराटनगर में होर्डिंग तथा बैनर हटाए जा रहे हैं। पाली में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों और आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं अजमेर में निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति रैली, जुलूस और सभा पर रोक लगाई गई है। चुनाव संबंधी शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए जिलों में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। निकाय चुनाव सदस्य की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टेक्सटाइल क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने के उद्देश्य से जयपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसका आयोजन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान की समृद्ध ब्लॉक प्रिंटिंग और टेक्सटाइल विरासत को सर्कुलर इकोनॉमी से जोड़ना जरूरी है। उन्होंने उपचारित जल को मूल्यवान संसाधन बताते हुए उद्योगों से पानी की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने और नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने का आह्वान किया।
1: जैसा हम सबको विदित है कि राजस्थान में हमारे बहुत अच्छे टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं जो वर्ल्ड फेम के हैं, जैसे सांगानेर देख लें, बगरू देख लें, बाड़मेर में होती है ब्लॉक प्रिंटिंग। बट हमें प्रॉब्लम अभी ये फेस करना पड़ रहा है कि जो ट्रीटमेंट एफ्लुएंट है, जो टेक्सटाइल एफ्लुएंट है, उसको ढंग से ट्रीटमेंट हम कैसे करें और उसका री यूज कैसे कर सकें इंडस्ट्रीज, इस पे इसकी फोकस है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि आज जयपुर के प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत दूसरी ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक के सिलसिले में प्रतिनिधि हवा महल, सिटी पैलेस और आमेर पैलेस का भ्रमण करेंगे। इससे उन्हें राजस्थान की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को समझने का अवसर मिलेगा। इससे पहले कल जयपुर में कार्य समूह की बैठक हुई। इस दौरान ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यटन, सतत तथा जिम्मेदार पर्यटन, पर्यटन कौशल विकास, क्षमता निर्माण तथा निर्बाध यात्रा जैसी सुविधा पर विचार विमर्श किया गया। कार्य समूह की ये चर्चा कल होने वाली ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक के लिए आधार तैयार करेगी। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जयपुर में एक ही दिन में 102 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 142 खाद्य नमूने लिए गए। जांच के दौरान अमानक, बासी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई गई करीब 900 किलो खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाए जाने पर 9 कारोबारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जयपुर में बिना लाइसेंस संचालित मिठाई कारखाने में करीब 300 किलोग्राम सोन पापड़ी नष्ट कराई गई और प्रतिष्ठान बंद कराया गया। मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा होने से आउटडोर में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। जेके लॉन अस्पताल के अधीक्षक डॉ RN सहरा ने इस मौसम में लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने खांसी, बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी है।
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वायरल फीवर है या वायरस जनित जो बीमारियां हैं, इनके लिए हम बचाव कर सकते हैं। जैसे आप सभी पता भी जो मौसम चल रहा है, जिससे एक तो मक्खी मच्छर जो है बहुत ज्यादा है, तो हम खाने पे विशेष ध्यान रखें और इस खाने में हमें ये ध्यान रखा होगा कि बाहर का जो भी खाना है या जो फास्ट फूड है वो हम नहीं दें बच्चों को, और हमें घर में ही बनी हुई चीजें उनको खिलाएं, बाहर के लिए बिल्कुल उनको प्रतिषेध नहीं करें और ज्यादा लिक्विड उनको ज्यादा से ज्यादा दें। जब भी बच्चों को अगर बुखार आता है, कोई बीमारी होती है, तो तुरंत उसको चिकित्सक डॉक्टर से उसमें सलाह लेके ही उसका ट्रीटमेंट

0: करवाएं, अब सेल्फ जो भी है ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें उसका।
1: सवाईमाधोपुर के रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का लक्खी मेला 13 सितंबर से शुरू होगा। मुख्य मेला 14 सितंबर को भरेगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने कल मेले की तैयारियों को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला कलेक्टर ने 3 दिन के इस मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरा करने को कहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़े के मामले में श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में ई मित्र संचालकों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि ऑपरेशन क्लीन फसल बीमा के तहत ये कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कालूसर गांव में एक ही जमीन पर कई फसल बीमा पॉलिसियां जारी कर करीब 30 लाख रुपए का फर्जी बीमा क्लेम लेने का मामला सामने आया। जांच में एक ही खसरे के वास्तविक क्षेत्रफल से करीब 7 गुना अधिक क्षेत्र में बीमा कराए जाना पाया गया। विभाग ने 2 दिन पहले टोंक के मालपुरा और जयपुर के शाहपुरा में भी फर्जी फसल बीमा के मामलों में एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से, इस दौरान यूसीसी सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के आचार संहिता की पालना के लिए संबंधित जिला प्रशासनों ने निगरानी बढ़ाई। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि आज जयपुर के प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे और आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान में तेजी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आपको सुना रहे हैं चंदन दास की आवाज में गई गजलें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजिशन

0: पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से आप सुन रहे हैं चंदन दास की आवाज में गई गजलें।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

चंदन दास की आवाज में गई गजलें यही संपन्न की गई। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: IIT प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
0: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नीर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
0: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियां।
0: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियां तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
0: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों ना आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
0: नेकी और पूछ, विमलेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
0: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
2: जी
0: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
0: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
2: जी
0: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की

0: कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
1: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं, तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
0: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
1: जी।
0: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
1: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी।
1: जी।
0: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
1: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई, तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
0: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
1: जी।
0: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं,
1: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
0: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
1: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है, तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
0: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है, तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
1: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है, तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है, वही महान बने हैं।
0: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी।
1: जी।
0: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया, लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
1: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
0: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए, तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
1: जी।
0: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
1: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओं, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है, उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं, तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की

0: हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जलचक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी, जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का, अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
4: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी
5: सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
6: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट गोहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
4: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी।
7: इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
0: अरे आ गए, देखो।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर क्यों?

0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है,
3: पानी की समस्या तो है, हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
3: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।

0: सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, पाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
1: रिम झिम रिम झिम वर्षा आई, चहू और हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
1: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है! सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यू चलता जाता। सभी बोलेंगे, जल चक्र यू चलता जाता।
1: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
2: बहुत अच्छा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
4: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
5: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
6: हरा दिया, हरा दिया।
7: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा
8: जी,
7: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आदमी ने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
8: नाना जी,
7: हा?
8: मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
7: ये कैसी अजीब बात है?
8: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते,
7: हा?
8: हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
7: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
8: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
7: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर

0: नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानी आई है बस।
1: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
0: अच्छा?
1: हाँ, और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
0: हाँ, बेटा
1: जल्दी सुनाइए।
0: अरे सोचने तो दो,
1: जल्दी सोचिए।
0: किसकी कहानी सुनाऊं? देखो
1: अरे जीवन काका।
0: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
2: बाबूजी, सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
0: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
2: जी
0: यहाँ लेट जाओ
2: जी।
0: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु
1: जी,
0: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
1: जी अभी लाई।
0: हाँ हाँ, खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
2: जी
0: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट, देखो ये बारिश की वजह से हुआ है
2: जी।
0: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
2: जी जी जी, जी।
0: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
1: जी, जी, जी, नाना जी।
0: हाँ ला बेटा ला। जीवन
2: जी
0: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो। आ, आ, आ,

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी,
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन

0: पानी में उठने वाली हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था, जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
0: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
0: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
0: जी,
1: जिसे बुखार होता
0: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
0: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
0: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
0: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
0: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
0: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
0: जी।
1: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
0: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
0: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
0: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
0: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
0: जी,
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
0: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक।
0: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
0: हाँ जी।
1: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
0: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
0: जी।
1: समझ गई ना
0: जी।
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
0: जी,
1: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
0: अच्छा।
1: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
0: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
1: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
0: अच्छा।
1: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
0: जी,
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
0: अच्छा।
1: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
0: जी,
1: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
0: अरे वाह।
1: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
0: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
1: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
0: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
1: बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
0: जी,
1: बोलकर बतला देता है।
0: नाना जी।
1: हाँ?
0: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
1: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
0: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
1: है ना
0: जी।
1: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना
0: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बजने को है। निजी सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं और अलग अलग विषय पे चुकी हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,
2: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
2: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
1: जी,
2: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूं।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
2: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। व्हेन आई वाज इन कश्मीर
1: जी,
2: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पंकज रैना, रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं
1: जी।
2: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा,
2: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
1: जी,
2: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे
1: जी।
2: वैसे वो जे एन के असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी
1: जी।
2: उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
1: अच्छा,
2: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे जे एंड के में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्पचर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज। हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: अच्छा।
2: तो

0: हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रायना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कॉम्पिटिशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई, तो दूरदर्शन नया नया आया था 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
1: मैं आपको यहां रोक रही हूं, आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिसपे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से तो
0: मेरे, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
1: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं
0: दोनों।

0: गुजार के दोनों जहान तेरे।
1: आ खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए, या
0: टेलीविजन पे और रेडियो पे। फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था 1972 में, तो मैं वहां जाने लगा तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक जो हमारे प्रोफेसर साहब थे तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था
1: जी।
0: तो मैंने वो बच्चों की आवाज में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। मैंने कहा था मैं भी गाऊं, जिद की मैंने
1: जी जी।
0: और चारों तरफ लोग खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की बात कर रहा हूं मैं। और लोग उस वक्त उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मेरी आवाज एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज थी, ऐ मेरे वतन के लोगों गा रहा था। तो यहां से एक तरह से जैसे बोलते ना वो समझ आने लगा कि हाँ इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा
1: जी।
0: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि बचपन से जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी वो चलता था और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे
1: जी।
0: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, अब हम भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में
1: जी।
0: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए हर प्रांत हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य की एक अलग डायलेक्ट होता है, हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है। लेकिन इन सब चीजों पे हमने जब वर्क किया तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कश्मीर
1: का
0: रहने वाला है या ये चेन्नई का रहने वाला है या ये कलकत्ता का रहने वाला है
1: जी।
0: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल एक जनरलाइज्ड एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे, बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे
1: जी।
0: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
1: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी बने हैं और
0: रहे हैं, बिल्कुल।
1: जी बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है।
0: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक मतलब ये श्रोता हूँ, मैं सुनता हूँ जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8 सुनूं या एक और है 107. जैसे जैसे आकाशवाणी
1: जहाँ जहाँ शहर बदलेंगे हमारे नंबर्स बदल जाते हैं,
0: बदल
1: आपको
0: जाते
1: अलग अलग शहर में अलग अलग दिखाई।
0: लेकिन मुझे इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है बिकॉज एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम मतलब प्रसारण होता है
1: जी।
0: मैं माफी चाहता हूँ उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहाँ ना उच्चारण है ना भाषा है ना कोई उसका

0: अंदाज है, लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
1: जी, हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो अच्छा
0: चलता जाता
1: है।
0: साथ हैं, हम हमेशा साथ।
1: तो अब हम वापस आपके जीवन पे आ जाते हैं।
0: फिर मेरे एक ब्रदर है चंद्रशेखर, वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल, अब भी है वो, जहाँ पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ। घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन करने
1: लगाने के लिए।
0: और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहां, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, इनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मारतंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी। और कभी आकाशवाणी में होता था, कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे, क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव था हमारा
1: जी।
0: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह की वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था, जे एंड के अकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया। छोटे छोटे थे तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका, लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था। फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था, जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार, इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं, तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या। तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर मैं, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई
1: जी।
0: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 16-17-18 साल के थे, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया, तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा।
0: फिर हमारे वहां ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब, तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो
1: जी।
0: मैं प्लेज करते रहता हूँ, रेडियो प्लेज जो होते थे, तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम उसमें प्लेज करते थे। तो वहां से कुछ न कुछ, शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी शुरुआत हुई। तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था कोई ना कुछ, लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं
1: जी,
0: कि उन्होंने हमें खेलने दिया जैसे हम खेलना चाहते
1: जी।
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ, ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे, तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो। फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी शूज लेके आते थे, जाते थे, कभी वो लाते, तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो
1: निकल पड़े थे, मतलब
0: ऐसा था,
1: भाग पड़े थे या निकल पड़े थे?
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया
1: जी।
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था, और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा था, और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहां हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ।

0: क्या, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग, मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की रीडिंग करना और प्ले करना। तो वहां पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे। तो वहां हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली आ गया था,
1: 18-20 ईयर्स का एज,
0: 19-20 साल की उम्र थी। तो वहां मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहां पे उस दौरान फिर मैंने कुछ, वहां भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया, तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में,
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ।
1: का साथ छोड़ा नहीं,
0: रेडियो मेरे साथ में हमेशा रहा है
1: जी।
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना, तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो प्रिपेयर भी करते रहते थे। मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता था।
1: लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती है।
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है, लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन की, हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडल्जेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ वहां दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता, तो एंकरिंग करने का मौका मिला
1: जी।
0: तो इस तरह की सारी चीजें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो,
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था। और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला
0: जी,
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे, उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें, फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या वॉइस एक्टर बनना चाहता हो
1: जी,
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ
1: जी,
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है
1: जी।
0: कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख उनकी वॉइस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज में बेस कैसे आएगा, ऐसा नहीं है। मुझे कहीं लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी, आपके जैसे हमारी आवाज कैसी होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज वो नेचर से मिलती है
1: जी।
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज का रियाज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है, मंद्र सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो है उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती,
1: मतलब काफी बेस अच्छा होता है,
0: तो उसमें आप नीचे की तरफ सा
1: के बाद
0: नीचे आए, नीचे की तरफ जितना जाएंगे
1: जी।
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन्यू आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: है, तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या आ करके ही कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है, किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको।
1: किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए?
0: कोई भी, जैसे उपन्यास हो, कोई भी हो,
1: अच्छा,
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है
1: जी,
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए
1: जी,
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं
1: जी।
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरे संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि क्योंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा, मैंने बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या

0: जब डबिंग करवाता हूं किसी से तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है और उसको कैसे साथ में लेके चलना है। तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है
1: जी,
0: मेरी म्यूजिक की सोल। मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग

0: वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है, तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं
1: जी।
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
1: जी।
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर सकते
1: खुद
0: हैं।
1: खुद के गुरु भी बन सकते
0: खुद
1: हैं।
0: क्या, और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीजें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफी लोग इंस्टीट्यूशन से वो वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग
1: जी। तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो आप पहुंच सकते हैं। और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान रखें।
0: जी जी बिल्कुल, बिना गुरु के ज्ञान तो मिलता नहीं है, और गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनसे सीखूं
1: जी,
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही
1: जी।
0: तो हम बचपन में गए ना वापस?
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी,
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें एक कोई गीत गाकर सुना दें ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाएं।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है जी।
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है
1: जी।
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था, एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र
1: जी,
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, प्यार ही प्यार बेशुमार टाइटल रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास मैं सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूं। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया, उसमें गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूं, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा सौभाग्य
0: है ना, ये होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में
1: जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बम्बई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है,
1: मुझे कोई गम नहीं उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से आपने, तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। थोड़ा
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है।
0: अच्छा।
1: तो ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहां दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, बॉम्बे जाना चाहिए आपको, बॉम्बे में इतना अच्छा आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष
0: जी, जी।
1: अब वो है नहीं
0: जी,
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
0: बड़े महंगे हुआ करते थे
1: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे वो, बहुत ही अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबूलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था ह्यूज रोड पे, तो वहां उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने वो दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बैंड्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और मेरी आंटी घर पे रहती थी, बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कुछ मैसेज मिलता नहीं था,
0: भूल गए।
1: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, थ्री रोजेस चाय।
0: अच्छा,
1: आई थिंक दैट वॉज कुछ साउथ के लिए था।
0: हाँ।
1: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के, बहुत बड़े एड फिल्म मेकर थे ज्योति ठाकुर। तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था ब्रूक बॉन्ड की थी।

0: रोजेज चाहे। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत, मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं। तो आई हैड टू डू माय ओन थिंग्स। तो आई यूज्ड टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहां लोगों से मिलना होता था, वहां बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के लोग थे। तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था। आई थिंक आई यूज्ड टू, मुझे लगता अपने आपको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा। फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी।
1: हाँ।
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था, उसमें किरदार था जीवन का
1: जी।
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया, सूरज जिससे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था। और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहां पे वो लिफ्ट है, वो वहां सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, फिर वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़के का, तो मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था। लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू मोनिश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया। महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती
1: जी।
0: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने,
1: उस समय इतने सारे सीरियल्स कर लिए, गाने तो याद रहते हैं। अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है
0: जी।
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी।
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाएंगे
1: जी। ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र

0: बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
1: क्या बात है, मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत
2: मैं जिंदगी

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं, मुझे भी खुशी है बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं
0: जी,
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध भारती के श्रोताओं को खासकर उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी हमारी बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल गया। अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन किन जगहों पर क्या क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न है जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था। जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख गया था। तो देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था, तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था देव साहब से, वो उनके असिस्टेंट चीफ असिस्टेंट थे। तो देव साहब बहुत प्यार करते थे, मुझे कश्मीरी करके बुलाते थे, ए कश्मीरी कम हियर, कम कम व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात करते थे।
0: थोड़ा और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना।
1: मैं उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया था।
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त अव्वल नंबर, देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटर क्रूज में भी था, जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था, उनका आनंद डबिंग भी था, और महबूब स्टूडियो में वहां भी उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे बांद्रा में। मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया। तो मैं वहां गया था तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब
0: इट इज नॉट,
1: मुझे हाँ ऐसा लग रहा था। उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे और उन्होंने मुझे कहा रायन आई एम रोल रियली सॉरी आई कांट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड आदित्य अबाउट दैट रोल।

0: and I have to give it to him. I cannot go back on my promise. So, you better do that one. That's a good role of a policeman. So, तो मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूं उनकी फिल्मों का भी. तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया. तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा. इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था, मुझे मालूम नहीं ये मेरी, अब मैं अगर को कहूं गलतियां थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था. मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे नेगेटिव रोल में. नेगेटिवली मेरा बहुत अच्छा एक शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं. मेरी आवाज और मेरी पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव रोल सूट मी. तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट गया,
0: थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ, मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, आपका कोई होना चाहिए. देर हैज टू बी सम सपोर्ट. जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है. मैं किसी का नाम नहीं ले रहा
1: जी.
0: लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा ऐसा कोई था नहीं. कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है
1: जी.
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ. फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, कश्मीरी. चूंकि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था, मैं शोज भी करता रहता था.
1: अच्छा.
0: जैसा आपने अंदाजा लगा एक्टिंग और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं, तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों करते थे. तो ऐसा ही हमारा भी कुछ वैसा ही था
1: जी.
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ मैंने वीर ज़ारा, मुझे यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला. और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो. तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में. तो वहां उन्होंने मुझे, आई वाज कॉल्ड 10 बजे, मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था. तो मैं वहां ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में. तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा अच्छा म्यूजिक आता है वो. तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया. उस कव्वाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना. ये सुना सकते
1: थोड़ा सा आप गा के? नहीं, आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे.
0: जो बंदे

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारा शॉर्ट्स ऑन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, कहा पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स ले लें, तो इस तरह से ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज्ड टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका नाम पहले लाहौर 1947 था, अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं, आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है
1: जी।
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज ऑन एयर है जियो हॉटस्टार पे, लुटेरे।
1: अच्छा।
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है
1: जी।
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीजें हैं।
1: आपको आने वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और
0: बहुत शुक्रिया
1: जी। अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है
0: जी,
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है
1: जी।
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या। आपकी चीजों का सराह तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे
1: जी।
0: और उन सब चीजों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है, आपने अपने आपको उसमें कितना
1: ढाला है,
0: एनग्रॉस किया हुआ उसमें ढाला है, तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे तब जाके होता है, तब जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
1: अगर वो हारते हैं टूटते हैं तो क्या करें?
0: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है
1: जी,
0: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्य वाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है, इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना
1: जी।
0: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म
1: जी।
0: मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं
1: जी,
0: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सानी जैसे होते हैं
1: जी,
0: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक
1: जी।
0: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्म जन्मों के कर्म होते हैं
1: जी।
0: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको सक्सेस मतलब गाने का मौका मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही
1: जी।
0: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा, इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं, बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में तो, और आपने

0: उसके लिए कुछ वैसा सेक्रीफाइस नहीं किया होगा ना, तो होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन,
1: बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
0: टूटना नहीं होता है,
1: टूटना नहीं है। जी, तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है, तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
0: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था। मैं जब रफी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो स्टॉलवार्ट्स हैं, मतलब इतने बड़े दिग्गज जो मेल सिंगर्स हुए हैं, उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक, और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके जटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु है ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छा है, उनका भी, वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत थे, दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे। और मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को। तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है, वो हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसमें पहला अंतरा भूपेंद्र ने गाया। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी, बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी, और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो मैं पता नहीं क्यों शुरू से, जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था, उन दिनों दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, मौसम फिल्म का गाना उनका आया, गरोंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई, मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं। तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे, हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था। तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। बोले कहाँ से आया? मैं बोला कश्मीर से आया हूँ। तो बोला चलो चलो चलो ऊपर,
1: मिलने की चाहत ने मिला दी।
0: नहीं, मैं मिलने गया ही था उनसे, तो देखा तो वो अंदर से आ, लेकिन वो नीचे ही मिल गए। तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है, वो ये बातें बातें हुई। फिर उन्होंने गिटार उठा ली, तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने
1: जी।
0: तो बहुत खुश हुए, बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने से भी, उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो महान महान लोगों से मिले भी हैं। तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे
1: जी,
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं। तो मैंने पहला गीत यही गाया था, तो जो मैं दो लाइन आपको सुना के, एक अकेला इस शहर में रात में और

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का
1: जी।
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी,
0: और इन सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहां तक आए, इतना साथ दिया और बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहां चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बंबई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं।
0: बहुत धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन

0: एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: FM 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बज चुके हैं, आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आपको सुना रहे हैं पंकज उदास की आवाज में गई गजलें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: आपने टून किया है आकाशवाणी बांसुरा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं पंकज उदास की आवाज में गई गजलें।

यहीं संपन्न की जाती है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हमने किया है विशाल ददलानी शेखर महादेवन के आवाज में। फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। संगीत शंकर एहसान लोय का है।

अभी आपने तुलसी कुमार और अल्तमस फरीदी की आवाज में ये गीत सुना था। अगला गीत आप सुनेंगे उड़ता पंजाब फिल्म से शाहिद की आवाज में।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: फिल्म से गीत का अगला गीत आप सुनेंगे

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: अभी ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए समाचार।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रूपये बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला गीत है अनोखी रात। इस फिल्म से मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल, संगीत है रोशन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दिल का हीरा। इस फिल्म का गाना आशा भोसले, मोहम्मद रफी और अमित कुमार की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गाना येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, इंदिवर की बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, भरत व्यास के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वीर जारा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गृह प्रवेश। इस फिल्म का गाना भूपिंदर की आवाज, बोल गुलजार के संगीत है कनूरो।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म का ये गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, बोल गुलजार के संगीत कनू रॉय का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: हम पंछी एक डाल के, इस फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना, संगीत इन दत्ता का।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल, और अब किनारा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजें, बोल गुलजार के हैं संगीत आरडी बर्मन का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कण कण में भगवान। इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज, भरत व्यास के बोल और संगीत है शिवराम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आज की जो इबारत है जो हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। कहना है आज तुमसे कुछ कहना है, हाँ मुझे कुछ कहना है। तुम्हारी झुकी झुकी नजर कहती है तुम मेरे थे और मेरे ही हो। आज तक जो कहा तुमने कहा, फिर दिल ने भी तो दिल से जाने क्या कहा। मैंने तो फूलों से कहा था और चंद्रमा से कहा था कि जाओ उनसे कह दो, पर जाने क्या मैंने कही और जाने क्या उसने सुनी। बात बस कुछ कहने की नहीं है, बात यह है कि हम क्या कहते हैं। हमारे कहने की कुछ सीमाएं हैं, सोच समझ कर कहें। कहे हुए शब्द वापस नहीं आते, उतना ही कहें जिससे आपसी सद्भावना बनी रहे। मां ने भी यही कहा था, कभी दिल किसी का न तोड़ो। अब ये न कहना कि हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ था अगर कहने पे आते। ये आज की इबारत है या टेक्स्ट है जो हमने विविध भारती का जो फेसबुक पेज है उस पर पोस्ट किया है। बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ा है और बहुत सारी बातें भी लिख भेजी है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो दिल के किसी कोने में बहुत देर से चुपचाप बैठी होती है, किसी से कह भी नहीं पाते। कभी लगता है कह दूं तो बोझ हल्का हो जाएगा, कभी डर लगता है कि सुनने वाला समझ पाएगा या नहीं। पर सच ये है कि जो बातें हम नहीं कहते वही हमें सबसे ज्यादा थकाती है। कितना कहना है, किससे कहना है, मन इसी उथल पुथल में रहता है। लेकिन कहना जरूरी हो तो उतना ही कहें जितने से दिल हल्का हो जाए। कही गई बातों के शब्दों की गिनती मायने नहीं रखती, मायने रखती है उन शब्दों की सच्चाई और गहराई जो सुनने वाले पर असर कर जाए। इसलिए आज इतना ही कहूंगा कि जो महसूस होता है उसे दबाइए मत, जो दिल से अपने लगे उन अपनों को बताइए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा रोइए और दिल के सुनिए, क्योंकि जिंदगी छोटी है। कहने के लिए कल का इंतजार मत कीजिए। बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। एक हमारी साथी ये भी लिख रही हैं कि शब्दों का खेल भी अजीब है, कभी आंखें सब कह देती है तो कभी जुबान भी खामोश रहती है। लेकिन बात सिर्फ कहने की नहीं मर्यादा की है। सोच समझ कर बोले गए शब्द दिलों को जोड़ते हैं, जबकि बिना सोचे समझे कही गई बात बरसों के रिश्ते तोड़ सकती है। बड़ों ने हमेशा यही सिखाया है कि वाणी में मिठास रखो और किसी का दिल मत दुखाओ। इसलिए उतना ही कहें जिससे आपसी प्यार बना रहे। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब गाने सुनने की ओर हम रुख करते हैं। कार्यक्रम का जो पहला गाना है ये पड़ोसन फिल्म का गाना है। किशोर कुमार की आवाज से राजेंद्र कृष्ण के बोल है। सुनील दत्त सायरा बानू पर फिल्माया गया है, साथ में किशोर कुमार भी इसमें दिखाई देते हैं। संगीत किसका है ये आपको बताना है। कुछ हमारे आज के जो सवाल हैं वो हम आपसे इस गाने के बाद पूछेंगे।

0: इस गाने में कहने का जो अंदाज है वो आपने देखा ही होगा, और बड़ा लुभावना अंदाज है कि एक व्यक्ति जो गीत अच्छे से गा नहीं सकता लेकिन उसका दोस्त पीछे से गाता है, और पहला जो दोस्त है वो सिर्फ होठ हिलाता है और इस तरह से बात बन जाती है कहने की। आर डी बर्मन का ये बड़ा ही प्यारा सा संगीत आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिए। एक हमारी साथी लिख रही है कि पहले हमारी दादी माँ कहती थी कि तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम वह लिखकर भगवान जी के सामने रख दो चिट्ठी में, भगवान जी तुम्हारे मन के सुन लेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हम किसी से नहीं कह पाते हैं और मन बड़ा भारी रहता है, तो ऐसा करने से मन भी हल्का हो जाता है और एक मन से सोच भी निकल जाती है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि कहना यानी शब्दों का सफर, दिल की धड़कन की रवानी, कभी कभी मौज मस्ती प्यार की बोली मस्तानी, तो कभी खामोशी से बोली आंखों की जुबानी, मन की फुसफुसाहट की निशानी, तो कभी बुलंद आवाज में की गई देशभक्ति की वो पुकार रूहानी, मुलायम लफ्जों में सांत्वना देती सहानुभूति की निशानी, तो कभी कभी ओजस्वी विचार जो समाज को दे रोशनी, इस तरह कहते कहते बन जाती है जीवन कहानी बड़ी ही सुहानी। बहुत धन्यवाद आपका इतनी प्यारी बातों के लिए। और जो कुछ आज के हमारे सवाल है कहने पर से, तो पहली बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत अच्छी बातें कही हो और उसने उन बातों को माना भी हो और उन बातों का सामने वाले पर इतना असर हुआ कि उसकी दुनिया ही बदल गई, और बाद में उसने आपसे आकर के धन्यवाद कहा कि आपने इतनी अच्छी बातें मुझसे कही थी और उसकी वजह से हमारे जीवन में बहार आई। अगर ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो तो हमें जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बॉबी फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। इसमें दो आवाजें हैं, एक तो लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी आवाज किसकी है यह आपको बताना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना आपको सुनवाते हैं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: तुम
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम, तुम, तुम, तुम।

0: था लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

लता मंगेशकर के साथ जो दूसरी आवाज है वो शैलेंद्र सिंह की आवाज है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक साथी की ये बात है कि आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में सबको बहुत कुछ कहना है पर सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है और धीरज भी नहीं है। एक साथी हमारी लिख रही है कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। किसी के बात करने का अंदाज इतना मृदुल इतना मधुर होता है कि लगता है उनका हर शब्द शहद जैसा हो और उनके होठों से शब्द फूलों जैसे झड़ते हैं। मन करता है बस वो कहते ही जाए और हम अपलग से उनको सुनते रहें। वहीं दूसरी तरफ कर्कश व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हर कोई बात करने से कतराता है क्योंकि उनके शब्द तीर की तरह चुभन देने वाले होते हैं। अतः बात करने का तरीका भी एक कला है कि आप किस तरह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि मकसद भी जाहिर हो जाए और संबंधों पर भी कोई आंच न आए। जी हाँ, कहने की जो मर्यादा होती है या तरीका होता है बहुत मायने रखता है। हमने आपसे पूछा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हो, उसने आपकी बातें मानी हो और उसके बाद उसका जीवन बदल गया हो और उसने आपको आकर के कहा हो कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें मुझे इतनी अच्छी जो बातें कही थी उसे मैंने अपनाया। ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने तो हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और ख्वाब इस फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज, मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना है। गीत और संगीत किसका है आप बताइए हमें।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गाना प्रदीप का लिखा हुआ, दत्ताराम का संगीत। एक हमारे साथी की ये बात कि कहना हमारे हाथों में होता है, पर उन्हीं शब्दों का अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग लगा लेते हैं। कहना हमारे हाथ में है, पर उसका सही अर्थ समझना दूसरे के हाथ में है। यही समझ गए तो ठीक, वरना मन मुटाव ही हो जाता है। एक साथी ये भी लिख रही है कि कहना तो सबको होता है, पर सुनने वाला कोई प्यारा सा दोस्त हो तो फिर क्या कहना। कहने को बहुत सारी मस्ती हो सकती है, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी ज्यादा से सब बिगड़ भी जाता है और फिर उदासी आ जाती है हमारे हिस्से में। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जिंदगी में हमेशा बड़े काम ही याद नहीं रहते, कभी कभी किसी के कहे गए दोस्त

जिंदगी में हमेशा बड़े काम ही याद नहीं रहते, कभी कभी किसी के कहे गए दो शब्द भी उम्र भर साथ रहते हैं। इसलिए जहां मौका मिले किसी का हौसला बढ़ाइए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए। क्या पता आपकी यही छोटी सी अच्छाई किसी के मुश्किल दिन में थोड़ी सी रोशनी बन जाए। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि कभी कोई मुश्किल में है तो हमारे हौसले से भरे हुए दो शब्द, प्यार के दो शब्द उसके लिए मरहम की तरह काम करते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो ऐसा भी होता है, हमने आपसे पूछा कि ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप हमें बताइए, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा आपने नहीं लिखा है। चलिए हम आपसे एक अगली बात ये पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत साफ दिल से कोई बात कही हो लेकिन उसे वो बात चुभ गई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और उस बात ने सामने वाले व्यक्ति को इतनी खुशी दे डाली कि उसका जीवन ही बदल गया। ऐसी कोई बात हो तो आप हमें बताइए। चलिए अगला गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं। ये गाना है मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में, शैलेंद्र के बोले, एसएन त्रिपाठी का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम। जी हाँ, कौन सी फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

हर एक के बस की बात नहीं होती। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कहना जितना सहज है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। सुकरात ने कहा था कि बोलिए ताकि मैं आपको देख सकूं। कथन की सत्यता, स्पष्टता और मिठास ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कहना भी एक कला है और चुप रहना भी। कुछ बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखें कह देती है, खामोशी समझ लेती है और कभी कोई फूल या चांद हमारी तरफ से वो बात कह जाता है जिसे हम कह नहीं पाते। मगर रिश्तों में शब्दों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। होठों से निकला हर लफ्ज सामने वाले के मन में कहीं ठहर जाता है। रिश्तों की गरिमा और मिठास बनाए रखने के लिए हर बात कह देना जरूरी नहीं, कुछ जज्बातों को दिल की तहों में महफूज रख देना ही ठीक होता है। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम तेरे कितने नाम, इस फिल्म का गाना हेमलता की आवाज है, अनजान के बोल रविंद्र जैन का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है यह आपको

ये जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म का नाम है कुंवारी, और 1966 की यानी कि 1966 की ये फिल्म है। कुछ श्रोताओं ने इस बारे में सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि यूं तो अपनी बात सभी कह देते हैं, पर दूसरे की गलती पर या सच बात को मौके पर और किसी के मुंह पर कहना

0: सचिन और सारिका पर फिल्म आया गया ये गाना आज तक जो कहा तुमने कहा। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं या हमारे आसपास होते हैं या हमारे दोस्तों में या ऑफिस में या घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम अपनी कोई बात कहने जाते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में भी या आपके आसपास या आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है कि जिनको बहुत कहने की आदत है पर सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं? और जब ऐसा होता है तब आपको कैसा लगता है, क्या महसूस होता है कि सामने वाला बोले जा रहा है, कहे जा रहा है, लेकिन आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि कहने की बात यह है कि मंजू जी आज कुछ कम सुने सुंदर नायाब गीत आप सुनवा रही हैं तो ये भी हमें अच्छा लग रहा है। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मुझे कुछ कहना है कि जब मेरे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे तब मेरे पापा ने एक बात कही थी और आज तक मुझे याद है। पापा ने कहा, बेटा जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करोगी, भ्रम में रहोगी और पीछे मुड़कर देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। आगे देखो, वो बात आज तक याद है और यही बात मैं अपने जैसी जो भी मेरी दोस्त है जिन हालातों से वो गुजर रही है उन्हें मैं ये बात कहती हूं या सलाह देती हूं। धन्यवाद आपका। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि ये रचना यानी कि इस टेक्स्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये संदेश देती कि जब जुबान पर लगाम और दिल में रिश्तों के लिए सम्मान हो तो खामोशी भी कड़वे शब्दों से ज्यादा असरदार और गरिमामय होती है। बोलने की आजादी के साथ एक सीमा भी जुड़ी होती है। कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए भाषा में सद्भावना और संतुलन होना जरूरी है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रखवाला फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है या आप बताइए।
1: रोक

रखवाला फिल्म का गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात के कहने में तो सिर्फ तीन शब्द समाये हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि एक बार मुंह से निकले लफ्ज फिर वापिस नहीं आते। कोशिश करें कि हम हमेशा कहने में सुंदर कहें और सुनने में धीरज बरतें, क्योंकि आपके कहे कटु शब्द में दांत तो नहीं होते, पर वे शब्द काट लें तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। कहने में बड़ी शक्ति है, हाँ शब्दों के चयन ही आपकी असल पहचान होते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज। मिली फिल्म का गाना है ये, लता मंगेशकर की आवाज है, एस जी बर्मन का संगीत है। गीत किसने लिखा है ये आप बताइए।

योगेश का लिखा हुआ ये गाना जो अभी आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात सुनाने में सदा उत्सुक रहते हैं, मगर सामने वाले की बात सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते। बात पूरी भी नहीं होने देते और अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये कहना पड़ता है कि प्लीज सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कहना पड़ता है। एक साथी ये भी लिखते हैं कि कौन सुनेगा, किससे कहें हम, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, सही बात है कि जब तक कोई सुनने वाला न हो तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। अक्सर लोग ऐसा ही सोच लिया करते हैं और सवाल भी बहुत उम्दा है, लेकिन सांसारिक झंझावातों में उलझा मन ये समझ ही नहीं पाता कि ये संसार तो एक दिखावा है और असली कहने की नहीं अपितु सुनने वाला कोई और नहीं अपितु स्वयं हमारे ही अंदर है और उसे हमें पहचानना है। धन्यवाद आपका। चलिए, भरत मिलाप इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का।

भरत मिलाप फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही है कि सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, कहते हैं इसी जीभ से विष और रस दोनों निकलते हैं, लेकिन चुनना तो हमारा स्वभाव है, कही हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, एक झिझक सी होती है और कह नहीं पाते कि क्या सोचेंगे, दिल की बात दिल में ही रह जाती है, मन में कई विचार उठते हैं, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात दूसरों पर बुरा असर डाल सकती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बोल देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जो लोग ज्यादा बोलने के आदि होते हैं उनको अक्सर याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार कौन सी बात कही थी और कौन सी नहीं, वो याद रखने के मामले में असफल होते हैं, कारण कि वो धैर्य से कभी कोई बात ना सुनते हैं और ना कहने के मामले में भी वो अधीर ही नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अदालत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, ये खूबसूरत सा संगीत किसका है और कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है या

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। और एक साथी की ये बात कि जब दिल में जज्बात बहुत गहरे हों और अपनों से बात न हो पाए तो खामोशियां भी एक भाषा बन जाती है। ये एहसास बहुत खूबसूरत और थोड़ा दर्द भरा होता है, जहां उम्मीद और तन्हाई साथ साथ चलती है। दिल की बातें और उम्मीद चांद तारों का सहारा होता है। जब कोई अपना दूर होता है तो आसमान और कुदरत ही हमारे हमराज बनते हैं और अनकहे जज्बात कुछ बातें जुबान पर आने से पहले ही आंखों और दिल में बस जाती है। ये उम्मीद होती है कि जो दिल को संभाले रखती है कि एक दिन बात जरूर पहुंचेगी। चलिए अगला गाना प्यासा फिल्म का ये गाना गीता दत्त की आवाज में है।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, ये गाना हम आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना जो हम सुनवा पाएंगे वो आपको जरूर सुनवाएंगे एक छोटी सी बात के साथ कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खुशियां बांटने के लिए हमेशा बहुत कुछ नहीं चाहिए, कभी कभी एक अच्छा शब्द ही काफी होता है। चलिए, चाचा भतीजा फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

रणधीर कपूर और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना यही था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब इजाजत दीजिए आप सभी को, मंजू द्विवेदी का नमस्कार।

सद्भावना दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता, आपसी विश्वास और प्रेम की भावना होती है। अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचार होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तभी एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। ये दिन हमें सिखाता है कि मतभेद होना स्वाभाविक है लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने व्यवहार में विनम्रता, सहिष्णुता और सहयोग को स्थान दें तो परिवार से लेकर पूरे समाज तक सौहार्द का वातावरण बन सकता है। सद्भाव ही वो सूत्र है जो लोगों को दिल से जोड़ता है।

आज के समय में जब छोटी छोटी बातों पर दूरियां और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, तब सद्भावना दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये अवसर हमें याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों और व्यवहार से होती है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, संवाद बनाए रखें और हर परिस्थिति में मानवता को सर्वोपरि रखें। आइए हम ये संकल्प लें कि अपने शब्दों, अपने आचरण और अपने कर्मों से प्रेम, सम्मान और विश्वास का ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

0: सद्भावना दिवस केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सकारात्मक सोच है। यदि हम अपने घर, कार्यस्थल, मित्रों और समाज में परस्पर सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना को अपनाएं, तो अनेक समस्याएं अपने आप ही कम हो सकती हैं। एक मुस्कान, एक मधुर शब्द और एक छोटा सा सहयोग भी रिश्तों में नई गर्माहट भर सकता है। आइए इस अवसर पर हम ये संकल्प लें कि किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता प्रेम और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। यही सच्ची सद्भावना है और यही एक सशक्त भारत की पहचान भी है।
1: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खन

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज

0: कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
0: हमारी मेरीटाइम लाइफ लाइन्स बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाई और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देव भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए

0: भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
1: मैं देश की जनता को अपील करना

0: फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
1: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के 30वें सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
3: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
4: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल

0: 20 के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये जिंगारो फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और साथियों का गाया हुआ। प्रेम धवन के बोल, संगीत है SN त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, संगीत एस मोहिंदर का, फिल्म का नाम है जरक खान।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहां उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में लीजिए अब सुनिए प्यार का बंधन इस फिल्म का गाना। कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है रवि का।

0: रोज भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो भी बहार आई गांवों में खिली गली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना मुझे जीने दो इस फिल्म से है। आशा भोंसले की आवाज, सहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।
1: मदी मरी

0: सरस्वतिया हर संसवतिया नलाओ शाम पैया पड़ी संसवतिया नलाओ शाम।
1: लीजिए अब सुनिए।

0: पकड़ हाय ये पकड़ हाय हाय हाय तुम हो हसी कहाँ के
1: हम चांद है तुम आके
0: हाय हाय गुरूर इतना
1: हाँ हाँ हुजूर इतना
0: उप ये अदा है ये नया
1: हाँ?

0: गुड़िया
1: आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का गाना सुरैया की आवाज, कंवर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव, आपको भी नमस्कार आरती।
1: चंचल जी आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
1: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोलियां। जो भाषाएं कहते हैं ना, हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ है।
0: हाँ।
1: तो इसमें बहुत ही अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं।
0: बिल्कुल। और संवाद के लिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबका संवाद करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक जरिया होता है, वो होता है भाषा।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार जिनके पास भाषा नहीं होती, वहां इशारों में भी बातें होती हैं, लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है। बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं कि आज जिनका महत्व खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रही है, उन्हीं के बारे में बात की जाएगी। और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो कौन है?
1: वो है गोदावरी दत्त, जो कि

0: चित्रकार हैं और बहुत ही संघर्षशील महिला हैं, तो उनके बारे में।
1: और चित्रकार की बात आती है ना, चित्रकारी में बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग्स हम बनाते हैं, तो कुछ खास शैली इनकी है।
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है तो क्या कहना है,
0: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में क्योंकि हो सकता है ये चीजें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है जैसा कि आप जानते हैं, और सारी सखियां सब सखा सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
1: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत जरूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए इस बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप या किसी भी समय कुछ भी खाते हैं, और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं वो बहुत सारी चीजें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं ऐसा लगने लगता है।
0: अलग अलग तरीके की चीजों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है, चटोरापन कह सकते हैं।
1: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
0: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप। हाँ। कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप बताइए।
1: ये सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
0: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए सद्भावना का मतलब क्या होता है, सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी भावना से किया हुआ कार्य।
1: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
0: बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं, यही विविधता हमारी ताकत भी है। और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
1: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिलाकर सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे,
0: बिल्कुल शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
1: और ये खाली एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
0: बिल्कुल, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहां पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
1: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रगति करें,
0: गीत सुनते हैं।

0: तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहां बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना बच के शिकारी शिकार करना तो जानवरों के या किसी जानवर को उसका खेलते हुए उनका शिकार करते हुए उनको पालन पोषण करते हुए इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते हैं।
1: हाँ, वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके ऊपर, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती कि प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट इस तरह के पेंट देखते हैं कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गांव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहां रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो है गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने की नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल, और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और न ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
0: बिल्कुल, ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है पर्व है तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी। अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं जो अपने आगे जो काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं और होश संभालते बड़े होते माँ मौसी चाची दादी उनको देखकर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल, संयुक्त परिवार होते थे उस समय तो सब साथ में होते थे तो कोई कोई भी सिखा देता था, है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी। उन्होंने पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गई और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
0: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की मां बन चुकी थी।
1: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं और अपनी मां से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
0: और जैसे कि हमने कहा ना बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी।

0: छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किस्से बताती हैं, उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की। लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दुह रही है और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहां बस एक गिलसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
1: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उनने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था
0: बिल्कुल जिस पर उन्होंने वो चित्र बना दिए थे। और गोदावरी बहुत खुशी के साथ मासूम में इसके साथ इस बात को बताती है कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए, उनकी बहुत प्रशंसा भी की। और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
1: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
0: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते गाने भी सुनते हैं, तो सुन ले।
1: हाँ।

तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग

0: ₹10 और बी ग्रेड की पेंटिंग के ₹7 और सी ग्रेड की पेंटिंग के ₹5 मिलाकर देते। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के ₹25 दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा। और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहां कहां तक उनकी जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियां लगने लगी। और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोक चार संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से आबद्ध होकर चित्रों में एक तिलस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादू असर पैदा हो जाता है।
0: बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल। अपनी सुस्पष्ट सोच और तल्लीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती है।
0: तभी तो उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
1: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पर ये रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी है। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है। उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शाल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है।
0: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
1: बिल्कुल।
0: और अब सुनिए गाना,
1: एक गीत।

0: आसमान से
1: छेड़े हमको
0: जान जान के
1: ऐसे निकलूं हम
0: यहीं पर खो जाए ना देखो मौसम
1: क्या

0: दरिया की हर मांग में अरमानों का जोर है,
1: दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है।
0: हो लहरें डोले
1: झूम झूम के
0: साहिल का मुंह
1: झूम झूम के,
0: ऐसे में क्यों हम
1: दीवाने हो जाएगा।
0: देखो मौसम
1: क्या बहार है,
0: सारा आलम
1: बेकरार है,
0: ऐसे में क्यों हम
1: दीवाने हो जाएगा।
2: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती है आरती और जीवंत समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
3: बिल्कुल सही बात है। और जैसे अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है।
2: कहते तो है कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे पानी।
3: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
2: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जानें। और ये हो सकती है जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलू, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
3: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं
2: था।
3: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कारबी, खासी, कोडवा, कुकबराक,
2: नाम भी शायद हमने सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
3: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
2: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो समय संकट में है, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है। भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, या कुछ भाषाएं लुप्त हो गई है। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं को जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है। अगर लिपि से हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
3: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहाली, दारमा, गांगटे, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
2: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है। और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं के जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता है वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
3: बिल्कुल,
2: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए, बच्चों को उसके शब्द

0: उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये बहुत सही बात है। कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा।
1: बिल्कुल। और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं मिल सकती। किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोकमानस की सहजता दिखाई पड़ती है। जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई इनकी परंपराएं जो है जुड़ी हुई, जो उनके लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी।
0: एक संदेश के माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सी डेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं। हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसे उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से पढ़ सकता है।
0: बिल्कुल, जितना महत्व विदेशी भाषाओं का है या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी जरूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे काम आती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है उसका अपना अलग महत्व है।
1: साथ ही हम जहां रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत जरूरी है। उस जगह की भाषा का भी ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
0: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने हैं कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: आज चंचल एक हमारी जो श्रोता है उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती है कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थी तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ है वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ है, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब डीजे का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियां होती थी ना उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था उसका एक अपना ही रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में महिलाएं या पुरुष उन लोग गीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद लेकिन यह नहीं हो सकता। और बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने रिश्ते जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं है।
0: और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत जरूरत और संतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए, फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज्यादा स्वाद पर आ जाता है।
1: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है। हाँ। और पैसा समय ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है और सेहत अनुशासन लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो और वो अपने परिवार काम पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है,
0: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए

0: खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें, लेकिन भोजन की अति ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज आपको मन कर रहा है खाने का, तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए। जरूरत नहीं कि इसको बहुत ज्यादा आप खा लें।
1: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
0: गीत सुनते हैं।

0: खाते हैं तो भी खाते हैं,
1: हाँ।
0: या बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
1: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
0: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
1: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयां खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी जरूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
0: बिल्कुल। और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दे और मन को संतुष्टि भी दे।
1: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए नहीं खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
0: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता भी है वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली स्वाद तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं। बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए,
1: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं ले। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझे आती तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके. हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: हैं?
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो.
1: बिल्कुल अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना
0: बिल्कुल
1: ही बहुत जरूरी है. हमारी सेहत के लिए मच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, ये सारी बातें शामिल होती है ना.
0: बिल्कुल.
1: तो ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं.
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते पहनने में, तो उसे किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं मैंने निकाले तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी.
1: हाँ, ये तो जो आपने कहा ना कई बार अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े हैं, बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेती है वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते हैं.
0: अगर आपकी इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए जिसके वो पहनने उनके काम आए.
1: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना. ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं.
0: बिल्कुल, और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं, और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए. इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं.
1: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं.

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्रामीण नवरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए, पर लगाए ना तो आज बहुत बहुत बहुत खुश हो रही है।
0: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
1: मैम 19 साल की हूँ।
0: शास्त्रीय संगीत सीखती है, तो इसमें क्या क्या चीज सीख रही है?
1: हाँ मैम, गायन भी सीख रही हूँ और हारमोनियम पर प्ले करना भी सीख रही हूँ।
0: यानी वादन गायन दोनों आप सीख रही हैं। हारमोनियम पे आप कितने तरह के गाने निकाल लेती हैं?
1: मैम गाने तो नहीं, पर प्राग मतलब मैं एग्जाम दे कर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी ऐसा आता है ना, जब वो सीख रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहार राज्य में एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए आप।
1: जन जन बाजे गम पम गम गम पनी पनी सा पनी सानी द पम प गम गरे सानी सा जन जन मोरी बाजे गम सागम पगम।

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूं।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा, जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना, वो हम तक पहुंचता है। जब आप लोग खेती करते हैं ना, तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी और आपके कार्यक्रम विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: जी निकलता है, एक बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो उसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के, फिर है ना, कुछ अपने लिए रख लेते होंगे।
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास में।
0: अच्छा अच्छा, और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं।
1: भारतीय कार्यक्रम हेलो फरमाइश सखी सहेली, और वो आपसे इतना समाचार बजे आता है, त्रिवेणी क्षेत्रीय लोग सभी सुनते हैं, चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है। और बताइए अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है,
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
1: हाँ है, 20 भुजा देवी,
0: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है
0: जी। और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: सभी मिलते हैं कि खाने पीने की सब्जी मंडी, वो तो जिला है अपना गुना। तो
0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है, तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू का अग्निक आवाज में हमेरा प्यार की बुलंदा।
0: तो गोपाल जी लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहे हैं, बिमल बसुमतारी मैम।
0: बिमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध भारती सुन के, रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं?
1: जी मैं तो, मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं?
1: जी मैम, हम सारा कपड़ा सिलाई करता है, जैसे हो गया जेंट्स हो गया लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम।
0: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं? तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए, कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
1: जी मैम, हम 12 साल से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम।
0: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
1: जी मैम, हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था।
0: तो बाकायदा कोई कोर्स किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
1: उधर दुकान एक था, वो दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम।
0: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं, दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं, सिलाई कोई और करता है?
1: हम खुद सिलाई भी करता है, खुद कटिंग करता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
1: जी मैम, मैं खुद करता हूँ, मेरा छोटा मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
0: अरे वाह, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
0: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
1: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है ना, धान का, वही करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
0: अच्छी बात है। और असम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
1: असम का बारे में जैसे हो गया, हम लोग गुवाहाटी में है कामाख्या टेम्पल, वो भी ठीक है, कहीं कहीं बहुत है मैम। हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है,
0: बड़ा खूबसूरत हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
1: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से, और विविध बातें भी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी मैम, मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, ईटानगर है, लखनऊ है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए।
0: तो चलिए आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है, मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288 यानी 02228670288। इसका दूसरा नंबर है 4002466-2 यानी 02240024662। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है

0: 2867028288। इसका दूसरा नंबर है 4002466 2, यानी 02240024662। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हम आपको जानकारी देंगे। हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको सुनाते हमारी आज की सभा की शेष रहे कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ प्रमुख सुनेंगे ठीक 5:05 पर युवा साथियों का मुंबसन कार्यक्रम युववाणी। प्रायोजित कार्यक्रम धीरे की बात आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम के 5:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 6:00। हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम के 6:30 पर। राजस्थान में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर।

रात्रि के 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे से। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोता, ये थे हमारी आज की सभा की शेष रहे कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी पात्रकरण सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:55 पर। सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। चिंतन आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से 6:05 पर। वंदन आप सुनेंगे 6:10 पर। राम चरण सिंह मानस गाना सुनेंगे 6:30 पर। कार्यक्रम खेतनी बात आप सुनेंगे 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:50 पर। वातन आप सुनेंगे 7:20 पर।

शाम के 7 बजे हमारा किसान श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर।

विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 7:30 पर। समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह के 8 बजे। कार्यक्रम कुद्दी से आप सुनेंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर।

सुबह के 9 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी प्रादेशिक समाचार। सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:10 पर। एनसीटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 9:30 पर। सुबह के 10 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

हमारे केंद्र से सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह के 11 बजे, फिल्म संगीत आप सुनेंगे 11:30 पर, दोपहर के 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 5:05 हुए ही प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुन रहे सभी मेरे साथियों को आपकी दोस्त शिफाली कलाल का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। आज की हमारी विशेष वार्ता का विषय है विश्व मच्छर दिवस और मौसमी बीमारियों से बचाव। दोस्तों, हर वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी देना है। दोस्तों, मच्छर आकार में भले ही बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इससे फैलने वाली बीमारियां हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी इन्फ्लुएंजा जैसी कई बीमारियां मच्छरों के माध्यम से फैलती है। मानसून के मौसम में जगह जगह पानी जमा होने के कारण मच्छरों के पनपने की संभावना और बढ़ जाती है। मच्छरों से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है हम अपने आसपास पानी जमा न होने दें। घर की छत, कूलर

0: गमले, पुराने टायर, डिब्बे और अन्य ऐसी जगहों की नियमित सफाई करें जहां पानी इकट्ठा हो सकता है। कूलर का पानी नियमित रूप से बदले और पानी की टंकियों को ढककर रखें, क्योंकि दोस्तों अगर मच्छर एक बार पनप गए तो वो घर के अंदर आ जाते हैं और खिड़कियों के माध्यम से, जिससे हम रात के समय में वो हमें काटते हैं और हम बहुत सी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत स्तर पर भी सावधानियां जरूरी है। पूरी बाजू के कपड़े पहने, सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और आवश्यकता पड़ने पर मच्छरोधी साधनों का उपयोग करें। बच्चों को विशेष रूप से मच्छरों से बचा कर रखें। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छ पानी और पौष्टिक भोजन का सेवन करें। भोजन को ढककर रखें और खाना खाने से पहले तथा शौचालय के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोए। खुले में बिकने वाले अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से भी बचना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, अत्यधिक कमजोरी, उल्टी या त्वचा पर लाल चकते जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे सामान्य बुखार समझ कर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि समय पर चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। बिना सलाह के दवाई लेने से बचे। दोस्तों मच्छरों से होने वाले बीमारियों की रोकथाम केवल सरकार या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार अपने घर और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखे और पानी जमा न होने दे तो मच्छरों के प्रजनन को काफी हद तक रोका जा सकता है। आइए विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर हम संकल्प ले कि अपने घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और अपने परिवार तथा समाज को मच्छर जनित एवं मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए जागरूक करेंगे। सावधानी सुरक्षा है और जागरूकता ही स्वच्छ समाज की पहचान है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और सुनते ही ये प्यारा सा गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है। सुन कटे फटे या पुराने नोट को
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा।
3: हाँ जिससे तू हमें पहला पार्टी देगा।
2: आज ये कहता है स्मार्ट बनो कूल बन रहो।
4: दोस्तों इसी के साथ कार्यक्रम में हम अगली चर्चा को जारी करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय है राजीव गांधी जन्मदिवस और सद्भावना दिवस। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। उनकी जयंती को देश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य देश में आपसी प्रेम भाईचारे एकता और सद्भावना की भावना को मजबूत करना है। दोस्तों राजीव गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे देश में विज्ञान तकनीक और संचार के विकास को आगे बढ़ाने के पक्षधर थे। उनके कार्यकाल में कंप्यूटर और दूरसंचार के क्षेत्र को बढ़ावा मिला जिसने आगे चलकर भारत के तकनीकी विकास की नींव को मजबूत करने में योगदान दिया। राजीव गांधी युवाओं का देश की शक्ति मानते थे। उन्होंने युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज भारत की बड़ी युवा आबादी को देखते हुए उनका यह विचार विशेष रूप से प्रासंगिक है कि युवा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सद्भावना दिवस हमें यह याद दिलाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता में एकता है। हमारे देश में अलग अलग धर्म भाषाएं संस्कृति और परंपरा है लेकिन हम सब एक राष्ट्र का हिस्सा है। सद्भावना का अर्थ केवल एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना ही नहीं है बल्कि दूसरों के विचार संस्कृति और अधिकारों का सम्मान करना भी है। जब समाज में आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता है तो देश की प्रगति का रास्ता भी मजबूत होता है। आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों के कारण सूचनाएं

बहुत तेजी से फैलती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारियों को बिना सत्यापन के आगे न बढ़ाएं। हमें समाज में शांति, भाईचारे और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, आइए राजीव गांधी की जयंती और सद्भावना दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हम सभी के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखेंगे तथा अपने समाज में शांति और भाईचारे को मजबूत बनाने में योगदान देंगे। एकता प्रेम और सद्भावना की मजबूत राष्ट्र की आधारशिला है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और कार्यक्रम में आगे सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ कार्यक्रम में अगली चर्चा को जारी करते हैं। इस गीत के साथ आप जुड़ गए हैं और फिर से एक बार आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। हमारा अगली चर्चा का विषय है अक्षय ऊर्जा दिवस। दोस्तों, हर वर्ष 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को अक्षय एवं नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व के प्रति जागरूक करना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घरों में बिजली, उद्योगों में उत्पादन, कृषि में सिंचाई और परिवहन जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से पूरा होता रहा, लेकिन इन संसाधनों की मात्रा सीमित है और इनसे अधिक उपयोग से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में अक्षय ऊर्जा हमारे लिए एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आती है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा इसके प्रमुख उदाहरण है। भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। हमारे देश में वर्ष के अधिकांश समय पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध रहता है। घरों, स्कूलों, कार्यालय और खेतों में सोलर पैनल लगाकर बिजली की जरूरत को स्वच्छ ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तेज हवाएं वाले क्षेत्रों में पवन चक्कियों के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास गैस और कृषि अवशेषों से ऊर्जा प्राप्त करना भी उपयोगी हो सकता है। अक्षय ऊर्जा का महत्व केवल बिजली पैदा करने तक सीमित नहीं है। इससे प्रदूषण कम करने, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण तैयार करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, हम आम नागरिक भी इससे अपना योगदान दे सकते हैं। अनावश्यक बिजली का उपयोग न करके एलईडी बल्बों का प्रयोग करें, दिन के समय में प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करें और सौर ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों की प्राथमिकता दें। जहां संभव हो सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों का अपनाएं। दोस्तों, ऊर्जा की बचत भी ऊर्जा उत्पादन के बराबर महत्वपूर्ण है। यदि आज हम ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए

उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख पाएंगे। आइए अक्षय ऊर्जा दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, ऊर्जा की बचत करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। स्वच्छ ऊर्जा हरित भविष्य की मजबूत आधारशिला है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सुनती हूँ ये प्यारा सा गीत।

0: एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धीणेरी बाता।
1: धीणेरी बात्या, बात्या, बात्या।

दोस्तों, इस गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम निर्माणी समाप्त करने का। इजाजत दीजिए आपके दोस्त शेफाली कलर को कार्यक्रम निर्माणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आइए सुनते आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम ढेरी बातें।

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब, छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार किया बैठा हो।
2: काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरो दूध भी कौन दियो और विरोध जीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे भी बातिया। काकी साहब, कार्यक्रम सुनने से मिल सके पशुपालन से जुड़ी हो रही सभी समस्या का समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजित है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातिया, धीनेरी बातिया कार्यक्रम सुनने वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: बंशी भाईरा भी
4: मोकड़ा मोकड़ा
5: राम राम
4: राम राम सा राम राम सा। देखो सामने को महीनो है और बिरखा भी ठीक होगी
5: है, लकड़ी हो रही है बिरखा तो भाई।
4: बिल्कुल सा, अपन एक बात बताऊं धाने, मैंने मिलिया है अमरचंद जी।
5: अमरचंद जी किस्सा
4: जाने को नहीं, अपने गांव आया करे खुलने गांव रही है।
5: अच्छा,
4: बे मैंने आ कहो कि हूँ तो देखो 12 महीना मारे बरसात रो पानी ज पियू
5: है।
4: हाँ,
5: कई बात मने, थे
4: मैंने आश्चर्य हो, मैंने ये किया कि देखो मारे फैक्ट्री है।
5: अच्छा,
4: फैक्ट्री में जितो भी छत पर पानी आए वो सगड़ो मैं कुंडी पर ले लू और 12 महीने में वो ही पानी पीऊ और मैं बिल्कुल निरोग हूँ।
5: आज रे युग रे मायने भी इन तरीके से लोग सजग होर परा।
4: हाँ,
5: और बरसात रे पानी में इकट्ठो कर उन्हें इस्तेमाल करे, उन्हें उपयोग करे।
4: बिल्कुल सा, और लगो लगा बात और कही के दो मैं और बना रही हूँ फैक्ट्रिया भी, रे मायने भी मैं यहाँ वाली कुंडी बना रही हूँ के बरसात रो पानी है वो मैं सुरक्षित रख सकूँ और 12 महीना पी सकूँ।
5: तो धड़क तो फिर इनको मतलब वो हो कि फैक्ट्रिया रे साथ साथ उन्हारे जगह घर है नी, उन्हारे मायने भी मैं कुंडी बना रखोड़ी है बरसात है पानी सर।
4: बिल्कुल सर, और आज की चेतना है नी, आप हर बार जब भी चौपाल में बैठा तो पर्यावरण संरक्षण की भी बात करा, जल बचत भी बात करा और नशे से दूर रहनी भी ये अगली बातें आप कह रहा।
5: मैं बात शामिल करा कि भी जिका आम जन रहे हितरी हुए।
4: हाँ, जिके सु जागरूकता फैले और बीरो असर भी हो। मैंने आ बात कही कि मैं थानु जी को कार्यक्रम मैं धीनेरी बातें बहुत सुनिया करूं, मैंने अच्छो लगे रहे यहां जब थी बातें करो नी, जब मारा मन में भी आया कि नहीं वो संकल्प लेना चाहिए कि पानी की बचत बहुत जरूरी है।
5: भाई देखो सा, एड़ा जगह श्रोता है जगह सजग है और आपने जी की बातें है जी की काम आई है उन्होंने मैं जीवन के मायने ढाले और उन्होंने लाभ मिले तो फिर आ तो भाई देखो सा सुने में सुहाग्य वाली बात।
4: बिल्कुल सर, एक सामने प्रश्न और करियो क्या हरखू भाई जी, हूँ थाने लाख रुपया दू थी मैंने 1 लीटर पानी बनार बता दो।
5: वो सवाल तो भाई टिड्डो है
4: जब आप बना को नहीं सका तो बचा तो सका ना।
5: बिल्कुल आ बात भाई जिका ज्ञानी जन नहीं बैठे अगर के पानी ऐसी चीज है कि जिके ने बना नहीं सका।
4: हाँ,
5: पर बचाव अपना कर्तव्य है,
4: अपने हाथ में भी है,
5: अपने हाथ में भी।
4: हाँ, साथ साथ इन बार में अभी देखो छात्र मानी भी पढ़ने मिली, टाबरिया भी बता रहा कि इन बार देखो खेजड़ी भी लोग खूब लगाई है। देखो खेजड़ी या कोई भी पेड़ लगाओ तो बहुत सोरो है,
5: दो तो है उनकी देखभाल करनी है। सही बात कही थी,
4: बिल्कुल सही कही। तो देखो जिका भी पेड़ लगाया है बंधु, हमारा भाई बंधु, थोड़ा सा ध्यान रखो कि बीरो भी आपने सुरक्षित करना है, संरक्षण देना ताकि वे बड़ा हो जावे
5: और काल में जब बड़ा होसी।
4: हाँ,
5: तो उन्होंने लाभ भी आपने और आपने जी क्या हुआ पीढ़ी उन्होंने उसी।
4: बिल्कुल सा, देखो आप माई तो जिका वृक्ष लगाए गए बीरो फायदा अपन

0: ये जी ठंडी ठंडी छांव है आपने मिल रही है,
1: केवल दाहिनी ऑक्सीजन भी मिल रही है अपन।
0: हाँ, और देखो आपने सब बुरा चौपाल मिले ज्ञान री बात, तो आज ज्ञान री बात सारू विषय कहीं रखे और कौन पधारिया आप तो बताओ।
1: देखो सर को भैया आप बात रे मायने कही है कि थोड़ा उलझ जावा, बात रे मायने लास्ट रे मायने कही है आप आए जावा उन विषय मत है। जब आप जो को कार्यक्रम है तो भाई देखो सर कई लोग कागज तो लिखे है कि भाई परजीवी संक्रमण कई हुए इन बाबत जानकारी दी, और कई लोग लिखे कि बरसात रो जो को मौसम हुए उनके मायने रोग बाग हुआ करे उनसे संबंधित जानकारी दो। कई जगह लिखे कि भाई जो कोई बरसात मायने बीमार हो जाए पशु कहीं करना चाहिए कहीं नहीं करना, तो एरो जिका विषय है ए बात में लिखी हुई आई है,
0: मतलब समसामयिक विषय हो गया।
1: अब थे ये करो कि इन सगड़ा ने एक साथ जोड़ पर कोई विषय कोई बनेगी,
0: बिल्कुल बन जैसी
1: तो बनाओ।
0: देखो विषय बने हैं वर्षा ऋतु माए पशुआ माए परजीवी संक्रमण आई बात ही, और दुष्प्रभाव रोकथाम और प्रबंधन।
1: यदि तो देखो साहब बात थाने कही मैं
0: जब प्रश्न बना है नहीं तो प्रश्न जगह जवाब देने वाला है, बियर नाम भी बता दू।
1: बिल्कुल बताओ।
0: तो देखो आज पधारिया है सहायक आचार्य राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारिया है डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है, और आपने मैं करा राम राम राम राम करो।
1: हाँ राम राम सर डॉक्टर साहब राम राम
2: जी। हरखू भाई बंसी भाई और सभी पशुपालक भाइयों को मेरा राम राम
0: राम राम सा राम राम सा।
1: तो पहले सवाल ठीक हो तो हूँ कर लू।
0: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ तो डॉक्टर साहब सब पहले तो आप मारा पशुपालक ने और माने आ बताओ कि वो परजीवी संक्रमण कई हुआ करे और पशुओं माए इधरे बढ़ने को कई कारण है।
2: देखिए पशुओं में शरीर के अंदर और बाहर मिलने वाले सूक्ष्म जीव या कीड़ों को परजीवी संक्रमण कहते हैं।
1: अच्छा।
2: बरसात पशुओं के लिए अच्छी भी है क्योंकि हरा चारा उपलब्ध होता है, लेकिन यही मौसम कई परजीवियों के लिए भी अनुकूल होता है।
1: अच्छा।
2: नमी और तापमान से परजीवियों के अंडे और छोटे छोटे लार्वा चारागाह और गीली जगहों पर ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए पशु जब ऐसी जगहों पर चरते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बरसात में पशु को केवल बारिश और ठंड से नहीं परजीवियों से बचाना भी जरूरी है।
0: बहुत ही बढ़िया जानकारी है कि परजीवी संक्रमण कहीं हुआ करे, पर डॉक्टर साहब बात आवे है कि पशुपालक किन बात पहचान कर सके कि उनका जगह पशु है उन्होंने माए परजीवी रो संक्रमण हो गया है, वह पहचान क्या करे।
2: देखिए किसान अपने पशु को रोज देखता है, इसलिए सबसे पहले बदलाव वही पहचान पाता है। अगर पशु धीरे धीरे दुबला हो रहा है, कमजोरी आ रही है, बाल रूखे हो रहे हैं, भूख कम लग रही है, दस्त या पतला गोबर आ रहा है, दूध कम हो रहा है, या बच्चा ठीक से बढ़ नहीं रहा, तो परजीवी संक्रमण की संभावना हो सकती है। कुछ मामलों में खून की कमी के कारण आंखों और मुंह के अंदर की सतह का रंग सामान्य गुलाबी के बजाय फीका दिखाई देता है, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि हर दुबले पशु को कीड़ा नहीं होता, इसलिए बार बार अपने मन से दवा देने के बजाय जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक से जांच करवाकर ही उपचार के लिए बढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सर। देखो अपन ये लगे कि पशु थोड़ा अनमन है तो अपन ना आ दवाई दे दिया ना, इस वक्त अपन काम नहीं करना, थोड़ा बहुत थाने बहम हुए कोई कि हमारा पशु निरोगो नहीं है, है कोई न कोई इन्हें कोई समस्या है, तो अपने तुरंत डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। अब जिकी दवा बतावे जितनी मात्रा में बतावे वह अपने दवा देनी है।
1: बिल्कुल
0: खुद भी होशियारी को नहीं लगा मेरी।
1: सच्ची बात क्या होती है हरकू भाई एकदम, और इन बातों पर चलने नहीं फिर जीवन है नहीं हो ऐसा नहीं सुचलते रहे।
0: बिल्कुल सर अपने पशु भी निरोग रहे।
1: हाँ, और देखो सर डॉक्टर साहब जी अपर क्या कहने की भाई घर में मायने एक छोटो सो लड्डू टाबर ने देवा नहीं, टाबर रो मन कहीं करे कि और मिल जाए माने लड्डू, तो बिहार बिहार डॉक्टर साहब ज्ञान की बातें बता रहे हैं नी
0: थे एक लड्डू और ले लो।
1: मारो को नहीं भाई हूँ को नहीं लेना चाहू। हाँ आप बात अलग है की उनसे लाभ तो झगड़ा नहीं मिलसी मिलसी, तो देखो सा ए जगह राजू भाई है नी कागजियों में लिख भेजिए कि भाई डॉक्टर साहब सवाल पूछो।
0: बोलो बोलो
1: डॉक्टर साहब राजू भाई लिखे कि पशुआ परजीवी जिका है वे पशुआ रे दूध और उनके वजन माथे भी कोई असर डालिया करेगी, जे डाले तो किन भात।
2: परजीवी पशु के शरीर में जाकर उसके भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का फायदा उठाते हैं, और कुछ परजीवी खून की कमी भी करते हैं, इसका सीधा असर किसान की जेब पर पड़ता है। पशु का वजन कम बढ़ना, दूध का कम होना, बच्चे की बढ़वार धीमी होना और पशु का कमजोर रहना, इसलिए परजीवी नियंत्रण को केवल बीमारी की रोकथाम नहीं समझनी चाहिए, ये पशु के

0: उत्पादन क्षमता और किसान की आय बचाने का भी एक अच्छा तरीका है। जैसे पशु अगर दिन में घर पे अच्छे से खाना खा रहा है, अपने सारे काम वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। अगर उसके अंदर परजीवी का संक्रमण हो रखा है तो कई बार अपने सामान्य जीवन स्तर पर भी पशु जो है वो उस परजीवी से लड़ने के लिए काम कर रहा है, जिससे उसका उत्पादन जो है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होके उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में लग जाता है। इसलिए जो पशु बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, वो पशु भी परजीवी से संक्रमित हो सकता है, उस पर भी उतना ही ध्यान रखने की जरूरत है जितना कि किसी लक्षण दिखाते हुए पशु से।
1: बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया जानकारी है सर। और अब एक अगला प्रश्न और मैं पूछूं।
2: हाँ पूछो सर।
1: डॉक्टर साहब, जब बरसात शुरू हुए तो उन बेला पशु ने कृमिनाशक दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, हमारा कई भाई जानना चाहे।
0: पशु को ये जो कृमिनाशक दवा है ये देने के लिए हमें पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसे दवा की जरूरत है या नहीं। यानी सिर्फ बरसात आ गई है और हर पशु को बार बार हम कृमिनाशक दे दें ऐसा जरूरी नहीं।
1: अच्छा,
0: ये पशु की उम्र, प्रजाति, चराई की स्थिति और उस क्षेत्र में परजीवी संक्रमण की समस्या पर निर्भर करता है। जहां तक संभव हो गोबर की जांच कराकर पशु चिकित्सक की सलाह से ही कृमिनाशक देना चाहिए। और दवा देते समय ये बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि सही दवा, सही मात्रा और सही समय पर ही दवाई अच्छा असर दिखा पाएगी।
1: जी,
0: बार बार बिना जरूरत दवा देने से आगे चलकर दवा का असर कम होता है, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता में कमी कहते हैं।
1: तो क्यों ना मतलब वो है डॉक्टर साहब के कृमिनाशक दवा भी डॉक्टर साहब से पूछ प्रोर देनी चाहिए, इधर कोई विशेष समय?
0: बरसातों से पहले इस दवा को देते हैं क्योंकि बरसातों में कृमि जो पैरासाइट्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनके संक्रमण के जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए बरसात से पहले ये दवाई दे दी जाती है। पर जहां तक शोध बताता है, यहाँ पर जब तक हम इसकी जांच ना करवा लें और सही संक्रमण का पता ना लगा लें तो ये दवाई नुकसान ज्यादा करती है ठीक करने के बजाय।
2: डॉक्टर साहब, रोग हुए जो रोग रोग उपचार हुए दवाओं से, सवाल अठे हुआ डॉक्टर साहब के दवाओं के अलावा पशु पालक परजीवी संक्रमण में कम करने खातिर दूजा कई उपाय कर सके?
0: ये एक अच्छी सोच है कि परजीवी नियंत्रण सिर्फ दवा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे आसान प्रबंधन के तरीके हैं, मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जिसको हम फार्म पे कहते हैं, जैसे कि पशुशाला को साफ और सूखा रखना, गोबर को नियमित वहां से हटाना, पानी जमा ना होने देना, पीने का पानी साफ रखना, बहुत गीली और दलदली जगहों पर लगातार चराने से बचना, क्योंकि ये सब जगहें जो हैं ये परजीवियों के प्रजनन के लिए बहुत अच्छी जगह है और इससे उनकी तादाद बढ़ती रहती है। तो साफ सफाई रखना उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, परजीवियों का जो नंबर है वो कम होता है, इसलिए हमें साफ सफाई रखना जरूरी है। जहां तक संभव हो चारागाह में एक ही जगह लगातार पशुओं को नहीं चराना चाहिए, क्योंकि वहां का संक्रमण बार बार पशुओं को मिलता है और पशु भी अपनी संक्रमण की जो स्टेजेस हैं जो आगे दूसरे जानवरों के लिए वहीं रिलीज कर रहे हैं। इसलिए एक जगह पर जहां पर आपने चराया वहां पर आप थोड़ी देर के लिए गैप देंगे या समय डालेंगे तो वो जो स्टेजेस वहां पर जानवर से निकली, डिस्चार्ज हुई, वो तब तक के लिए खत्म हो जाती है। और गैप डाल के जब हम दूसरी बार वहां पर चराने के लिए ले जाते हैं जानवर को तो वो जो पास्चर लैंड है वो उस इंफेक्शन से फ्री रहता है, इसलिए गैप डालना जरूरी है। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि परजीवियों को पशु के शरीर में पहुंचने का मौका कम से कम मिले।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि समय का जो अंतराल है भी आपने विशेष ध्यान रखना है, और अगर वो आप ध्यान रखते हैं तो आप पशु निरोगा रहसी है ना।
2: कह भी कहें जो परिवर्तन है जो सृष्टि का नियम है, तो बिहार जो अपना जो चरावण के मायने में अगर थोड़ा परिवर्तन कर ले तो भाई जीवन दान अपने पशुओं ने मिले।
1: बिल्कुल मिले सा, और मिले है ज्ञान की बात रहे साथ साथ मनोरंजन भी।
2: वो समझ रही हो थारी बात ने
1: समझ रही हो नहीं
2: एकदम ज्ञान है साथ मनोरंजन भी जरूरी हो या करे
1: तो सुनो भया, और एक मीठो मीठो सो गीत लो।

0: भय आभार आप सुनो और एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीमेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है।

0: इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
1: बेला आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति धीमेरी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया है, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। और आज आप बातचीत कर रहे हैं वर्षा ऋतु में पशुओं में परजीवी संक्रमण दुष्प्रभाव रोकथाम और प्रबंधन विषय पर आज आप बातचीत कर रहे हैं।
2: और देखो सा हरखू भाई अपना जो गीत तोड़ लो सुन रहे खाने, तो देखो सा दो तीन तरह का सवाल लिख प्रार दिए है तो उन्होंने भाई के साथ ही कर दा। तो डॉक्टर साहब, आस पास मिलन वाला पेड़ पौधा पशुओं के खातिर किन बात उपयोगी हो सके, साथ ही साथ आप माने आप भी बताओ कि गुड़ हल्दी नीम और लहसुन जरा देसी उपाय किन बात पशुओं खातिर अच्छा होया करे, इन बाबत भी आप जानकारी दे।
3: देखिए हमारे देश में कई पारंपरिक उपाय पीढ़ियों से इस्तेमाल होते हैं। राजस्थान में भी नीम खींप और काली जीरी जैसे पौधों का परजीवी नियंत्रण में पारंपरिक उपयोग दर्ज किया गया है। नीम और लहसुन के संयोजक पर गायों में वैज्ञानिक अध्ययन भी हुआ है जिसमें परजीवी अंडों में कमी देखी गई। लेकिन किसान भाई यहाँ पर एक सावधानी जरूर रखें कि देसी है इसलिए चाहे जितना चाहे दे दे, ऐसा नहीं। रोज इसका इन उपायों की मात्रा, पशु की प्रजाति और उनकी स्वास्थ्य स्थिति महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इन्हें पशु चिकित्सक की सलाह से सहायक उपाय के रूप में अपनाना बेहतर है। गंभीर संक्रमण में प्रमाणित कमीनाशक उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर मिलने वाले कई पेड़ पौधे अच्छे चारे के रूप में भी उपयोग होते हैं, जैसे खेजड़ी की पत्तियां और कुछ क्षेत्रों में पाकर और अमरूद की पत्तियां तथा नीम की पत्तियां भी पशुओं को दी जाती है। इनमें कुछ प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिन पर परजीवी नियंत्रण और पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। लेकिन फिर मेरी सलाह यही होगी कि किसी भी पत्ती को दवा समझकर अधिक मात्रा पर ना खिलाएं। इन्हें सामान्य संतुलित आहार के साथ हिस्से के रूप में उपयोग करें। इससे हरे चारे के प्रबंधन और पशु आहार की प्रतिरक्षा नियामक या इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट को भी बढ़ाया जा सकता है।
2: जी क्यों, मतलब वही अर्खू भाई डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी बात बताई कि भाई देसी है इन्होंने मतलब वो कौन की देसी देदा। हर चीज में एक अनुपात है जो बहुत जरूरी होया करे, इन जीवन रमाए भी और दवारे रूप रमाए ना पा जी अगर देसी पेड़ पौधे की चीजा देवा उन्होंने भी।
1: और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहा कि देखो बरसात रो मौसम है तो इन मौसम रमाए ने पशुआ ने कई खिलावन पिलावन चाहिए ताकि उनकी जगह ताकत है बा रोगा सु लड़ने की जगह क्षमता है बा बनी उड़ी रहे।
3: इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संतुलित आहार। बरसात में हरा चारा खूब मिलता है लेकिन केवल हरा चारा पर्याप्त नहीं, उसके साथ उचित मात्रा में सूखा चारा, दाना, प्रोटीन का स्रोत और मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। पशु को साफ पानी लगातार उपलब्ध होना चाहिए। एक सरल बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मजबूत पशु का आधार केवल दवा नहीं अच्छा पोषण भी होता है। अगर पशु पहले से ही कमजोर और कुपोषित है तो वह परजीवी संक्रमण का सामना भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और उसकी वृद्धि, उत्पादन और प्रजनन क्षमता में भी कमी आएगी। जहाँ तक गुड़ और हल्दी इन सब चीजों की बात है, गुड़ का उचित मात्रा में ऊर्जा के स्रोत के रूप में आहार में शामिल किया जा सकता है और हल्दी को पारंपरिक रूप से हम उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों से मैं या पशुपालक भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि गुड़ या हल्दी किसी परजीवी संक्रमण की दवा नहीं है। इनका उपयोग सहायक आहार के रूप में किया जा सकता है लेकिन पशु की अच्छी प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे जरूरी है संतुलित भोजन, पर्याप्त प्रोटीन, मिनरल मिक्सचर, साफ पानी और अच्छी देखभाल।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दी
2: भाई। देखो सरखू भाई बड़ी बात करने तो छोटा भी जरूरी होया करे। डॉक्टर साहब, नवजात बछड़ा बकरी रा बच्चा और मेमना जेड़ा जगह पशु है वे परजीवी संक्रमण से ज्यादा ग्रसित होया करे, क्या भी करे और आप देखा भी है तो क्या उन्होंने मतलब उन्होंने जल्दी संक्रमण होया करे, तो आप बात कितनी सच्ची है और अगर जी आप बात सच्ची है तो इनके बारे में जानकारी दो सर।
3: जी हाँ, छोटे बच्चे और बढ़ते हुए पशु उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होती, और अगर उन्हें पर्याप्त पोषण ना मिले तो परजीवी संक्रमण का असर ज्यादा हो सकता है। इसलिए बरसात में बच्चों की साफ सफाई, सूखा बिछावन, स्वच्छ पानी और अच्छा पोषण बहुत जरूरी है। अगर बच्चा लगातार दस्त कर रहा है, कमजोर हो रहा है।

0: या उसकी बढ़वार रुक रही है तो इसे सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज ना करें। जल्द से जल्द पशु चिकित्सक से संपर्क कर उसकी जांच करवाएं और उपचार के लिए बढ़ें।
1: जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बरसात में परजीवी नियंत्रण रो सबसे सरल तरीको पशुपाल का खातिर कहीं हो सके है?
0: देखिए, जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं, किसान भाइयों को 5 बातों का नियम मैं बताना चाहूंगा जिससे वो परजीवी संक्रमण में कंट्रोल कर सके। पहली बात, पशुशाला साफ और सूखी रखें
1: जी।
0: दूसरी, साफ पानी दें और पानी जमा ना होने दें। तीसरी, हरा और सूखा चारा संतुलित रूप में दें। प्रोटीन इंटेक, मिनरल मिक्सचर का भी ध्यान रखें
1: जी।
0: चौथी, कृमिनाशक दवा जरूरत के अनुसार सही मात्रा और सही समय पर पशु चिकित्सक की सलाह से दें। और पांचवी, पशु में कमजोरी, लगातार दस्त, वजन या दूध में कमी दिखे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। एक बात इसमें और जोड़ूंगा कि अपने पशु को रोज ध्यान से देखें। किसान की नजर से बेहतर कोई शुरुआती जांच नहीं होती। अगर वो इनमें से कोई भी लक्षण जानवर में देखता है तो उनको जल्द से जल्द अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और इसके बारे में बताना चाहिए। तो किसानों के लिए या पशुपालकों के लिए जो विशेष संदेश मैं देना चाहूंगा वो ये कि बरसात में परजीवी दिखाई नहीं देते लेकिन उनका असर पशु के शरीर और उत्पादन पर दिखाई देने लगता है। इसलिए बीमारी का इंतजार नहीं करना चाहिए और हमारे पारंपरिक उपायों का उपयोग भी जानकारी और पशु चिकित्सक की सलाह के साथ ही करना चाहिए
1: जी।
0: स्वस्थ पशु ही स्वस्थ परिवार और बेहतर आय की नींव होती है।
1: बिल्कुल सर, देखो चालती चालती बेला जो संदेश दिए हमें वो पूरी बात रो आप जो प्रश्न हो भी रो सार आए गए मायने।
2: हरकू भाई, जिया बीमारी हो नी उन्हें लक्षण दिखे उन्हें
1: दिखे
2: नी बिहार बिहार जिया जिया ज्ञान मिले रही आदमी ने तो ज्ञान जो को खजाने बढ़े नी तो उनका भी लक्षण भी क्या थे पूछो किया। देखो सर, जिया डॉक्टर साहब बता रहे था कि भाई 5 सिद्धांत बताऊं, 5 नियम बताऊं तो भाई देखो सर सगला दुनिया अति देव लिख रहा है कॉपी पेन ले पड़ा
1: बिल्कुल
2: कहीं बना कहीं जरा तो देखो सर मोबाइल ने मैंने रिकॉर्डिंग कर ली।
1: बिल्कुल
2: कोई जो बात जो है नी छूट जाए तो उन्होंने बाद में मैंने सुन सके।
1: बिल्कुल साहब, देखो बातें करना तो बहुत मन है डॉक्टर साहब से लगे और प्रश्न भी पूछता ही रहे अपन समय रिजगी देखो
2: घड़ी है जो इशारा कर दे रहे आप
1: मेरे तो पालन करना ही पड़ती था भैया। अब देखो आगे ले समय आ गया है तो आपने मैं बता दूं सर कि आज चौपाल में जानकर देवन स्वरूप पदारिया राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सहायक आचार्य डॉक्टर अभिषेक गुप्ता और आज आप बातचीत करी वर्षा ऋतु माए पशुआ माए परजीवी संक्रमण दुष्प्रभाव रोकथाम और प्रबंधन विषय पर। डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी, आप चौपाल में पधारिया और हमारे पशुपालक ने बहुत ही बढ़िया अच्छी ज्ञान वर्धक जानकारी दी। इन सर मैं अपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा
0: राम राम सा।
3: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर रे ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ढेणी डी बातिया। कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती पुनीत बिश्नोई ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। तो सा हमें महने आज्ञा दिलाओ सा घणान घणा राम राम सा।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
5: काकी साहब, छाछ नहीं है तो कोई बात नहीं पर आज नीना उतार किया बैठे हो।
6: काहे करूं दाबू बेटा, भैंस को दूध भी कौन दियो और विरोध जिसो भी कौन।
5: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब, कार्यक्रम सुनो सुनो पशुपालन से जुड़ी समस्या समाधान।
7: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
8: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वो

0: उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का गठन किया है। ये समिति दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच करेगी। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेन्द्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें नहीं हटाया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। यह प्लान दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा प्रदान करता है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया गया। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन एवा नागा और की नाकाशिकी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से 16-21, 5-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए सुनते हैं आशा भोसले

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।

0: बुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक।
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती के चाहने वालों के लिए अगला गीत है सोनू निगम की आवाज में। समीर का लिखा गीत है, संगीत है जतिन ललित का, फिल्म का नाम है संघर्ष।

0: साथियों, अभी आपने सुना समीर का लिखा गीत सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाजों में। संगीत था जतिन ललित का, फिल्म का नाम था संघर्ष।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेलुलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: साथियों, कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और किशोर कुमार की। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया बेरंग किया है महासतैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गद्दी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है हाँ।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।

0: मनोरंजन
1: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा,
2: विविध भारती संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
0: दोस्तों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीतकार है समीर, तर्ज है नदीम श्रावण की, फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना।

0: साथियों, कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने

0: समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। 16वीं राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हुई। सुबह 11 बजे शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष के नेता शामिल नहीं हुए। छठे सत्र के पहले दिन आज सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में विपक्षी सदस्यों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से विरोध प्रदर्शन छोड़कर सदन के भीतर आने और लोकतांत्रिक मर्यादा से अपनी बात रखने की अपील की।
1: मैं सबसे अपील करूंगा कि सदन के कार्यालय में हम आकर के भाग लें और जो विषय है सदन के अंदर तो रखें। निश्चित रूप से विपक्ष का पूरा सम्मान भी है, पूरा अधिकार भी है कि अपना विषय रखें मर्यादापूर्ण नियमों के तहत, और सत्तारूढ़ दल से भी अपेक्षा रहती है कि उस पर अपना संज्ञान लेकर के उनके सकारात्मक उत्तर दें।
0: विपक्षी सदस्य विधानसभा परिसर के बाहर ही विरोध प्रदर्शन करते रहे और सदन में नहीं आए। इस स्थिति के बीच सदन के पटल पर दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। इनमें राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 भी शामिल है। श्री देवनानी की अध्यक्षता में आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें मानसून सत्र की अवधि और कामकाज तय किया गया। सत्र के संक्षिप्त रहने की संभावना है। उधर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने विपक्ष के रवैये को गैर लोकतांत्रिक बताया। उन्होंने विपक्ष से संसदीय परंपराओं का पालन करने की अपील की। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की कमी सहित कई मुद्दों पर चर्चा चाहता है, किंतु उन्हें विधानसभा में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही स्क्रीनिंग, जांच और इलाज को सघन करते हुए टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में इस संबंध में बैठक ली। उन्होंने प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को गति देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों में विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि टीबी रोगियों का समुचित उपचार करने के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों की भी स्क्रीनिंग और जरूरत के हिसाब से रोग निरोधक उपचार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में टीबी मुक्त पंचायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 6,500 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में 2,38,00,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। साथ ही टीबी रोगियों को 2,00,000 से ज्यादा पोषण किट वितरित किए गए। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ये चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक रहेगी। नगरीय विकास और आवासन तथा स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता के दौरान निःशुल्क और रियायती पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही किसी भी संस्था और व्यक्ति को भूमि आवंटन भी नहीं होगा। शहरी सेवा शिविरों में भी इस दौरान कोई पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने की अवधि में विभिन्न विभागों के स्पष्टीकरण और रियायत संबंधी मामले सीधे तौर पर आयोग को नहीं भेजे जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार मुख्य सचिव के अनुमोदन के बाद ही इन्हें आयोग को भेजा जाएगा। निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही जिलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नियमों की जानकारी दी और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिला निर्वाचन अधिकारी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सभी दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई है।
2: चुनावों की

0: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। लीजिए सुनिए झरोखा के अंतर्गत हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता के दौरान निशुल्क भूमि आवंटन और रियायती पट्टे जारी नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन पर कथित बल प्रयोग की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की और देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का कोटा रोल खुर्द सेक्शन पर सफल ट्रायल।

0: جوپٹی کا لوگ میں دو چرن کے خلاف ہوئے ہیں، 9 ستمبر وغیرہ سے کمر کی اور 14 ستمبر کو مدینہ رکھی گئی۔ اسی اپلکش میں آج سبھی دلوں کی بیٹھک رکھی گئی تھی، اسی اپیل کے ساتھ کہ تو سبھی دل ایم سی سی کی پالنا کریں پورن روپ سے اور شانتی پورن اچھے واتاورن میں یہاں پہ چناؤ ہو، یہی بات چیت کی گئی۔
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन पर कथित सुरक्षा बलों द्वारा कथित बल प्रयोग की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने यह समिति नियुक्त की है। गौरतलब है कि दिल्ली में 20 जुलाई को कथित परीक्षा पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में संसद तक निकाले गए मार्च के दौरान हिंसक झड़पें हुई। भीड़ द्वारा बैरिकेड्स तोड़ने के चलते प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। राज्यभर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्य कर विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत कर चोरी करने और बिना वैध दस्तावेज के माल परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। विभागीय कार्यवाही के तहत इस महीने अब तक 13 परिवहन वाहनों को पकड़ा गया। विभाग की ओर से सभी ट्रांसपोर्टरों और करदाताओं से अपील की गई है कि वे माल का परिवहन करते समय टैक्स इनवॉइस ईवी बिल अनिवार्य रूप से साथ रखें। माल परिवहन संबंधी दस्तावेज में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर परिवहनकर्ता के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का कोटा रोल खुर्द सेक्शन पर सफल ट्रायल किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में प्लेटफार्म आधारित सुपर फास्ट पार्सल फ्रेट ईएमयू रैक का खाली अवस्था में ऑसिलेशन ट्रायल आज पूरा किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रायल के दौरान कई चीजों की जांच की गई। 135 किलोमीटर की रफ्तार के दौरान इसकी ब्रेकिंग सिस्टम, थर्मल क्षमता और अन्य तकनीकी आकलन किए गए। परीक्षण के दौरान चौमहला से शामगढ़ के बीच रैक को पहले 120 और फिर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। वहीं अंतिम चरण में चौमहला से गोडला के बीच इसे अधिकतम 145 किलोमीटर प्रति घंटे की परीक्षण गति पर सफलतापूर्वक दौड़ाया गया। वर्तमान में निर्धारित कार्यक्रम के तहत रैक की विद्युत और प्रणोदन प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विद्युत संबंधी परीक्षण भी किए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण ट्रायल में कोटा मंडल के लोको पायलट, मुख्य लोको निरीक्षक और यातायात निरीक्षक के साथ चेन्नई के एकीकृत कोच फैक्ट्री और अन्य विशेषज्ञों की टीम मौजूद रही। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन बारिश का दौर बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बरसात के आसार हैं। आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल से 23 अगस्त तक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में मानसूनी परिस्थितियां अधिकतर हिस्सों में कमजोर रहने के आसार हैं। बीकानेर संभाग के उत्तरी भागों और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच आज दोपहर में कोटपुतली बैरोड के विराटनगर और नारायणपुर में तेज हवाएं चली और हल्की बरसात हुई। बीते 24 घंटों में बांसवाड़ा में करीब 1 सेंटीमीटर पानी बरसा। इसके अलावा खैरतल, तिजारा, बारा, कोटा, प्रतापगढ़ और सलुम्बर जिलों में भी हल्की बरसात दर्ज हुई। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री को पार कर गया। दीग जिले की 220 पंचायतों में 440 अमृत पोषण वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। इनके माध्यम से बच्चों में कुपोषण दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। दीग के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन सिंह ने बताया

के इन वाटिकाओं में जैविक सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगाए जाएंगे जिनका उपयोग महिलाओं और बच्चों के पोषाहार में होगा। इसके लिए राजीविका समूहों और ग्राम पंचायतों के साथ बैठक कर कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये वाटिकाएं राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 82वीं जयंती है। श्री गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। देशभर में उनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव, आदर्श आचार संहिता के दौरान निःशुल्क भूमि आवंटन और रियायती पट्टे जारी नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन पर कथित बल प्रयोग की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की। और देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन का कोटा रोल खोर्द सेक्शन पर सफल ट्रायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से आचार संहिता का पालन करने के लिए कड़ाई से निगरानी की जा रही है। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने एक राज्य एक चुनाव के तहत नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 का कार्यक्रम घोषित किया। इसमें प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में होंगे। सदस्य पदों के लिए लोक सूचना 27 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 1 सितंबर को की जाएगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की आखिरी तारीख 3 सितंबर तक निर्धारित की गई है और चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा। कोटपूतली नगर परिषद के अलावा नगर पालिका पावटा प्रागपुरा, विराटनगर, नारायणपुर और बानसूर में पहले चरण में मतदान 9 सितंबर को होगा। नगर परिषद बहरोड, नगर पालिका नेमराणा, नगर पालिका मांढर और नगर पालिका बड़ौद में दूसरे चरण में मतदान 11 सितंबर को होगा। वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। जिले में कुल वार्डो की संख्या 325 है। 80वां स्वतंत्रता दिवस गरिमा हर्षोल्लास के साथ जिले भर में मनाया गया। कोटपूतली के राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। जिलेवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। संविधान के मूल्यों, देश की एकता और अखंडता तथा सामाजिक समानता को मजबूत करना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे। इससे पहले हर घर तिरंगा अभियान की धूम रही। कोटपूतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय तिरंगा प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस दौरान युवाओं और स्थानीय प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियां दी। जिले में पंच गौरव योजना को लेकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बीते दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों, वित्तीय प्रावधानों और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई। जिले में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गाजर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार करने और गाजर उत्पादकों का FPO गठित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। प्रगति पथ पर गतिमान राजस्थान के तहत अलवर के विजयनगर ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपूतली के सभागार में लाइव प्रसारण किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिले के सभी उपखंडों और ग्राम पंचायत स्तर पर भी किया।

0: गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जिले के 67 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनकी कुल लागत 198 करोड़ रुपए से भी अधिक है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST 2027 के पंजीकरण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है और जयपुर संभाग में पहला स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय की प्राचार्य संजू जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर संभाग के तहत राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुल 66 जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल हैं। पंजीकरण की संख्या में हुई बढ़ोतरी के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा ने 2563 पंजीकरण की बढ़ोतरी दर्ज कर संभाग में पहला स्थान हासिल किया है। कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: पहले आज की खास खबर राज्य विधानसभा रो मॉनसून सत्र आज से शुरू हो विपक्ष सदन की कार्रवाई में हिस्सो नहीं लियो राज्य में नगरीय निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता रे चालता निःशुल्क भूमि आवंटन और रियायती पट्टा जारी नहीं हुआ सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली रे जंतर मंतर माथे छात्र प्रदर्शन माथे कथित बल प्रयोग री जांच खातिर उच्च स्तरीय समिति गठित करी और देश री पहली वंदे भारत ट्रेन रो कोटा रोल खुद सेक्शन माथे सफल ट्रायल समाचारों के साथ मैं संगीता शर्मा और अगले समाचार विगतवार 16वीं राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र री आज से शुरुआत हुई सुमारे 11 बजे शुरू हुई विधानसभा की कार्रवाई में विपक्ष का नेता भैया नहीं गया छठे सत्र का पहले दिन आज सदन में दिवंगत नेताओं ने श्रद्धांजलि दी जी शोक प्रकट पाछे सदन की कार्रवाई काले तारे खातिर रोक दी गई है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सदन में विपक्षी सदस्यों की गैर मौजूदगी माथे नाराजगी जताई वणा कांग्रेस विधायकों से विरोध प्रदर्शन छोड़ और सदन रे माए आवण और लोकतांत्रिक मर्यादा से आपरी बात रखने की अर्ज करी
1: मैं सबसे अपील करूंगा कि सदन की कार्यवाही में हम आकर के भाग लें और जो विषय है सदन के अंदर तो रखें निश्चित रूप से विपक्ष को पूरा सम्मान भी है पूरा अधिकार भी है कि अपना विषय रखें मर्यादापूर्ण नियमों के तहत और सत्तारूढ़ दल से भी अपेक्षा रहती है वो इस पर अपना संज्ञान लेकर के उनके सकारात्मक उत्तर दें
0: विपक्ष सदस्य विधानसभा परिसर रे बारे ही विरोध प्रदर्शन करता रिया और सदन में नहीं आया इन स्थिति रे बीच सदन रे पटल माथे दो खास विधेयक पेश कराया गया इनमें राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 भी मिलो है श्री देवनानी की अध्यक्षता में आज कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई इनमें मॉनसून सत्र की अवधि और कामकाज तय करो गयो सत्र रे छोटो रहने की आस है वठी में सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग विपक्ष रे रवैये में गैर लोकतांत्रिक बतायो वणा विपक्ष संसदीय परंपरावां रो पालन करने री अरज करी वठी ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया से बणतल में कहो कि विपक्ष सरकारी स्कूलों की स्थिति शिक्षकों की कमी समेत कई मुद्दा माथे चर्चा चावे है पर माने विधानसभा में आवन नहीं दियो जा रही है प्रदेश ने टीबी मुक्त बनाने खातिर जन भागीदारी में बेसी मजबूत करो जावेला साथ ही स्क्रीनिंग जांच और इलाज ने सघन कर्तव्या टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति री रोजाना मॉनिटरिंग पक्की करी जावेली मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में इन बारा में बैठक ली बना प्रदेश ने टीबी मुक्त बनाने रे प्रयासा ने गति देवन का हुक्म दिया मुख्य सचिव कहो कि कमजोर प्रदर्शन करने वाला जिला में खास ध्यान दियो जावे वणा कहो कि टीबी रोगियों रा समुचित उपचार करने रे साथ ही वाणी परिवार रे सदस्यों री भी स्क्रीनिंग और जरूरत रा हिसाब से रोग निरोधक उपचार पक्को करो जावे बैठक में चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि प्रदेश में टीबी मुक्त पंचायतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है लाडला बरस 6000 पंचायत टीबी मुक्त

0: घोषित करेगी। वना बतायो कि अभियान के तहत प्रदेश में 2,38,32 लोगों की स्क्रीनिंग करेगी। साथ ही टीबी रोगियों ने 2,32 पोषण किट भी बांटा गया। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आ चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक रवैली नगरीय विकास और आवासन और स्वायत्त शासन महकमा साफ कहो है कि आचार संहिता रे चलता मुफ्त और रियायती पट्टा जारी नहीं करा जावेला। न्यारा न्यारा जिला निर्वाचन अधिकारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नियमारी जानकारी दी और जरूरी दिशा निर्देश जारी कराया। चुनाव में ले जिला निर्वाचन नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय हो गया है। इन्हीं कड़ी में कोटपुतली बहरोड जिला निर्वाचन अधिकार बतायो कि स्वतंत्र पारदर्शी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न करावन खातिर सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मना बतायो कि सगला दलासों आदर्श आचार संहिता रो पालन करने की अरज करी जी है।
1: चुनावों की रूपरेखा दे दी है। उसके तहत हमारे कोटली बहरोड में दो चरण में चुनाव होंगे, 9 सितंबर और 11 सितंबर को और 14 सितंबर को मतगणना रखी गई। उसी उपलक्ष्य में आज सभी दलों की बैठक रखी गई थी। इसी अपील के साथ कि तो सभी दल एनसीपी की पालना करें पूर्ण रूप से और शांतिपूर्ण अच्छे वातावरण में यहाँ पे चुनाव हो, यही बातचीत की गई।
0: ऐ खबर आप जयपुर अजमेर केंद्र सुन रहे हो। सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली रा जंतर मंतर माथे हुआ छात्र प्रदर्शन माथे कथित सुरक्षा बल कानीसों कथित बल प्रयोग रो जांच खातिर उच्च स्तरीय समिति रो गठन करो है। उच्चतम न्यायालय रा पहली आला न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी री अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जी। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्यावाची और जस्टिस वी मोहनारी पीठ ने आ समिति नियुक्त करी है। ध्यानयोग है कि दिल्ली में 20 जुलाई में कथित परीक्षा पेपर लीक में लेर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी रे नेतृत्व में संसद ताई निकाला गया मार्च रे चलता हिंसक झड़पा हुई। भीड़ कानी सु बैरिकेड्स तोड़ने रे चलता प्रदर्शनकारियां और सुरक्षाकर्मियां दोनों पक्षों रा कई जना घायल हो गया। राज्यभर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रही है। वाणिज्यिक कर महकमे की कानीसों चलाया जा रहा इन अभियान के तहत कर चोरी करने और बिना वैध दस्तावेजा रहे माल परिवहन करने वाला वाहनों की जांच करी जा रही है। विभागीय कार्रवाई के तहत इन महीने अबे तई 13 परिवहन वाहनों ने पकड़ो गयो। महकमारी कानीसों सगड़ा ट्रांसपोर्टर और करदाताओं से अपील करी जी है कि वे माल रे परिवहन करते वक्त टैक्स इनवॉइस ई वे बिल जरूरी रूप से साथे रखे। माल परिवहन से जुड़ेला दस्तावेज में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाया जावन माथे परिवहन करता रे साथे कड़ी कार्रवाई करी जावेली। देश री पहली वंदे भारत फ्रंट ट्रेन रो कोटा रोल खुर्द सेक्शन माथे सफल ट्रायल करो गयो। पश्चिम मध्य रेलवे रा कोटा मंडल में प्लेटफॉर्म आधारित सुपरफास्ट पार्सल फ्रेट ईएमयू रेक रो खाली अवस्था में ऑसिलेशन ट्रायल आज पूरो करो गयो है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन बतायो कि ट्रायल रे चालता कई चीजों की जांच करी जी। 135 किलोमीटर की रफ्तार रे चालता इंद्रा बैंकिंग सिस्टम थर्मल क्षमता और दूजा तकनीकी आकलन कराया गया। जांच रे चालता चो महिला सु शामगढ़ रे बीच रेक ने पहले 120 और फिर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलायो गयो। बठी में अंतिम चरण में चो महिला सु गुर्दा रा बीच इन्हें अधिकतम 145 किलोमीटर प्रति घंटे की परीक्षण गति माथे सफलतापूर्वक दौड़ायो गयो। वर्तमान में निर्धारित कार्यक्रम रे तहत रैक री विद्युत और प्रमोदन प्रणालियों रे प्रदर्शन रो आकलन करने खातिर विद्युत संबंधी जांच भी करी जा रही है। इन महती ट्रायल में कोटा मंडल रा लोको पायलट मुख्य लोको निरीक्षक और यातायात निरीक्षक रे साथ चेन्नई री एकीकृत कोच फैक्ट्री और दूजा विशेषज्ञ री टीम मौजूद रही। और अब मौसम उत्तरी पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक हिस्सा में आपदा दो दिन बिरखारू दौर बन सके है। मौसम महकमा रे मुजब इंद्र चालता कठेई हल्की तो कठेई कठेई मध्यम बिरखारा आसार है। आज 11 जिला में बिरखारो अलर्ट जारी करो गयो है। वठी में काले सु 23 अगस्त तई श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ चूरू और आसे पासे रा खेतरा में बिरखारी आस है। पश्चिमी राजस्थान में मानसूनी स्थितियां घनकर ठोड़ा में कमजोर रहने की आसार है। बीकानेर महकमारा उत्तरी भागा माए और शेखावाटी खेतरा कुछ एक ठोड़ा माए हल्की विरका वह सके है। इन बीचे आज दोपहर कोटपुतली बहरोड रहे विराटनगर और नारायणपुर माए तेज हवा चाली और हल्की

0: साथ ही लाला 24 घंटा माए बांसवाड़ा माए करीब 1 सेंटीमीटर पानी बरसो। इनके अलावा खैरथल, तिजारा, बारा, कोटा, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिला माए भी हल्की बरसात दर्ज हुई। हालांकि प्रदेश का कुछ एक हिस्सा माए गर्मी और उमस रो असर बनोड़ो है। श्री गंगानगर माए 32 तापमान 39 डिग्री ने पार कर दियो है। डीग जिला री 220 पंचायतों में 440 अमृत पोषण वाटिका में बनाई जावेली। इनके माध्यम से टागरा में कुपोषण दूर करने रे जतन कराया जावेला। डीग रा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार मोहन सिंह बतायो कि आ वाटिकाओं में जैविक सब्जियां, फल और औषधीय पौधा उगाया जावेला, जकारो उपयोग महिलाओं और टागरा रे पोषाहार में वेला। इनके खातिर राजीविका समूह और ग्राम पंचायत रे साथ बैठक कर कार्य योजना ने अंतिम रूप दियो जा रियो है। यह वाटिकाओं राजीविकारा महिला स्वयं सहायता समूह रे मार्फत चलाया जावेला। पहली वाला प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आज 82वीं जयंती है। श्री गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री रहा। देश भर में हमारी जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सोशल मीडिया पोस्ट में मानी श्रद्धांजलि देवता थका राष्ट्र सेवा और सार्वजनिक जीवन में हमारे योगदान ने याद करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली वाला प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हमारी जयंती माथे श्रद्धांजलि दी। भारत और जापान रा रक्षा मंत्रियारी बैठक नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान रा रक्षा मंत्री सिंजीरो कोइजू ने बैठक री सह अध्यक्षता करी। बैठक में समुद्री सुरक्षा ने मजबूत करने, मेक इन इंडिया रे तहत रक्षा प्रौद्योगिकी ने बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने माथे चर्चा हुई। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा सहयोग माथे एक समझौता ज्ञापन माथे हस्ताक्षर कराया। इनसे पहले रक्षा मंत्री श्री सिंह जापान रे कुमामोतो खेतर माए आया। भीषण भूकंप रे पाछे भारत री कानिसु संवेदना और एकजुटता जताई। श्री सिंह कहो कि एशिया रा दो प्रमुख लोकतंत्र होने रे नाते भारत और जापान माथे शांति, स्थिरता और समृद्धि पक्की करने री मोटी जिम्मेदारी है। दोनों नेतावा समुद्री संचार मार्गारी सुरक्षा खातिर दोनों देशों रे बीच समन्वय मजबूत करने माथे सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त वीरवार ने आकाशवाणी में प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। आ हर महीने प्रसारित करिया जावन वाला ई कार्यक्रम री 137वीं कड़ी वेला। ई सारू आप ई 28 अगस्त ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे राय भेज सको। नंबर एक फिर सुन लो, 1800117800 माथे राय भेज सको। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए ई विचार भेजा जा सके है। और आखिर माए खास खास खबर एक फिर सुनो। राज्य विधानसभा रो मानसून सत्र आज सुन शुरू हुयो। विपक्ष सदन की कार्रवाई में हिस्सो नहीं लियो। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव आदर्श आचार संहिता रे चालता निशुल्क भूमि आवंटन और रियायती पट्टा जारी नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली रे जंतर मंतर माथे छात्र प्रदर्शन माथे कथित बल प्रयोग री जांच खातिर उच्च स्तरीय समिति गठित करी है। और देश री पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन रो कोटा रोल खुर्द सेक्शन माथे सफल ट्रायल। इनके साथ ही प्रादेशिक समाचारों रो बुलेटिन 8वीं पूरु हुयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करो जावेला। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। साथियों शाम के 7 बज रहे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी हिम्मत,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोताओं ने आशा भाई का घना घना राम राम, और राजू भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: आशा बहन आपने भी राम राम, और सगला किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला श्रोताओं ने भी राजू चौधरी और घनो घनो राम राम सा।
6: और देखो सा रामा शामा के साथ ही आशा बात कर रहा आप की अपना जी का काश्तकार भाई है वाने खेती बाड़ी में दोरो फायदो लेबा के तई जरूरी है की टेम सारू आपका जो काम छे करबा का वे कर लेनी चाहिए जी। और राजू भाई अबार को टाइम तो यही है कि जो भी फसल उगरी है वहां से चोखो उत्पादन लेबा के तई वहां में संरक्षण को पूरे ध्यान रखनी चाहिए जी।
7: बिल्कुल सर, और देखो संरक्षण नहीं करा आपा तो फसल की जो आपनी जो उत्पादन है क्षमता है वह खराब हो सी, आपनी जो आमदनी है वह भी कम हो सी। तो एक लिए अपन देखो अपनी जो फसल है बिन अपन रोजिना का जो काम है बिन शामिल कर अपन रोजिना देखभाल भी करनी चाहिए ताकि आपने जो को फसल है बिन जो ऊपर का कोई कीड़ा है रस चूस वाला है या कोई फली खा वाला है या और कोई फल न खराब कर वाला है या जमीन में कोई दीमक या सफेद लट है या कोई रोग आ रहा है तो बिको आप फसल न देख और बिको निरीक्षण करे और बिकी आपने अगर समझ में आ रही है तो आप उचित उपाय करा नहीं नजदीकी जो कृषि कार्यालय बिन कृषि विशेषज्ञों में संपर्क कर और आपने जो को फसल है बिन बचाव को उपाय कर या जो भी एक महीना पर दवाई है या और कोई संरक्षण को उपाय है वो अपना और अपनी फसल ना सुरक्षित कर सका और दिन अपने उत्पादन बढ़ा अपनी आमदनी भी बढ़ा सका
6: जी। और इनमें सबसे मोटी ध्यान रखवा की बात यही है भाई खेत को निरीक्षण नियमित रूप से करबो जरूरी है और जो भी आपका समझ में आ रहे हो या जी आप बताया भाई समझ में को ना रहे हो तो नजदीकी कृषि केंद्र पर जा विशेषज्ञ से सलाह ले जो भी सिफारिश की गई है उन्हीं अनुसार आपने दवाई को जो छिड़काव या भुड़काव है वो करना है। दवाई भी आपने सही दुकान से वही लेनी चाहिए जो विशेषज्ञ द्वारा बताई गई है उनको बिल भी जरूर और छिड़काव और बुरकाव करती टाइम समुचित सही मात्रा को भी ध्यान रखना चाहिए। विधि काई चे इको भी आपने ध्यान रखना चाहिए और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि कम से कम दवाओं को रासायनिक छिड़काव करता हुआ आपा आपने फसल में सुरक्षित रख सका जिसो की उत्पादन चोखू मिले और मानव स्वास्थ्य पर भी इको कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। और राजू भाई के साथ साथ ही जो कपास की आपने फसल चाहे जो काश्त करवाए ले रखे चाहे उन्हें भी संरक्षण पर पूरा ध्यान देना बार जरूरी चाहे जी कि बार फूल बन रहे चाहे फूल गिर भी रहे चाहे एक ही भी समस्या आ रही है तो काश्त करवाए समय को ध्यान रखता हुआ इस चीज का महत्व में समझता हुआ पूरा सही तरीका से वो फसल में भी संरक्षण करे ताकि कपास में भी चोखू उत्पादन ले पावे। एक और बात यह भी जरूर ध्यान रखे कि देखो कई जगह तो बरसात हो रही कोने पर कई जगह खूब हो रही चाहे तो उस जगह यो ध्यान रखो कि आप खेत में जल निकास की पूरी उचित व्यवस्था कर रखो ताकि न तो आपकी फसल गले और न कोई ज्यादा कीड़ा बीमारी पड़े और आप सुरक्षित उत्पादन ले सको।
7: बिल्कुल सर, और देखो संरक्षण आप जो जल निकास करा तो जल को अपन संरक्षण भी करना चाहिए ताकि देखो कम जगह बरसात हो रही है जिस क्षेत्र में तो आपने जो फसल की जल मांग है तो दिक अनुसार आप फसल ने सिंचाई भी देवा और आपने जो फसल की आवश्यकता से ज्यादा जो पानी है वो बेर जा रहे हैं तो बिना आप अगली फसल में या इस फसल में जरूरत पड़वा पर काम में ले सका तो जो अपन संरक्षण भी करबो जरूरी है।
6: बिल्कुल सा, और राजू भाई जरूरी तो यह भी है कि विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में आ चुका है अपना अभिलाषा बहन वाने ले आया है तो विषय विशेषज्ञ कई जानकारी दे रहे है या आप सब नहीं सुननी भी चाहिए और आपने बता देवा हरा चारा की फसल की उन्नत खेती इस विषय पर जानकारी दे रहे है डॉक्टर अतर सिंह मीणा और यहाँ से बातचीत कर रही है आप अभिलाषा बहन। तो राजू भाई आप सगला ही मिलर सुना
7: सुना सा
8: हरा चारा की फसला की उन्नत खेती ई विषय मात्र जानकारी देवे खातिर अपने साथ हैं डॉक्टर अतर सिंह मीणा पूर्व अतिरिक्त निदेशक कृषि।

0: साहब आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। राम राम साहब।
1: राम राम सर।
0: तो सर जी की आपन बात कर रहे हैं हरा चारा की उन्नत खेती का बारे में, तो यही बताओ कि हरा चारा अपनी खेती बाड़ी में या अपने पशुपालन में का ही महत्व है सर?
1: देखो हरे चारे का महत्व तो इतना है कि तमिल में कहावत है कि चारा नहीं तो पशु नहीं, और पशु नहीं तो खाद नहीं, और खाद नहीं तो फसल नहीं।
0: जी तो सर देखो या तो आप जाने हरिया चारा को महत्व, क्योंकि देखो अपना जो किसान साथी है वो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करे छे, और पशुपालन का उन्नत विकास के तानी आपने जो हरो चारो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखे छे। तो बात करें आप हरा चारा की कौन कौन सी फसल छे और ये कौन कौन सा मौसम में उगाई जाऊ छे?
1: देखो हरे चारे की मुख्य रूप से तीन मौसम होते हैं, जो बरसात का मौसम होता है खरीफ कहते हैं, और जो सर्दियों का है रबी, और गर्मियों के मौसम को जायद। तो तीनों मौसम में खरीफ की और जो जायद की फसलें है उसमें ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है, ग्वार, मुख्य रूप से ये पांच फसल है। और जो सर्दियों की जो रबी है उसमें रिजका, वर्सीम, जई, ये तीन महत्वपूर्ण फसल है जो रबी सीजन में उगाई जाती है।
0: तो सर बात करें आप खरीफ का मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की, तो यहाँ की खेती में जो महत्वपूर्ण कृषि विधियां हैं वे कौन कौन सी है?
1: देखो कृषि विधियों में सबसे पहले तो जिस खेत में या भूमि पर हम फसल उगाते हैं तो उसका चयन है, क्योंकि अधिकांश जो अपन की खरीफ की फसलें जैसे ये दोमट, बलौ दोमट या कई जैसे ज्वार जैसी फसल, चिकनी भूमि भी इसको आवश्यक होती है, तो मुख्य रूप से इन सारे फसलों में ये भूमि की आवश्यकता। भूमि की तैयारी में ऐसा है कि एक मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करते हैं और दो तीन जुताई हैरो या कल्टीवेटर से कर समतल कर लेते हैं। भूमि की तैयारी के बाद हम भूमि का उपचार करते हैं, तो भूमि को उपचार के लिए ताकि उसमें कीट व्याधि का प्रकोप नहीं हो, दीमक का प्रकोप नहीं हो, तो उसके लिए अपन जैसे क्विनाल फॉस का पाउडर है, दीमक की दवाई उसमें डाल देते हैं। उसके बाद में जो बीज लाते हैं तो उसका बीज उपचार करते हैं, बीज उपचार के लिए जैसे कीट व्याधि का प्रकोप नहीं हो तो उसके लिए ज्यादातर हम जैसे कार्बोडिन दवाई आती है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचार कर लेते हैं। और जो अपन के कीड़े लगते हैं उसमें क्लोरोपाइरोफॉस 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचार कर लेते हैं। थायरम का भी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं। बुबाई की विधि में ज्यादातर या तो छिटकमा विधि से बोते हैं या कतारों में बोते हैं, लेकिन ज्यादातर आजकल क्योंकि सीड ड्रिल चल गया है तो कतारों में बोते हैं, और इसमें ज्यादातर की जैसे 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे से पौधे की होती है। बीज दर की बात जहां ज्यादातर करें तो ज्वार में जैसे 40-50 किलोग्राम अकेली फसल बोते हैं तो उसमें प्रति हेक्टर बीज की दर जरूरत पड़ती है। बाजरे में 10-12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है, और ग्वार में 35-40 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और जो लोबिया चौला जिसको बोलते हैं उसमें भी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है। मक्का की फसल में अपन 60 से 80 किलोग्राम तक बो सकते हैं, तो वो बीज दर है। और मिश्रित में यदि, क्योंकि कई बार ऐसा है कि अपन जैसे ज्वार बाजरा मक्का इसके साथ यदि चौला और ग्वार यदि मिलवा करके बोते हैं तो उससे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है, पौष्टिकता भी बढ़ती है, तो उसमें बीज दर थोड़ा जैसे अपन ज्वार के साथ मिश्रित करेंगे तो 20 से 26 किलोग्राम की जरूरत पड़ेगी उसकी ज्वार में एक मिश्रित में, 6 से 7 किलोग्राम बाजरा, 20 से 25 किलोग्राम ग्वार की जरूरत पड़ती है अभी मिश्रित बुनी है, और 15 से 20 किलोग्राम उसके चौले की जरूरत पड़ती है अभी मिश्रित करके यदि हम ज्वार बाजरा मक्का के साथ बोते हैं। अब ये जो बुबाई का समय जैसे बताया, क्योंकि वो बीज पाली रहे तो वो फरवरी मार्च से लेकर जुलाई अगस्त तक अपन वर्षाकालीन फसल बोते हैं, और जो गर्मियों की है वो भी 15, ये क्योंकि इनका पीरियड 15 फरवरी मार्च से लेकर जुलाई अगस्त तक लगातार कभी भी बो सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि खाद बहुत जरूरी है, बिना खाद के
0: बिल्कुल
1: कुछ भी पैदा नहीं होता, तो सबसे पहले तो जैसे ही अपन भूमि की तैयारी जब करते हैं तो उस समय 10-12 प्रति हेक्टर के हिसाब से सैडीगढ़ी गोबर की खाद उसमें डाल देते हैं, और उसके बाद में अपन जैसे नत्रजन युक्त उर्वरक है जैसे यूरिया है, डीएपी है, ज्वार की फसल में 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर 2/3 बुबाई के समय और 1/3 मात्रा बुबाई के 35 से 40 दिन बाद एवं प्रत्येक कटाई पर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर अतिरिक्त नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करना चाहिए। बाजरे की फसल में 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर 2/3 बुबाई के समय 30-35 दिन बाद में फिर एक डालना चाहिए, और एक कटाई के बाद 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रति कटाई पर भी अतिरिक्त नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। जहां तक ग्वार में है तो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है। चौले में 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर प्रयोग करना चाहिए, और मक्का में 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर बुबाई के समय और 1/3 मात्रा बुबाई के 30-35 दिन बाद जब पहली कटाई करते हैं उसके बाद में प्रयोग करना चाहिए।
0: जी
1: 40 से 60 किलोग्राम जैसे ज्वार की फसल है उसमें फास्फोरस प्रति हेक्टर बुबाई के समय मशीन से ड्रिल करके

0: दे देते हैं और बाजरे में भी 40 से 60 किलोग्राम मात्रा फास्फोरस की जरूरत पड़ती है और 30 से 40 किलोग्राम ग्वार में और 30 से 40 किलोग्राम ही फास्फोरस छोले की फसल में, मक्का की फसल में 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट बुवाई के समय भूमि में करीब 10 सेंटीमीटर गहराई पर उड़कर प्रयोग करना चाहिए।
1: जी सर।
0: इसके अलावा बहुत सी मिश्रित फसल में जैसे ज्वार के साथ साथ यदि ग्वार को मिश्रित करेंगे तो 75 से 100% बीज दर, चौले में मिश्रण करेंगे तो 25 से 50%, बाजरे के साथ ग्वार और चौला, ग्वार के साथ बाजरा और ज्वार, चौले के साथ ज्वार बाजरा और मक्का के साथ चौला या ग्वार, जैसा कि मैंने पहले बताया था मिश्रित फसल में,
1: मिश्रित फसल
0: के रूप में ले सकते हैं। तो खरपतवार और कीट नियंत्रण भी चारे की फसलों में महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियां हैं। बुवाई के पूर्व पलेवा देकर खरपतवार नष्ट करें, पलेवा देंगे तो थोड़ा वो खरपतवार हो जाएंगे तो उनको हम नष्ट कर देते हैं, बाद में खरपतवारों को एक दो निराई करके निकाल दें और निराई गुड़ाई के भील या हैंड हो आता है उससे हम कर सकते हैं, वैसे खुरपी से भी निराई गुड़ाई करते हैं
1: जी,
0: तो उसके भी ध्यान रखें। बाकी तो यदि रासायनिक नियंत्रण करते हैं तो एट्राजीन दवाई आती है आधे किलोग्राम मात्रा, उसके द्वारा भी नियंत्रण होता है। बाजरे में भी जैसे बुवाई के तीसरे या चौथे सप्ताह तक खेत में निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकालते रहें। खरपतवार नष्ट करने के लिए बुवाई के तुरंत बाद जैसे ही वो अंकुरण हो पूर्व प्रति हेक्टर 500 किलोग्राम वो एट्राजीन 800 लीटर पानी में घोलकर उससे नियंत्रण कर सकते हैं। ज्वार बाजरा मक्के तीनों में ही एट्राजीन केमिकल खरपतवार नियंत्रण के काम आता है। खरपतवार ग्वार में करना है तो 25 से 35 दिन के बाद में वही निराई गुड़ाई करके अपन निकाल सकते हैं खरपतवारों को। इसी प्रकार चौले में भी 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई कर जो हैंड हो या भील हो या खुरपी है उसके द्वारा निकाल सकते हैं। मक्के में खरपतवारों का काफी क्योंकि नुकसान होता है तो उसको 30 से 35 दिन बाद इसको निराई गुड़ाई करके अवश्य नियंत्रण करना चाहिए। और वर्षा के दिन मक्का में एट्राजीन जो खरपतवार नाशी है उसकी 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के तुरंत बाद छिड़कना चाहिए ताकि वो बीट का नियंत्रण हो सके।
1: तो सर देखो खरीद के पास बात करें आप जायद की, तो जायद में उगाई जाने वाली जो फसल है वहाँ की खेती अपना किसान साथी की कर करे सर?
0: देखो जायद में ज्यादातर वही फसलें हैं जो खरीफ में बोई जाती है
1: जी,
0: जैसे जिनकी उन्नत कृषि विधियों के बारे में मैंने उल्लेख किया, ज्वार बाजरा मक्का ग्वार है लोबिया है। इसमें विशेष रूप से देखो जहाँ तक बात है उसकी भूमि की और ये जो जितनी भी कृषि गतिविधियां उनका तो ध्यान रखना है, पर इसमें विशेष रूप से पानी की आवश्यकता क्योंकि गर्मियों में पानी कम अंतराल पर देना पड़ता है, बरसात में तो यदि वर्षा होती है तभी नहीं होती है तो देते हैं, अदरवाइज बरसात से काम चल जाता है, सर्दियों में अंतराल कम रहते हैं। तो एक क्या है कि इसमें गर्मियों में जैसे अपन चारे वाली जैसे ज्वार जैसी फसल काटते हैं तो इसमें एक जहरीला तत्व आ जाता है हाइड्रोसाइनिक एसिड
1: जी,
0: तो उसको फूल आने से पूर्व उसकी कटाई करके पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए, विशेष रूप से यही जायद वाली में ध्यान रखना चाहिए और खाद उर्वरक का समय पर प्रयोग करना है
1: जी। तो सर देखो खरीफ और जायद के पाछे महत्वपूर्ण समय होता है रबी भी, तो रबी का मौसम में उगाई जाने वाली जो फसल है बाकी खेती कौन कौन सी कृषि विधियां के द्वारा अपना किसान भाई कर सके?
0: देखो रबी में जो मुख्य फसल है उसमें जैसे एक तो रिजका है, बरसीने, जई है
1: जी,
0: हालांकि इसके अलावा भी कई जगह आजकल चुकंदर भी आ गया है एक चारे वाला और अन्य फसल भी है इस तरह की है जो नागफनी भी एक आ गई है जिसमें कांटे रहते हैं जो अपरंपरागत फसल है। जैसे अपन बरसीन को चारा फसलों का राजा कहते हैं, इसमें जो पोषक तत्व है इसमें जो विटामिन है खनिज है प्रोटीन है, तो ये जो आपकी बरसीम की जो फसल है ये अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक बोई जाती है और इसमें करीब 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है बरसीम
1: जी, जी।
0: और ये जो है मुख्य रूप से बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी, क्योंकि इसको अन्य तो ये दोमट या बलुई दोमट में हो जाते हैं लेकिन इसको थोड़ी चिकनी मिट्टी में भी पैदा हो सकती है। बीज दर जैसे मैंने बताई वो 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की जरूरत पड़ती है, प्रमाणित बीज लेना चाहिए राजस्थान राज्य बीज निगम है या राष्ट्रीय बीज निगम है या जो विश्वसनीय जो बीज विक्रेता है उनसे बीज लेकर बोना चाहिए। और बीज बोने से पूर्व ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बीज को प्रमाणित कर लें और मिट्टी का भी उपचार कर लेना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए देखो जैसे अपन कवकनाशी से करते हैं या कीटनाशी से करते हैं और एक कल्चर इसको FIR के नाम से बोलते हैं, इस सीरीज में करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले अपन कल्चर से कर ले कीटनाशी, तो श्रृंखला को ध्यान रखना चाहिए किसानों को। किसी भी फसल के यदि बीज उपचार करते हैं तो सबसे पहले कवकनाशी से करो फिर कीटनाशी से और उसके बाद कल्चर से उपचार करना चाहिए
1: जी।
0: उसके बाद बोने की जहां तक है छिड़क विधि या सीड ड्रिल से जो भी बोने किसान भाई वो बोने चाहिए, भूमि पर्याप्त नमी होनी चाहिए, नमी नहीं होगी तो अंकुरण नहीं होगा।

0: खाद और उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि खाद उर्वरक नहीं डाला तो जैसा कहते हैं कि जैसे डालो खाद ऐसा देगा, स्वाद तो वाली बात है कि पैदा होगी। तो उसमें गोबर और कंपोस्ट की खाद, बरसी में हम 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर या कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करते हैं। नत्रजन के लिए 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की जरूरत पड़ती है बरसीम की फसल में। फास्फोरस 80 किलोग्राम, जो फास्फोरस की पूरी मात्रा हम अंतिम जुताई के समय डाल देते हैं। नत्रजन की मात्रा या तो एक साथ भी डाल सकते हैं या दो टुकड़े बाद में भी पहली कटाई के समय भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी सर।
0: उसमें दूसरी फसल आती है जैसे रीज का, इसको भी चारों की रानी कहा जाता है।
1: जी।
0: गुणवत्ता जो पौष्टिकता है उसके आधार पर ही इसको क्वीन ऑफ फोडर मतलब चारों की रानी कहते हैं। और इसके लिए जो बुवाई का समय है वो अक्टूबर से नवंबर मध्य तक है। इसमें जो भूमि है वो थोड़ी बलुई दोमट भी चली जाएगी, रेतीली, इसमें चिकनी भूमि उसकी जरूरत नहीं है। 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की इसमें जरूरत पड़ती है। और गोबर या कंपोस्ट की खाद की बात करें तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर हम इसमें गोबर कंपोस्ट का खाद प्रयोग करते हैं। नत्रजन की मात्रा है वो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रिजका की फसल में जरूरत पड़ती है। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में डाल देनी चाहिए तथा नत्रजन की शेष मात्रा तीन भागों में बांटकर प्रत्येक दूसरी कटाई के बाद छिड़क कर हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए भी जहाँ तक है वो पहले देखो निराई गुड़ाई की ज्यादातर सलाह देते हैं, क्योंकि किसान काट कर खिलाते रहते हैं तो पशु को नुकसान होता है। तो इसको जो यांत्रिक विधि है उससे निराई गुड़ाई करनी चाहिए, तो बरसीम की हो तो रिजका की फसल। जहाँ तक रबी की फसलों की किस्मों की बात है, जैसे रिजका है उसमें आनंद 2 है, आनंद 3 है, आरएल 88 है, सिरसा 8 है, सिरसा 9 है जिसको टाइप 8 और टाइप 9 के नाम से, एक फ्री 244। इसी और बरसीम में जो किस्म है उसमें वरदान है, मस्का भी है, एक खदरा भी किस्म भी आती है, पूसा जॉइंट है, BL10 है, BL JB1 के नाम से भी आती है, BL1 है। इसके अलावा T780, T678 और जो जई की है उसमें केंट है, OS6 है, OS7 है, UPO94 है, OL9 है। इसके अलावा GHO-KEI है जैसे 829 है, 822 है, 851 है, या GHO-1-2004 नाम से भी एक किस्म आती है। जहाँ तक जैसे जई में, क्योंकि इनका भी टाइम जो था वो बुवाई का वही नवंबर का पहला पखवाड़ा था, 100 किलोग्राम बीज इसमें जई में जरूरत पड़ती है और गोबर की खाद भी वही 15 से 20 टन और फास्फोरस करीब 30 किलोग्राम, नत्रजन 80 किलोग्राम, 40 किलोग्राम नत्रजन एवं पूरा फास्फोरस बुवाई के समय हम बोते हैं, शेष 20 किलोग्राम नाइट्रोजन बुवाई के बाद डालते हैं।
1: जी, तो सर एक बात करें आपकी जो हरा चारा की फसलें हैं, अब थोड़ी देर पहले आप बोला कि कटाई भी एक महत्वपूर्ण भाग निभाव चाहिए, तो यहाँ की कटाई आपने कब करनी चाहिए?
0: एक तो ज्यादातर जैसे मैं बता रहा था कि ज्यादातर जो किस्म है उनमें क्योंकि कटाई, जैसे एक तो फूल आते समय, क्योंकि फूल आने से पहले हम यदि करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें क्या है हाइड्रोसायनिक एसिड होता है, उसमें जहरीला तत्व आता है, तो फूल आने के बाद ही मतलब उस अवस्था में हमें इसकी कटाई करनी चाहिए। विशेष रूप से हम जैसे इसकी रिजका बरसीम की बात करें तो रिजका बरसीम में रिजका है पहली कटाई 55 से 60 दिन बाद और अन्य कटाइयां 35 से 40 दिन बाद। ऐसे जई में पहली कटाई 60 से 70 दिन बाद, अन्य कटाइयां 55 से 60 दिन बाद। बरसीम में पहली कटाई बोने के 50 से 55 दिन बाद और अन्य कटाइयां 40 से 50 दिन बाद हमें इसकी कटाई करनी चाहिए। तो ज्वार की फसल की प्रथम कटाई फूल आना शुरू होने के बाद 50% फूल आने पर बुवाई के 60 से 65 दिन बाद, इन बाद की कटाइयां 40 से 45 दिन अंतराल पर करें। फसल की प्रथम कटाई भूमि से 6 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करनी चाहिए ताकि वो दोबारा से बढ़ सके, फूट सके। हाँ, ऐसे ही बाजरा है उसमें प्रथम कटाई फूल आते समय करें, जैसे ही 55 से 60 दिन की फसल हो जाए, और बाद की कटाइयां 35 से 40 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। फसल की प्रथम कटाई वही भूमि से 8-10 सेंटीमीटर जैसे ज्वार में करी, ऐसे बाजरा में करनी चाहिए। ग्वार की फसल 65 से 70 दिन बाद फलियां बनने लगे तब करनी चाहिए। चौले की फसल की कटाई 65 से 70 दिन बाद वही जैसे उसमें फलियां आए तब करना चाहिए। मक्का में 50% जैसे वो टेसल जो मंजरे निकलते हैं उस अवस्था में बुवाई के 65 से 75 दिन बाद कटाई करें। हरे भुट्टों के लिए ली गई उन्नत किस्मों के भुट्टे लगने के बाद हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ये कटाई की अवस्था हुई।
1: तो किसान साथियों, जानकारी दबा खातिर आपने साथ है डॉक्टर रतन सिंह मीना, पूर्व अतिरिक्त निदेशक कृषि, और यहाँ से अपनी बातचीत को विषय रहे हरा चारा की फसलों की उन्नत खेती। तो डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में पधारे और आपका माध्यम से इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी माँ का किसान साथियों तक पहुँची। एक पूरा आकाशवाणी

0: सरकार की ओर से आपको घना मानसून धन्यवाद सा।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: चला बोल रहा
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
2: कर्म तो सब ये डाले
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की वो भी बेहतर पा रहे।
2: सच है
1: बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से खेती शुरू करूंगा।
0: माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
3: राजू भाई, डॉक्टर अतर सिंह मीणा, अतिरिक्त निदेशक कृषि सेवानिवृत्त, आज अपना कार्यक्रम में आया और आपने बताया कि हरा चारा की फसलों की उन्नत खेती की तरीका से कर काश्तकार बड़ा फायदा ले सके छे, और यहाँ से अतरी चोखी तरीका से बात करे अभिलाषा बहन, तो यहाँ दोनों ने खूब खूब धन्यवाद दिया और धन्यवाद स्वरूप।
4: चौको से एक सुना लो गीत
3: तो आओ सा सगला ही मिलर सुना।

0: राजू भाई
1: हाँ जी
0: देखो सर चोको सो गीत तो आप सुन लिया गुलाबो सपेरा पार्टी को गायो और अब काश्तकार भाई को कार्यक्रम छे कार्यक्रम किसान वाणी और किसान भाइयों के लिए ई टाइम मौसम की जानकारी को ध्यान रखना बहुत जरूरी छे ताकि कोई भी आबाड़ी जो परेशानी छे उसे बचो जा सके तो थोड़ी सी जानकारी यह भी दे देना
1: बिल्कुल सर देखो आप आज बात करा अपना जयपुर का मौसम की तो देखो अधिकतम तापमान 34 डिग्री

0: जयपुर का मौसम की तो देखो अधिकतम तापमान रही 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान रही 27 डिग्री, पर बादल बने रहा है, बादल बने रहे सी। और आप राजस्थान के पूरा की बात करा मौसम की तो देखो अपना राजस्थान राज्य का पश्चिमी भाग में मौसम शुष्क बने रहियो, और राज्य का जो को पूर्व को भाग है भरतपुर और कोटा संभाग को दिन कड़े कड़े हल्की बरसात हुई और कड़े कड़े हल्की बरसात होने की संभावना भी है, बादल बने रहे सी।
1: अरसाई मौसम की जानकारी के साथ ही अब कार्यक्रम किसान वाणी को टाइम पूरे हो तो जा रहे थे तो काश्तकार वहाँ दिराव आज्ञा आशा ने
0: और राजू ने
1: चालार करा
0: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी बता रही है 7:30 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनवाला सगळा श्रोतावाने आशा धावाई का घना घना राम राम। राजू भाई आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
3: राम राम सा और सगळा जो आपना श्रोता है खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनवाला सगळा ने राजू चौधरी को गुनो गुनो राम राम सा।
2: राजू भाई आज छे गुरुवार और गुरुवार के दिन खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपा करा छा फोन इन कार्यक्रम। जी के मायने विषय विशेषज्ञ आवे छे जो कि अपना जी का काश्तकार भाई छे, वहां की खेती बाड़ी से जुड़ी जो भी समस्या छे, जो सवाल छे, वहां से सीधा वे बात कर अपनी समस्याओं को समाधान पा सके छे। और आज भी आपने जी का विशेषज्ञ छे वे स्टूडियो में पधार चुके छे, तो सबसे पहली तो ओळखाण वहां की करा दिया। आज काश्तकार भाइयों का सवालों को जवाब देवा के लिए, वहां की समस्याओं को समाधान करवा के लिए स्टूडियो में पधारे हैं श्री राकेश कुमार अटल, अतिरिक्त निदेशक कृषि। कार्यक्रम में आपको खूब खूब स्वागत है। राम राम सा।
4: राम राम सा।
2: और देखो सा, जिया की गुरुवार छे और फोन इन कार्यक्रम छे, तो फोन नंबर भी माका जी का भाई लोगा छे वाना आप बता देवा। स्टूडियो की चार फोन लाइना में आपके लिए खोल रखा सा भाई लोगा, जिका नंबर छे 2200600, 2200700, 2200800 और 2366477। ये चार फोन लाइना छे जी पर आप फोन कर सको छो। जब भी आप फोन करो तो जयपुर को जो एसटीडी कोड छे 0141 वो जरूर से लगा लो। और यो जरूर ध्यान रखो कि जो भी प्रश्न हो वे सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी से जुड़ेरा भी हो है। और कोई विषय को सवाल आप ना पूछो तो वो थोड़ो बढ़िया रहे छे, क्योंकि विषय से जुड़ेरा सवाल हम कोई विशेषज्ञ सही तरीका से आपको जवाब दे पावे छे। थोड़ो सो ध्यान याद ही रखो कि जब भी आप बात करो तो रेडियो सेट से थोड़ी सी दूरी बना बात करो, ताकि आप जो पूछ रहे हो वो अच्छी तरह से विशेषज्ञ के समझ में आवे सवाल आपको और वे आपको जवाब दे पावे। जब तक विशेषज्ञ आपकी समस्याओं को समाधान करे छे तो आप फोन लाइन पे बने रहो, ताकि कोई बीच में और बात पूछनी होगा आपका प्रश्न से जुड़ेगी तो विशेषज्ञ आपसे पूछ पावे। थोड़ा सो ध्यान याद भी रखो कि प्रश्न को दोहराव ना होवे, ताकि और जी का काश्तकार भाई जो कोशिश करता रहे वैसे लगातार बात करवाने वाको भी फोन आपा ले सका। और देखो फोन आपको शुरू भी होगा छे, बात कर ले वाजा। राम राम सा।
5: राम राम सर। राम।
2: खेतीबाड़ी कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत है। कौन बोल रहा है, नाम बताओ आपको।
5: हुसैन खान बोल रहे हो सर, ब्यावर क्षेत्र जिला मगरा से।
2: जी खान साहब, कहीं पूछना चाह रहे जो?
5: मैं डॉक्टर साहब से नमस्कार कर रहा हूँ।
6: नमस्कार सर।
5: मैं साहब के एक दो बीघा में मूंग है, पीला पड़ गया, पत्ता मोड़ लिया है, गुहार में भी यही समस्या आई थी है, उनसे दवाई लो काम।
6: देखो पीला पड़ना के दो तीन कारण हो सकते हैं कि एक तो हालांकि इस साल बारिश ज्यादा नहीं हुई, पानी भर जाता है कहीं कहीं, तो उससे भी ये पीले पड़ जाते हैं। और दूसरा ये जो छोटे छोटे कीट होते हैं रस चूसने वाले, ये विषाणु जनित जो रोग फैलाते हैं, इसकी वजह से भी ये पीले पत्ते पड़ते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो यदि आपके खेत में फसल पे छोटे छोटे मक्खियां या इस तरह से रस चूसने वाले कीट उड़ रहे हैं, तो उनको नियंत्रण करने के लिए आप आपके पास पानी की व्यवस्था हो तो कोई पानी वाली दवाई ले लें, और या फिर कोई भुरकाव कर सको तो आप भुरकाव भी कर सकते हैं। ये आपको विशेष ध्यान देने की बात है। इसमें आप मेलाथियन है 50 cc का भी छिड़काव कर सकते हैं, या कोई पाउडर है तो ये जिसको नालफास पाउडर है इसका छिड़काव कर सकते हैं 4 किलो बीघा के हिसाब से।
5: ठीक सर, धन्यवाद।
6: जी
2: धन्यवाद सा खान साहब, फोन कर बताइए, आपको भी खूब खूब धन्यवाद।
3: हेलो।
5: हेलो राजू भाई नमस्कार।
3: राम राम साहब, खेती बाड़ी कार्यक्रम।
5: बहन जी आपको, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। प्रकाश जंगल बोल रहा हूँ।
3: बोलो प्रकाश जी, क्या जानकारी चाह रहे हो?
5: डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा था, डॉक्टर साहब वैसे मैं तो किसान नहीं हूँ, मैं तो जयपुर से बोल रहा हूँ, बाकी गाँव से फोन मेरे पास से आते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ तुम खुद करो ना। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो गाजर डालने का सही समय कौन सा, अभी फिलहाल सही समय एक नहीं है।
6: देखो गाजर का तो देखो मैं तो वैसे कोई अगेती कर रहे हैं जैसे अपना
5: ये जो लाल वाले

0: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक, CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।

0: स्वागत भी करते हैं उधर हमारी तरफ कोटपुली वैर हो रही है इस साइड में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही नाम लेना चाह रहा हूँ, बानसूर का जो एरिया है दिल्ली के आसपास का एरिया, जो दिल्ली वालों को आप गाजर खिलाते हो तो एडवांस प्लांटिंग करते हैं तो वैसे हाँ कर सकते हैं आप। बाकी थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखें कि उसकी उगने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इसमें जो फंगल बीमारियां है वो थोड़ा, वैसे किसान बहुत ही एक्सपर्टाइज हो गए इसमें उगाने में तो वो ये तीन चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं, वैसे करने भी लग गए आप कर सकते हैं। बाकी
0: थोड़ा सा हमारा एरिया तो बहुत एडवांस है
1: और थोड़ा सा 5-7 दिन और रुक जाए तो ठीक रहेगा फर्स्ट वीक तक।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: थैंक यू,
1: नमस्कार
2: सर, धन्यवाद सर। जहांगीर जी फोन कर बताएं आपको, खूब खूब धन्यवाद। हेलो हेलो
3: हेलो,
2: खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है, नाम बताओ सर, कौन बोल रहे छो?
3: शिवराम जी बोल रहे हैं,
2: जी
3: जी
2: कहीं पूछना चाह रहे छो आज?
3: अभी मैं डॉक्टर साहब से मुझे धन उबाले गए, अब
2: धन उबाले हो कहीं बताओ सर।
3: मौसम
1: है थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, ह्यूमिडिटी समझ गए थे, यहाँ थोड़ा मौसम में जो है ना गर्मी काफी चिपचिपाट टाइप गर्मी जया
3: गर्मी
1: तो ये टाइम अभी आज अखबार पढ़ा होगा तो भाई बारिश आ बाकी भी संभावना से है ना, 3-4 दिन तक लगातार तो अब आओगा तो थोड़ा उगाड़ो जब बचे तो
3: बाजरा में थोड़ा कीड़ा लागो सफेद पोटास में जो दवाई दे
1: उसमें पोटे में तो लग गया तो आप डाइमिथोएट का है ना छिड़काव कर सकते हो है ना, और या पोटे के अंदर ही चला गया तो फिर ये कार्बोपुरान जो 3G कण आते हैं ना ये इनको आप सभी में तो है नहीं, जहाँ जहाँ आप हाथ से डाल सकते हो है ना, इस तरीके से नियंत्रण कर सकते हो आप।
2: धन्यवाद
1: सर
2: फोन कर बताइए, घनो
4: घनो
2: धन्यवाद।
4: हेलो हेलो
5: हेलो, हाँ नमस्ते जी,
4: नमस्ते जी, खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है, कहीं जानकारी चाह रहे हो सर?
5: साहब देवदत्त वशिष्ठ बोल रहा हूँ, तहसील बानपुर ग्राम मूठुआ फतेहपुर से।
4: जी बताओ कहीं जानकारी चाह रहे हो?
5: मैं डॉक्टर साहब मेरी मूली डाल दी मैंने 1 बीघा, रिच फंड का बीज दिया मैंने, सिजेंटा का मांगा था बनियों से तो उन्होंने रिच फंड का दे दिया
1: जी।
5: अब 10% मूली खराब हो रही, मतलब 10 से 15% मूली में काले धब्बे पड़ गए उसमें।
1: अच्छा जी,
5: तो अब ये बताओ इनके ऊपर क्या करें, अभी क्या कार्रवाई करें इनके, इनका काम है इनका, इनका अब क्या कहें, गाड़ी काटे तो बेकार है, अब इनका क्या बिगड़ गया, 25,000 के नीचे आ गया उस खेती में।
1: मैं आपको 2-3 सलाह दूंगा, यदि पहले तो आपने बीज लिया है आपने जो चाहा वो नहीं दिया, आपका कहना है स्पिल्ड का दे दिया या जो भी कंपनी है आपकी जो भी आप फरमा रहे हैं है ना, तो बिल है आपके पास?
5: नहीं साहब ये काम बिल देंगे जी, यही काम क्या है, तभी जिंदगी नहीं सुधरेंगे, जो बढ़िया लोग है ना ये जिंदगी नहीं सुधरेंगे
1: जी, कोई बात
5: भी नहीं देंगे क्योंकि मजबूर है किसान के पास जाने के लिए।
1: आपका गांव तो बानसूर में है?
5: हाँ बानसूर में।
1: तो आपसे स्थानीय जो अपने जो कृषि के कार्यकर्ता उनके ध्यान में ला करके जो वहाँ जिला स्तर पे बैठते हैं जॉइंट डायरेक्टर साहब उनको आप अर्जी लगाए तो क्या स्थिति है, क्यों नहीं दिया बिल, पहले तो बिल लो और फिर किस कारण से वो बीज उगा, कितना उगा, कैसे उस पर प्रभावित हुआ,
5: मूलियों में कितने काले धब्बे हैं, मतलब 1 क्विंटल में 15 किलो खराब आ रही है, तो उगना भी ठीक नहीं, मतलब जो मैंने कहा था ना
1: तो ये थोड़ा सा मैंने बताया, वैसे आप करेंगे तो वो आपको जरूर उचित सलाह देंगे और जो जो संबंधित विक्रेता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे,
5: कभी भी नहीं कर पाएंगे इनका क्योंकि वो खेतरी है।
1: आपको है ना ये मैं सही सलाह दे रहा हूँ, आप एक बार प्रयास करो, नहीं तो हमें आप जरूर बताना, हम पर्सनली कहेंगे उनको व्यक्तिगत रूप से कि ये कौन सा गांव बताया आपका, मैं लिख लेता हूँ आपका नाम,
5: फतेहपुर, फतेहपुर
1: नाम
5: देवदत्त वशिष्ठ,
1: देवदत्त हो सके तो आप अपना मोबाइल नंबर और दे दो मेरे को
5: 7597
1: जी
5: 85-29-84
1: और गांव कौन सा बताया?
5: फतेहपुर
1: ठीक है सर,
5: क्योंकि एक बार तो मैंने अभी जैसे गाजर बोई, मैंने 29 जुलाई को बो दी थी मैंने, एक बीघा गाजर भी बोई है।
1: चलो मैं आप करना और मैं भी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कहूंगा वशिष्ठ साहब,
2: धन्यवाद साहब फोन कर

0: बताएं। राम राम सर।
1: राम राम जी।
0: खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहा है, नाम बताओ आपको।
1: नाम सुन दीजिए
0: जी, काई पूछना चाह रहा छो।
1: मैं काई तो थोड़ी बहुत नींद भरी हुई थी
2: जी,
1: तो वो का गया गया फूल आवा लग गया था ना, तो चिड़िया हार खा जाओ। अब यह समझते थे कि उसमें कमाए ना काई कीटनाशक को छिड़काव करा।
2: देखो देखो चिड़िया खा रही है ना, तो चिड़िया को तो उड़ाओ आप, कीटनाशक आवश्यक रूप से। देखो इसमें इसमें की सुई, देखो सुई निकलती है ना।
1: हाँ
2: हाँ, तो माटी चढ़ाओ तो पहले तो देखो माटी चढ़ाओ तो है ना, थोड़ी पॉली सी माटी तो सुई भी माल घुस जाएगी, मोफड़ी बनेगी। चिड़ी इतनी भी चिड़ी मान लो खाती है तो देखो वो खाएंगी तो उनको उड़ा भी सकते हैं अपन। अब कीटनाशक जी,
1: हाँ
2: कीटनाशक छिड़केंगे तो वो मर भी सकती है, तो उनको फसल भी बचाए, उनको उड़ाए और पैकिंग अच्छी तरह से हो और मिट्टी चढ़ाए।
1: ठीक है, धन्यवाद
2: जी।
0: धन्यवाद सर, फोन कर बताएं, आपको भी खूब खूब धन्यवाद
3: जी। तो डॉक्टर साहब, मूंगफली की फसल के मैं पीला रोग को उपचार बताओ सर।
2: हाँ हाँ, जो पीला रोग का तो आपने अच्छी बात पूछी कि कई बार इसमें विशेष तत्व होता है जिसमें आयरन वगैरह इनकी कमी से भी ये पीली पड़ जाती है, एक तो ये कारण हो सकता है। तो उसके लिए यदि 0.1% जो फेरस सल्फेट है उसका छिड़काव कर सकते हैं किसान
0: जी। हेलो,
4: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हो, किसी जगह से बोल रहे हो, नाम बताओ सर आपको।
4: बावनलाल जोड़ बोल रहा हूँ, गोठड़ी से, तहसील मकाड़ा
0: जी। कहीं पूछना चाह रहे हो।
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खेत की जो मेड़ है उस पर 6,000 पेड़ लगाने, मेरे को
0: खेत की मेड़ पर
4: पेड़ लगाने 6,000 पेड़ों के बारे में जानकारी चाहिए।
2: आप देखो पेड़ आपकी मेड़ पे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फलदार और छायादार और कुछ फल भी कभी मिल जाए तो ठीक है। मैं तो ये कहूंगा जैसे आप एक तो है ना, आपको यदि अच्छी कीमत वाला तो शीशम, जिसको टाली बोलते हैं, शीशम देखो जरूर लगाएं। ये और आड़ू जो है ना, आपको चारा भी मिलेगा और हल्की लकड़ी भी मिलेगी जिसके आगे भविष्य में 5-7-10 साल बाद में आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। आप बेर भी ले सकते हैं और करूंदा जो है, करूंदा उग लगा सकते हैं, बाड़ का भी काम हो जाएगा और अपने को फल भी मिल सकता है सब्जी के रूप में
0: जी। राजू भाई, काश्तकार भाई आपने साथ जुड़ रहे थे और श्री राकेश कुमार अटल आपने साथ छे, काश्तकार भाई का सवालों को जवाब दे रहे थे, आगे भी आपने साथ बना रहे वाला, पर ई छोटा सा अंतराल के बाद।
5: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज, प्रायोजक है डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोक रोड टोक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
8: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक, CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
6: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
7: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
6: लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
7: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
6: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
3: तो श्रोताओं, आप फोन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आज विशेषज्ञ श्री राकेश कुमार अटल जी, अतिरिक्त निदेशक कृषि। तो अपन जानकारी दे रहे हैं और आप जानकारी आंसु अब जैसे जगह मूंगफली है कि पीड़ा रोग की उपचार का बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो एक ही जानकारी बताओ सर।
2: हाँ, मैंने बताया था आपको ये पीले रोग किसी विशेष तत्व की कमी से हो सकता है जो फेरस सल्फेट

0: बताया पॉइंट वन प्रतिशत के हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा पीली ये भी पड़ जाती है कई बार पोषक तत्वों के अलावा इसमें जड़ में कोई कीड़ा हो, सफेद लट वगैरह, तो वो भी आप देख करके उसका फिर यदि कोई लट है तो उस लट का ही अपने को नियंत्रण करना पड़ेगा। इस तरह की पीला पड़ने के लिए कई बार जैसे पानी भर गया खेत में तो भी पीली पड़ सकती है, कई कारण हो सकते हैं पीला पड़ने के।
1: ठीक सर, धन्यवाद। हेलो
2: हेलो हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है।
2: हाँ जी, राम राम जी।
1: राम राम जी, जी बात कर रहे हो साहब, कहाँ बात कर रहे हो?
2: जी मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी।
1: जी बताओ, कहाँ जानकारी चाह रहे हो?
2: जो मेरी समस्या है कि जो अभी जो अमृत में जो जो फूल फल वो आ रही है कि उसको हटाया गया, अभी सही टाइम है अमृतों का?
0: हाँ, इसमें बाहर आती है तो आप इस बाहर को लेंगे तो इसमें इसमें क्या है कि बीमारियां ज्यादा आती है जैसे मेरा मानना है, तो आप इसमें कितनी बार दो ऐसे बाहर तीन होती है, दो अमूमन किसान लेते हैं, लेकिन स्वस्थ रहे पौधा अच्छे फल मिले तो एक ही बार लेते हैं कई बार। आप कौन सी बार पसंद करते हो?
2: ये दोबारा आई है जी।
0: हाँ, तो इसके बाद में मेरा सलाह होगी तो इसके जो दिवाली के आसपास वाली जो बाहर आती है वो जरूर ले। उससे क्या है कि अच्छा उत्पादन मिलेगा, और ये जो बारिश की वजह से कई बार प्रकार के कीड़े या बीमारियां आती है उससे फल खराब नहीं होंगे, आपको थोड़ा सा नुकसान भी नहीं होगा।
3: धन्यवाद साहब, फोन कर बताइए, खूब खूब धन्यवाद। और आप अपना जो कास्ट करवाया जवाने एक बार फिर से राजू भाई फोन नंबर बता दो
1: जी। 2200600, 2200700, 2366477, 2200800, और इसे पहले अपन लगाना चाहिए जयपुर का एसटीडी कोड 0141
3: जी। तो ये चारू फोन लाइन आज है जहाँ पर कास्ट कर रहे हैं, आप फोन करो। और श्री राकेश कुमार अटल अतिरिक्त निदेशक कृषि आपके साथ है, आपके सवालों को जवाब दे रहे हैं। और अटल साहब, अब आपसे पूछना चाहूंगा कि सफेद मक्खी और तना मक्खी जो हो जाओ से तो आप क्यों हो गए, कहीं को उपचार है? एक कास्ट कर रहे हैं जुड़गा, पहले वहां से बात कर लेना चाह फिर। राम राम साहब।
2: हेलो, राम राम जी।
3: खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत, नाम बताओ सर आपको।
2: मैं विक्रम सिंह बोल रहा हूँ, नींदा थाना से।
3: जी
0: जी बताओ,
3: काय पूछना चाह रहे हूँ?
2: सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो सफेद लट आते है ना मूंगफली, पर इसका कोई इलाज हो सकता है?
0: सफेद लट तो मूंगफली में आएगी, उसका है ना कीट है ये, तो इसमें तो क्या है कि ये भ्रंग आते है ना, पहली मानसून की जो बारिश आती है उस समय आप भ्रंग का नियंत्रण करेंगे तो इसमें जो भ्रंग है ना बाद में ये अंडे देते हैं, इसमें जमीन में जो मादा भ्रंग होती है, तो उस समय से ये अपन करें तो नियंत्रण करें तो उस समय इसके जो खास पौधे होते हैं जैसे कोई नीम है, खेजड़ी है, इस तरह के आपके जो खेत में पेड़ होते हैं उन पे आते हैं एक साथ निश्चित टाइम पे शाम के टाइम में, उस समय आप ऐसे पौधों पे छिड़काव कर दो इमिडाक्लोफिड दवाई वगैरह का, ताकि वो जैसे वो फीडिंग करेंगे तो उनके पेट में जहर जाएगा, उसके शरीर में बॉडी में वो मर जाएंगे, उनको आप इकट्ठा करके गाड़ दें, नष्ट कर दें। दूसरा यदि खड़ी फसल में है तो आपके सफेद लट है तो आप खोद करके देख लें, जड़ों को नुकसान करती है तो
2: खड़ी फसल में असर और जड़ खा जाती है और ऊपर से जल जाती है पूरी।
0: क्यूनाल फास्ट जो 50 cc है वो 4 लीटर प्रति एक के हिसाब से है ना, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या इमिडाक्लोफ्रिड है ना, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि अपन फसलों को लट से मूंगफली को बचा सके।
2: सर कई बार तो ये मतलब ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर इसमें हिलमिंडा काम करती है ना, कोई दूसरी दवाई, पूरा खेत का खेत खाली हो गया था एक बार मेरा।
0: आपको शुरुआत जब से आप बुआई करो उसके पहले जी मैंने शुरू से लेकर बताया ना, खड़ी फसल में बुआई से पहले ये सारे इंतजाम करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा।
2: ओके सर, धन्यवाद
0: जी।
3: धन्यवाद सर, फोन कर बताइए, आपको खूब खूब धन्यवाद। और जी कि आप जानबो चारा सा सफेद मक्खी और तना मक्खी के बारे में भी बताओ सर।
0: हाँ, मक्खी है क्या है कि सफेद मक्खी, तो इसका जैसे नाम ही है सफेद, छोटी सी होती है सफेद, और ये ज्यादातर पत्तियों के नीचे की तरफ होती है और रस चूसती है।

0: इसके जो मुखांग होते हैं जो रस चूसने वाले, तो ये क्या एक पौधे से स्वस्थ पौधे पर उड़ करके रोग इसके जो रोगाणु है जो फैलाती है, और तना जो आपके जो तने में छेद करती है तो तना मक्खी होती है, तो ये तो उसका अंतर हो गया। तो इसके जो नियंत्रण के लिए फेनोल रेट है, ये चूर्ण है, तो अब हम बुरखाव करेंगे तो निश्चित रूप से इसका नियंत्रण होगा। और सफेद मक्खी है डाइमिथोएट आप 30 के नाम से दवाई आती है, 1 लीटर में 1 ml के हिसाब से प्रयोग करें। और मिथाइल डेमेटोन दवा है एक, ये इसको भी 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप प्रयोग करें
1: जी।
2: हेलो
3: हेलो, नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है सर। का नाम है, कदम बात कर रहे हो?
3: नाम अजीत सूचार है, टीम का था।
2: कहीं जानकारी दे पूछ रहे हो सर?
3: साहब मिट्टी के उपरांत बढ़ गई है, मिट्टी में बढ़ गई है, पानी भी दे रहा हूँ और भाग भी आ रहा है।
0: देखो बल्बा को मतलब जो ब्लाइट है ना, जल जल जाती है, झुलसा बोलते हैं इसको, ब्लाइट बोलते हैं। और एंथ्रेक्नोज टाइप इसके काले काले डॉट डॉट होते हैं, तो वो जैसे तो ये क्या है कि कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें विषाणु भी हो सकता है, इसमें फंगस भी हो सकती है। तो मैं तो चाहूंगा कि एक बार ऐसे यदि गिनती के पौधे हैं तो उनकी टॉप का ना तोड़ दो आप, ठीक है? और यदि बहुत ही ज्यादा है तो फिर आप है ना कोई मेनकोजेब वगैरह या मैंने जो ना डाइथेन M45 के नाम से दवा आती है उसको, और ये डाइमिथोएट जो 30 cc दवा है इसको आप प्रयोग करें। यदि कमी पौधे हैं तो आप एक बार तोड़ करके देख लो ना साइड में, तो फूटान उनकी बढ़िया हो जाएगी। और ज्यादा ऐसे पौधों को उखाड़ ही दो आप ज्यादा, यदि कम
3: 60-70 पौधे
0: हैं पूरे खेत में ही,
3: क्यारी बनानी नहीं है,
0: छोटी
3: छोटी एक
0: क्यारी
3: में 10 पौधा, एक में 20
0: यहाँ। कितना कितना बड़ा खेत है, कितना बड़े?
3: नहीं क्यारी छोटी छोटी।
0: चलो ये करके देखो आप जो मैंने बताया वैसे, है ना?
3: हाँ ठीक
0: जी,
2: ठीक है सर। और देखो साहब आप जानना चाहना कि अभी जो अपनी दलहनी फसलें हैं खरीब ऋतु की बंक वाइन आप जो हरी लट हो जाए फली छेदक, तो भी को नियंत्रण के प्रकार करो।
0: हाँ, जो फली छेदक की बात भी जो मुझे मैंने बताई ना, तो ये क्या होता है कि अंदर से फली को खोखला कर देती है और उसमें एक्सक्रीटा भी कर देती है, उसका मल जो है उसी में हो जाता है, बीज भी खराब हो जाते हैं, फसल को नुकसान होता है। तो बीज को मारने के लिए कोई भी जो कीटनाशक है, जैसे मैंने बताया अभी पानी की व्यवस्था है तो आप तरल वाला ले लें, और नहीं तो बुरकाव करें, कुनाल फास है आपके, ये दूसरी जो दवा है जो मेलाथियान डस्ट है इसका भुरकाव कर सकते हैं, या डाइमिथोएट है इसका छिड़काव कर सकते हैं।
2: हेलो
4: हेलो,
2: खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है सर। कौन साहब बोल रहे हो?
4: सर हरियाणा से बोल रहा हूं
2: जी। कहीं जानकारी चाह रहे हो
4: सर? गाजर बोया जी, कट गई
0: गाजर,
4: कट गई जी गाजर बोया था जी
0: जी,
4: कट गई जी, ये कट गई।
0: हाँ गाजर उगी नहीं है ना?
4: हाँ जी, उग तो आई थी जी, बस बाहर निकल गई जी।
0: फिर
4: दोबारा बारिश
0: बारिश हुई थी?
4: हाँ जी बारिश हुई थी।
0: हाँ तो जब भी हो गई वो, अब तो जब खराब है दोबारा उगाना पड़ेगा। कि आपको गाजर उगानी है तो थोड़ा सा आपके इधर एडवांस करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें सावधानियां भी काफी बरतनी पड़ती है। तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि यदि आप हल्की सी चाल, बिल्कुल हल्की करनी है शुरू में, तो बड़ा होकर के जो भी आप है ना हल्की, उनके बीज हल्का होता है, इसका बीज भी हल्का होता है।
4: डेली
0: नहीं, जब भी अभी तो देखो इन दिनों में तो बारिश भी आ रही है, देखो है ना, तो आप
4: बारिश नहीं हो रही है,
0: देखो आती है इन दिनों में, तो मैं कह रहा हूँ
4: हाँ जी।
0: और आप महसूस करो कि भाई सूखने लगी धरती, तो 5-6 दिन के अंतराल से करें आप हल्की सिंचाई। जब तक पौधा छोटा है तो हल्की करें, जब बड़ा हो जाने लग जाए तो थोड़ा सा उससे थोड़ा पानी की जो है ना मात्रा बढ़ा दे।
2: बिल्कुल साहब, वो देखो साहब अब बात करें आगे खेत में जल निकास करने की आवश्यकता क्यों है?
0: हाँ जल निकास बहुत जरूरी है। ड्रेनेज कई बार क्या होता है कि जो खेत का

0: हो तो उसमें पानी भर जाता है, और कई बार तो पानी इतना भर जाता है कि अपन पड़ोस में तो खेत का जो मालिक है वो खेत को उगा रहा है, अपन पानी की वजह नहीं उगा पाते हैं। तो जल निकासी जरूरी है किसी न किसी रूप में, कोई नाली करके या क्यारी करके या क्यारियों में के निकास करके आप पानी को दूर करें। निकासी इसलिए जरूरी है कि यदि खड़ी फसल में होगी तो फसलें गड़ के अपने खत्म हो जाएंगी, दलहनी फसलें हैं तो वो तो गड़ी जाती है, और जो दूसरी फसलें उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अपने को जल निकासी के लिए ये है कि कोई यो तो है नहीं कि कोई दवा छिड़कनी है इसमें, नहीं, अपने को इस तरीके के साधन ईजाद करना है किस तरीके से पानी को निकाला जाए, चाहे खाई खोद करके चाहे नाली बना करके चाहे और दूसरे रीति से, या आजकल तो पंप वगैरह से भी करते हैं।
1: जी तो देखो अब समय को थोड़ा सा ही अपने पास बचे छे, तो चलता चलता आपसे यही पूछो चाहो ना, अबार का मौसम ने देखता हुए अपना जी का काश्तकार भैं छे जो कोई अगेती फसल बो रखा छे, या मुख्य रूप से काई काम मोटा मोटा छे जो की वाने करनी छे ताकि फसल सुरक्षित रख सके।
0: हाँ ये की कई जगह तो अच्छी बारिश हो रही है, और जहाँ ऐसी फसलें हैं कि भाई उनको बारिश नहीं आई तो फसलें कुमला रही है, तो आप किसी न किसी रूप में चाहे फुहारे से या आपके पास फार्म पॉन्ड की व्यवस्था हो तो उससे कहीं आप हल्की सिंचाई करके अपने फसलों को बचाएं। साथ ही कहीं खरपतवार है तो खरपतवार का नियंत्रण करें, कहीं कीड़ा बीमारी है जिससे फसल उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उसका नियंत्रण करें। और साथ ही ये भी कहूंगा कि यदि फसलों में इसके अलावा कोई आपको कोई ऐसा कीड़ा बीमारी है जो समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक नमूना जो है उसको खाड़ करके आसपास का जो कृषि का जो कार्यालय हमारे जो कार्मिक बैठते हैं उनकी सलाह के अनुसार आप आगे की कार्रवाई करें।
1: राजू भाई, श्री अशोक कुमार अटल अतिथि निदेशक कृषि जो आपने साथ आज स्टूडियो में अच्छा सी राकेश कुमार अटल जी, तो बहुत ही बढ़िया तरीका से आपने जी का श्रोताओं से जो पूछा वहां का सवालों को जवाब दिया, वहां की समस्याओं को समाधान कराया, इतना ही। आपको खूब खूब धन्यवाद राकेश जी। और अब स्टूडियो की घड़ी कह रही थी कि आज को जी को कार्यक्रम जो खेती बाड़ी को टाइम पूरा होते जा रहे हैं, तो श्रोताओं दिरा आगे आशा ने
2: और राजू ने
1: चालान करा
2: राम राम
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारी भेड़ियां।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आराधना आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी भेड़ियां में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक भावुक और जागरूक करने वाला नाटक, बचपन का अधिकार। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुनते होंगे। हमें बहुत खुशी होती है जब आप लोग फोन कॉल व मैसेज के द्वारा हमें सुझाव देते हैं। तो श्रोताओं, आज फिर हम आपके लिए एक और नई कहानी को साथ लेकर आए हैं। हमें आशा है आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर जरूर नोट करें। हमारा फोन नंबर है 9414066730। मैं फिर से एक बार नंबर दोहरा देती हूँ। हमारा नंबर है

9414066730. तो श्रोताओं, हम अपने उन श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तथा लगातार हमसे फोन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। उनके नाम हम कार्यक्रम के अंत में आपसे जरूर साझा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। आज की कहानी का शीर्षक है बाल विवाह की बेड़ियां।

0: भारतीय समाज की एक अत्यंत गंभीर और जटिल सामाजिक समस्या है, जो न केवल बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, बल्कि राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास को भी गहराई से प्रभावित करती है। यह कुप्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी कई क्षेत्रों में अशिक्षा, गरीबी, लैंगिक असमानता, सामाजिक परंपराओं और रूढ़िवादी मानसिकता के कारण जीवित है। बाल विवाह का अर्थ है ऐसे बच्चों का विवाह जो कानूनी रूप से विवाह योग्य आयु तक नहीं पहुँचे होते, अर्थात लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम। बाल विवाह के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है गरीबी, जहां माता पिता अपनी आर्थिक जिम्मेदारी कम करने के लिए जल्दी विवाह कर देते हैं। अशिक्षा, जिसके कारण लोग इसके दुष्परिणामों से अनजान रहते हैं। और सामाजिक परंपराएं, जहां इसे सम्मान या परंपरा का हिस्सा माना जाता है। कई बार सुरक्षा की भावना से भी माता पिता अपनी बेटियों का जल्दी विवाह कर देते हैं, जिससे वे समाज की बुरी नजरों से बच सकें। इस प्रथा का प्रभाव अत्यंत हानिकारक होता है, विशेषकर बालिकाओं के लिए। बाल विवाह उनके बचपन, शिक्षा और स्वतंत्रता को छीन लेता है। कम उम्र में विवाह होने के कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, जिससे उनका आत्मनिर्भर बनना बहुत कठिन हो जाता है। इसके साथ ही कम उम्र में गर्भधारण उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है। मानसिक रूप से भी वे तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव का सामना करती हैं। बाल विवाह केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज और देश के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। जब तक लोग स्वयं इस कुप्रथा के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, तब तक इसे पूरी तरह समाप्त करना बहुत कठिन होगा। बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाएं और एक जागरूक और प्रगतिशील समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
1: रीना बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल का समय हो रहा है।
2: जी माँ, बस किताब ही रख रही हूँ।
3: रीना, आज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है।
2: पिताजी, क्यों?
3: कल गांव के शर्मा जी आए थे, उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है और मैंने उन्हें हाँ कह दिया है।
2: क्या? लेकिन पिताजी, मैं अभी सिर्फ 15 साल की हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरे सपने।
1: मैंने भी इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मान ही नहीं गई।
3: हम गरीब लोग हैं, लड़की की शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा रहता है, बाद में खर्च और बढ़ जाता है।
2: पिताजी, मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ, अगर अभी

0: गई तो मेरी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाएगी।
1: मेरी बेटी, समाज भी तो देखना पड़ता है।
0: लेकिन किस समाज मेरे सपने पूरे करेगा?
2: रीना सही कह रही है जी, आजकल लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं।
1: बस मैंने फैसला कर लिया है।
3: रीना, आज तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या बात है?
0: मैडम, मेरे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं।
3: क्या? लेकिन तुम अभी नाबालिग हो, ये गलत है।
0: लेकिन मैडम, हमारे गांव में तो कई लड़कियों की शादी जल्दी ही हो जाती है।
3: रीना, कोई चीज सालों से होती आ रही हो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है।
0: पर टीचर, मैं क्या कर सकती हूँ?
3: तुम ही सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि कानून भी इसके खिलाफ है।
0: क्या? कानून भी इसके खिलाफ है? कैसे मैडम?
3: हाँ, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और लड़के की शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। इससे कम उम्र में शादी करवाना कानूनन अपराध है।
0: लेकिन मैडम, मेरे माता पिता तो मेरी भलाई ही चाहते हैं।
3: बिल्कुल, हर माता पिता अपने बच्चों के भलाई चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी होना भी जरूरी है। हमारे संविधान ने बच्चों को कई अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 लड़कियों और बच्चों के साथ भेदभाव नहीं, अनुच्छेद 39F सुरक्षित और स्वस्थ बचपन का अधिकार।
0: अगर कोई जबरदस्ती शादी करवाए तो
3: तुरंत मदद मांगनी चाहिए। तुम चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर फोन कर सकती हो। पुलिस और प्रशासन बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
0: मैडम, क्या आप मेरे पिताजी से बात करेंगी?
3: हाँ जरूर रीना, बच्चों के सपनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: कौन?
3: नमस्ते, मैं रीना की शिक्षिका हूँ।
1: जी आइए।
3: मुझे पता चला कि आप रीना की शादी करवाना चाहते हैं।
1: जी, लड़की बड़ी हो रही है, गरीब आदमी हूँ मैडम, जिम्मेदारी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ।
3: लेकिन रीना अभी बच्ची है, इस उम्र में शादी उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य तीनों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हमें तो कभी किसी ने समझाया ही नहीं। कम उम्र में शादी होने से कई लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं। जल्दी माँ बनने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
1: लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
3: आज समाज बदल रहा है, पढ़ी लिखी बेटियां परिवार का सहारा बन रही हैं। अगर रीना पढ़ेगी तो आपके परिवार का नाम रोशन करेगी।
0: पिताजी, मैं वादा करती हूँ मैं खूब मेहनत करूंगी।
3: जी, इसे पढ़ने दीजिए।
1: लेकिन कानून?
3: बाल विवाह करवाना अपराध है, इसमें सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
1: मुझे लगा मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, लेकिन शायद मैं अपनी बेटी का बचपन ही छीन रहा था।
0: पिताजी।
1: नहीं बेटा, अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, पहले तुम पढ़ोगी।
3: भगवान आपका भला करे मैडम जी।
0: धन्यवाद पिताजी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी।
3: याद रखिए, हर बच्चे को अधिकार है शिक्षा पाने का, सुरक्षित बचपन का, अपने सपने पूरे करने का, हिंसा और शोषण से सुरक्षा पाने का।
1: और माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी सुरक्षा करें और उनके सपनों का सम्मान करें।
0: बेटियां बोझ नहीं होती, वे परिवार की ताकत होती है। अगर आपके आसपास कहीं बाल विवाह हो रहा है तो चुप मत रहिए,

श्रोताओं, तो देखा आपने किस प्रकार आज चार लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम अपने बच्चों की जिंदगी को खराब होने के लिए राजी हो जाते हैं। छोटी सी ही उम्र में उन्हें खेल कूद, पढ़ाई, खुशियों से परे ले जाकर दुख में लाद देते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ उन पर आ जाता है। ऐसा ही करने से बच गए सोहन लाल जी। समाज के डर और बच्चे के भविष्य में सही चुनाव करके जरूरी है हमारे आसपास गुड़िया की अध्यापिका जैसे लोगों का होना, जो हमें हमारे सही के लिए समझाते हैं और समाज में एक प्रगतिशील सोच को रखते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं। श्रोताओं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए, अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमें फोन कर सकते हैं या आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। फोन करने के लिए हमारा नंबर नोट करिए। हमारा नंबर है 9414066730। मैं फिर से एक बार नंबर दोहरा देती हूँ। हमारा नंबर है 9414066730। श्रोताओं, जिस प्रकार हमने आपको कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि हम अपने उन श्रोताओं के नाम आपके साथ साझा करेंगे जो हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं तथा हमसे बातचीत करते हैं, उनके नाम हैं देवीलाल जी बांसवाड़ा से, पलक जी कोटपुतली से, अशोक सक्सेना जी प्रताप नगर से, राजू जी उदयपुर से। श्रोताओं, आप भी इसी तरह जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम हमारी बेड़िया को। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या 13 साल की उम्र में गुड़िया की शादी कराना सही था या उसे अपने सपने पूरे करने देना चाहिए ये सही था? आप क्या सोचते हैं बाल विवाह के बारे में? सोचिए और हमें जवाब दीजिए। अब मैं आराधना आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। आइए अब सुनते हैं विधानसभा समीक्षा।
1: राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र आज सुबह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से शुरू हुआ। ये राज्य की 16वीं विधानसभा का छठा सत्र है। इस दौरान दो विधेयक पेश किए गए। विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच सदन की कार्यवाही करीब 21 मिनट चली। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल से मंजूरी प्राप्त विधेयकों का विवरण और जरूरी पत्रादि को सदन के पटल पर रखा गया। साथ ही विधायी काम के तहत गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय 2026 और राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक पुनर्स्थापित किया गया। कांग्रेस विधायकों ने जयपुर के मूक बधिर पोद्दार स्कूल की व्यवस्था और शिक्षा विभाग की ओर से मीडिया कवरेज पर लगाई गई कथित पाबंदी को लेकर त्रिमूर्ति सर्किल स्थित पोद्दार स्कूल से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायकों समेत अनेक बड़े नेता हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा के बाहर तक पहुंचे। संभवतः प्रदेश में ये पहली बार हुआ है जब विपक्ष की गैर मौजूदगी में सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष

वासुदेव देवनानी ने मॉनसून सत्र में पधारने वाले विधायकों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए विपक्ष की बेंचों को खाली देखकर पीड़ा भी जताई। स्पीकर श्री देवनानी ने कहा कि ये स्थिति ठीक नहीं है। विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है और उनके विषयों का सम्मान किया जाएगा। विपक्ष को मर्यादा और विधानसभा के नियमों के तहत अपने मुद्दे रखने चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि जिस गेट से आने की व्यवस्था है उसी गेट से एक एक करके सदस्य अंदर आ जाएं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विधायकों को एक एक करके सदन में आने की अनुमति देने की बात कही गई थी, पर वे नहीं आए। उन्होंने सत्ता पक्ष से भी अपेक्षा की कि सरकार विपक्ष के मुद्दों पर संज्ञान लेकर जवाब देगी। श्री देवनानी ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस विधायक दल की गैर मौजूदगी पर कहा कि विपक्ष बिना किसी कारण के सदन में अनुपस्थित रहा है। विपक्ष का ये व्यवहार लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था की अवज्ञा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में सदन की परंपराओं का पालन करने पर सहमति भी बनी थी। विधानसभा की स्वस्थ परंपराओं का पालन होना चाहिए। श्री पटेल ने आरोप लगाया कि विपक्ष गलत व्यवहार कर रहा है। सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखना सभी दलों की जिम्मेदारी है। वहीं मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी कांग्रेस विधायकों के सदन में गैर मौजूद रहने पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को सदन में आकर अपनी बात रखनी चाहिए। विरोध दर्ज कराने का भी एक तरीका होता है, लेकिन विधानसभा के मुख्य द्वार पर चढ़ना, उसे तोड़ने का प्रयास करना और जबरन भीतर घुसने की जिद करना सुरक्षा व्यवस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ है। विधानसभा में आने की जो निरंतर कई वर्षों से व्यवस्था चली आ रही है उसकी अवहेलना की गई है। श्री गर्ग ने स्पष्ट किया कि विधानसभा की गरिमा और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। इससे पहले कांग्रेस विधायक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में स्कूलों की स्थिति पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस विधायक पश्चिमी द्वार से ही अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कर्मियों से भी नोकझोंक हुई थी। सदन में विधायी कार्य के दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2026 पुनर्स्थापित किया। इस बात पर विधायक सुभाष गर्ग ने एतराज जताया तो स्पीकर श्री देवनानी ने कहा कि आज पुनर्स्थापित करेंगे तब ही कल से बहस कर पाएंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित किया। आगामी दिनों में विस्तृत चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक के जरिए प्रदेश में पेड़ों के संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है, तो वहीं गीतांजलि ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक के जरिए निजी विश्वविद्यालय से जुड़े कानूनी प्रावधानों को सदन की मंजूरी की प्रक्रिया में लाया गया है। आज सदन में पिछले सत्र और वर्तमान सत्र के बीच दिवंगत हुए पूर्व राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के निधन पर शोकाभिव्यक्ति और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल DY पाटिल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन भास्कर राव, पूर्व सांसद विष्णु मोदी, पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत और पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा तथा नवनीत लाल मीनामा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके शिक्षा, सुशासन और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका का स्मरण किया।
श्री देवनानी ने त्रिपुरा

0: पूर्व राज्यपाल डी वाई पाटिल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्री पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे थे। वे 2009 से 2013 तक त्रिपुरा और 2013 से 2014 तक बिहार के राज्यपाल रहे। समाज सेवा के लिए उन्हें वर्ष 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। श्री देवनानी ने बताया कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे दो बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। इसी तरह आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन भास्कर राव अगस्त से सितंबर 1984 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा के सदस्य भी रहे। तीन बार आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री रहे। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने पूर्व सांसद विष्णु मोदी के सार्वजनिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री मोदी 10वीं राजस्थान विधानसभा में पुष्कर तथा 12वीं विधानसभा में मसूदा से विधायक निर्वाचित हुए। वे 8वीं लोकसभा में अजमेर से सांसद रहे। उनका निधन 21 मार्च 2026 को हुआ। श्री देवनानी ने बताया कि पूर्व संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत 13वीं राजस्थान विधानसभा के लिए मसूदा से निर्दलीय रूप से विधायक निर्वाचित हुए थे और राजकीय उपक्रम तथा प्राकलन समिति के सदस्य रहे। श्री देवनानी ने बताया कि पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा 7वीं 8वीं 13वीं और 15वीं राजस्थान विधानसभा में कठुमर से विधायक रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई समितियों के सदस्य भी रहे। पूर्व विधायक नवनीत लाल निनामा 8वीं 9वीं 12वीं और 14वीं राजस्थान विधानसभा में घाटोल से विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा कार्यकाल के दौरान वे अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य और सभापति तथा सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। सदन ने दिवंगत नेताओं के प्रति शोक व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। विधानसभा सत्र के बीच ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में हुई इस शिष्टाचार मुलाकात में सत्र की कार्यवाही और सदन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में सत्र के दौरान इस तरह की मुलाकातें नियमित रूप से होती रहती है। मुख्यमंत्री के विधानसभा पहुंचने पर राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी देखी गई। मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष सदन से दूर रहा और सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आचरण पर सवाल उठाया। विपक्ष पहले ही जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचने का सरकार पर आरोप लगा चुका है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष को सदन में आकर सरकार से सवाल पूछने चाहिए। इस बीच यूसीसी बिल सत्र में सदन में रखा जा सकता है। बिल में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप जैसे व्यक्तिगत मामलों में समान कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं। बिल में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने और बहुविवाह पर रोक जैसे प्रावधान भी चर्चा में हैं। आदिवासी समुदायों की परंपराओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखने का प्रावधान बताया गया है। शोकाभिव्यक्ति के बाद स्पीकर श्री देवनानी की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति यानी बीएसी की हुई बैठक में मौजूदा सत्र के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। विधायी कार्य, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और अन्य कार्यों को लेकर समय निर्धारण पर विचार किया गया। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कल तक के लिए सदन का कामकाज तय किया गया है। कल प्रश्नकाल और शून्यकाल होगा। पहले दिन शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा तक प्रतीक्षा कीजिए।

श्रोताओं, अभी 8:30 से रात्रि 10 बजे तक आप हमारे कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले सुनेंगे। सबसे पहले 8:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, उसके बाद समाचार संध्या, फिर अंग्रेजी में समाचार, उसके बाद उर्दू में समाचार और 9:30 बजे कंट्री वाइड और इनसाइड। आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स स्कैन।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। स्पोर्ट्स कैंप के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रन, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैंप के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला सिंगल्स के साथ साथ मिक्स डबल्स में भी भारत की चुनौती समाप्त। एमएस एलवीन ने इंग्लैंड के साथ ड्रॉ खेलकर भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व चैंपियनशिप के अगले दौर में पहुंची। सेंट लुई में सिंगफील्ड कप चेस टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा दूसरे स्थान पर रहे। दूसरे डायमंड लीग में कल जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। और मलेशिया में ईस्ट बंगाल एफसी ने एएफसी महिला चैंपियंस लीग में रोवर्स एफसी को 12-0 से हराकर इतिहास रचा। तो शुरुआत करते हैं बैडमिंटन के साथ। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज चौथा दिन भारत के लिए सफलताओं से ज्यादा असफलताओं से भरा रहा है। मेजबान देश के लिए दिन के पहले महिला डबल्स मैच में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीत के साथ शुरुआत की। इधर पुरुष डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स से भी निराशाजनक परिणाम सामने आया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों की तालियों और स्टैंड से उठते शोर के बीच गायत्री और त्रिशा की जोड़ी ने कोर्ट पर कदम रखा। दोनों ये भूलकर उतरी कि उनके सामने रैंकिंग में सातवें नंबर पर मौजूद जापानी जोड़ी रिन इवानागा और की नाकानाशी हैं। पहले गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कांटे का मुकाबला रहा। एक दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद चलती रही। आखिरकार गायत्री त्रिशा ने बढ़त बनाई और पहला गेम 21-16 के अंतर से जीत लिया। इस जीत के बाद तो भारतीय जोड़ी ने ऐसी जबरदस्त लय पकड़ी कि जापानी जोड़ी मुकाबले में कहीं टिक नहीं सकी।

0: समर्थन के बीच गायत्री और त्रिशा ने दूसरा गेम 21-11 से जीतकर मैच को सिर्फ 44 मिनट में अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद दोनों ने ये तो माना कि दबाव उनके ऊपर था, लेकिन स्टैंड से मिलते समर्थन ने उनका काम आसान कर दिया।
1: गेटिंग ऑन कोर्ट डेफिनेटली देयर इज अ लिटिल प्रेशर, बट इट्स द काइंड ऑफ प्रेशर यू एंजॉय बिकॉज़ यू प्लेइंग इन दिल्ली। सो आई थिंक या इवन इन द फर्स्ट सेट वी वर डाउन 13-16, बट देन गॉट सम टिप्स फ्रॉम आवर कोचेस एंड या आफ्टर दैट वी इंप्लीमेंटेड इट प्रीटी वेल। सो या आई थिंक आई एम सुपर हैप्पी। आई थिंक द क्राउड इज सो अमेजिंग। आई थिंक इवन व्हेन वी आर इन द फर्स्ट गेम व्हेन वी आर डाउन ऑल्सो द क्राउड रियली कैरीड अस, एंड आई थिंक व्हेन इट्स हैपनिंग इन होम सोइल वी जस्ट नीड टू शो आवर पावरफुल मैचेस एंड एवरीथिंग दैट दे कैन सी।
0: हालांकि मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में जीत के लय को बरकरार नहीं रख सके। 15वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी को चीन की 6वीं वरीयता प्राप्त गुओ शिनवा और चेन फांगहुई ने 16-21, 5-21 से हरा दिया। ध्रुव और तनिषा ने माना कि वो अपनी रणनीति को लागू करने से चूके और गलतियां भी हुई।
2: वेरी इक्वली डिसअपॉइंटेड दैट वी कुडंट पुट अप द बेस्ट शो स्पेशली हियर ऑन द होम ग्राउंड। इट वाज अ गुड फाइट इन द फर्स्ट सेट बट समहाउ वी डिडंट हैव एनी कंट्रोल इन द सेकंड सेट एंड आई थिंक वी टुक एडवांटेज ऑफ दैट एंड वी प्लेड रियली वेल इन द सेकंड सेट। बट या आई थिंक वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट दैट वी डिडंट प्ले अप टू द मार्क टुडे एंड वी होप दैट वी कुड हैव डन अ बेटर परफॉर्मेंस टुडे।
3: I think it's my mistake. Like I should have been better there, but eventually I started making a lot of errors, and which took us they took a lead, and then you are under pressure, especially me, because I think it was me who was just making very easy mistakes, and then there's no plan if you keep making easy mistakes, and even the coach whatever he says won't work. I should have been a bit better.
0: पुरुष सिंगल्स में भी भारत को बड़ा झटका लगा। टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर उलट फेर करने वाले युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी आज अपनी लय बरकरार नहीं रख सके। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आयुष ने 11वीं सीड इंडोनेशिया के अलवी फरहान का पहले गेम में डटकर मुकाबला तो किया, लेकिन मौकों को भुना नहीं पाना उन्हें भारी पड़ गया। पहला गेम फरहान 21-19 से जीत गए। दूसरे गेम को इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने पूरी तरह से अपनी पकड़ में रखते हुए 21-11 से जीत लिया। इसके साथ ही मेन सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। आयुष ने माना कि उनके पास मौके तो थे, लेकिन वो उसे भुना नहीं पाए।
4: He was playing with more confidence and he was putting a lot of pressure from the net. I think that made the difference. Definitely he was not giving much chance, but I think when I had my chances, I was not really sharp between the lines. I think that made a lot of difference. I think but credit to him, he played much better badminton.
0: महिला सिंगल्स में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट पीवी सिंधु भी अपने रंग में नहीं दिखी। 9वीं सीड पीवी सिंधु ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन वही लय आगे बरकरार नहीं रख पाने के कारण पहले गेम में 3री सीड चीन की वांग जी यी से 11-21 से हार गई। दूसरे गेम में सिंधु ने वापसी की और मुकाबला 21-15 से जीता। तीसरे गेम में भी शुरुआती बढ़त के बाद चीन की खिलाड़ी को वापसी का मौका मिला। एक समय दोनों खिलाड़ी 17-17 की बराबरी पर थी, लेकिन कोर्ट पर दर्द से कराहती चीन खिलाड़ी ने अपना संतुलन बनाए रखते हुए लगातार 4 अंक हासिल किए और भारत की पदक की सबसे बड़ी उम्मीद सिंधु को 21-17 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। सिंधु ने माना कि उनसे अहम मौके पर कुछ गलतियां हुई।
5: शायद थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा था गेम 1, गेम 2 और गेम 3 भी बहुत इक्वल चल रहा था। थोड़ा पेशेंट रहना था इज व्हाट आई फील। सैड अबाउट इट, आई शुड हैव कन्वर्टेड दैट, बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ स्पोर्ट इज। यू लर्न, यू लूज अ लॉट, यू विन अ लॉट। आई मीन व्हेन यू लूज यू नीड टू डील विद इट एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम योर मिस्टेक।
0: भारत 17 साल बाद विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। टूर्नामेंट को लेकर दिल्ली में बैडमिंटन प्रेमियों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
6: और मेंस डबल्स में इस समय 5वीं सीड चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से चल रहा है। पहले गेम में भारतीय जोड़ी को कड़े संघर्ष के बाद 21-23 से हार मिली है। दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ताजा समाचार मिलने तक 11-8 से आगे है। अब बात हॉकी की। एमस्लवीन में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोलरहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। ग्रुप में चीन 7 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल पाकिस्तान पर 5-3 की जीत के साथ नीदरलैंड्स और बेल्जियम की संयुक्त मेजबानी में चल रहे विश्व कप हॉकी के दूसरे दौर में जगह बना ली, लेकिन भारत के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। सुनते हैं रिपोर्ट।
7: विश्व कप के नए प्रारूप

0: अनुसार पहले चरण में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली टीम अगर दूसरे नंबर की टीम पर जीत हासिल करके आगे बढ़ती है तो दूसरे दौर में खेलने से पहले ही उसके नाम पर 3 अंक दर्ज हो जाएंगे। भारत इस मामले में नुकसान में है क्योंकि पहले चरण में इंग्लैंड से हारने के कारण भारतीय टीम दूसरे दौर में उसके खिलाफ नहीं खेलेगी, जबकि इंग्लैंड पहले दौर के 3 अंक लेकर इस दौर में पहुंची है। इसके मायने ये हैं कि भारत को बाकी दोनों टीमों से जीतना ही होगा। भारत ने पूल डी में वेल्स को 3-1 से और पाकिस्तान को 5-3 से हराया है, जबकि इंग्लैंड से 2-4 से हार गई थी। नए प्रारूप के अंतर्गत पूल डी की दोनों शीर्ष टीम और पूल ए की इस दो शीर्ष टीम से पूल ई बना है, जिसमें से पहली दो टीम सेमीफाइनल में जाएंगी। वहीं पूल बी और सी की शीर्ष दो टीम पूल एफ में एक दूसरे से खेलेंगी और पहले दो स्थान की टीम अंतिम 4 में पहुंचेंगी। पूल ए में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम नीदरलैंड शीर्ष पर है, जिसे आज देर शाम जापान से अंतिम ग्रुप मैच खेलना है। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए नीदरलैंड का जीतना लगभग तय है, क्योंकि जापान पहले दोनों मैच हारकर दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका है। वहीं दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 8वें स्थान पर मौजूद अर्जेंटीना ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। पॉइंट टेबल में फिलहाल अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है। दूसरे दौर में भारत का पहला मैच पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीदरलैंड से हो सकता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। 3 ओलंपिक और 3 विश्व कप जीत चुकी नीदरलैंड को उसके गढ़ में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। इसी मैदान पर 1973 में पहली बार विश्व कप जीतने वाली नीदरलैंड ने 1990 और 1998 में फिर खिताब जीता, जबकि पिछले 4 विश्व कप में भी वो 2 बार रजत और 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी है। पाकिस्तान पर जीत के बावजूद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने स्वीकार किया था कि उन्हें डिफेंस में सुधार करने की जरूरत है।
1: 100% डिफेंस, क्योंकि आगे आप मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज, वो चलेगा बहुत, जो पीछे मिस्टेक होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आई थिंक वो एक अच्छा ऐसा एरिया है। नॉट डिफेंस, अगर आप अपनी 25 में आप बॉल विन कर रहे हो तो मेक श्योर यू कीप द बॉल एंड गिव 100% पास। तो वही जो सिली मिस्टेक्स हैं कि हम अपनी गलती से पनिश हो रहे हैं, बट वही हम अगर अच्छा करेंगे तो आई थिंक वी रन गुड से।
0: अगर भारत अपनी गलतियों को सुधार कर मैदान पर उतरा तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो विशेष हमारे साथ हैं सर स्टूडियो में। विशेष, क्या कहते हैं नीदरलैंड्स के खिलाफ हालिया आंकड़े?
3: भारतीय टीम जो नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने जाएगी बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएगी, क्योंकि अभी जून में हुई FIH प्रो लीग में भारत ने नीदरलैंड को 3-2 से हराया था, जिसमें अहम भूमिका निभाई थी युवराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने। ये तीनों खिलाड़ी अभी भी टीम का हिस्सा हैं और अभिषेक शानदार फॉर्म में बने हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अभी दो गोल किए थे। और 1973 में भारत जब एम्स्टर्डम में खेलने के लिए उतरा था तो सिल्वर मेडल जीता था।
2: जी, ये तो बहुत रोचक आंकड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि भारतीय पुरुष टीम भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेगी अगले दौर में। अब बात कर लेते हैं शतरंज की। अमेरिका के सेंट लुई में सिंगफील्ड कप चेस टूर्नामेंट में भारत के आर प्रेगनानंदा दूसरे स्थान पर रहे। उधर महिलाओं के किंग्स कप में चीन की ग्रैंडमास्टर तान झुई गुई ने खिताब जीता। भारत की दिव्या देशमुख संयुक्त 5वें और कोनेरु हम्पी 8वें स्थान पर रही। सुनते हैं रिपोर्ट।
4: शानदार फॉर्म में चल रहे प्रज्ञानानंद क्लासिकल मुकाबले के बाद स्थानीय खिलाड़ी वेस्ली सो के साथ 5.5 अंक लेकर संयुक्त पहले स्थान पर थे, फिर भी भारतीय खिलाड़ी के हाथ से खिताब फिसल गया। क्लासिकल बाजी ड्रॉ रहने के बाद विजेता का फैसला करने के लिए 2 रैपिड प्लेऑफ खेली गई, लेकिन दोनों ड्रॉ रही। रैपिड में भी फैसला नहीं निकलने के बाद आर्मगेडन बाजी भी खेली गई, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला यहां भी ड्रॉ रहा। ये अलग बात है कि वेस्ली सो खेल के सहारे नहीं बल्कि नियमों के सहारे विजेता बन गए। प्रज्ञानानंदा सफेद मोहरों और वेस्ले सो काले मोहरों से खेल रहे थे, ऐसे में भारतीय खिलाड़ी के लिए जीतना जरूरी था। दूसरी तरफ अमरीकी खिलाड़ी सो के लिए ड्रॉ ही काफी था। मुकाबला ड्रॉ रहा और टाई ब्रेकर के नियम के अनुसार काले मोहरों से खेलने वाले सो चैंपियन बन गए। खिताब से चूकने के बावजूद प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर GCT फाइनल में जगह बना ली है। ग्रैंड चेस टूर का फाइनल 22 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें प्रज्ञानानंदा के साथ वेस्ली सो, पेवियानो कारुआना और विसेंट केमर होंगे। वेस्ली सो ने तीसरी बार सिंक फील्ड कप का खिताब जीता है। उन्होंने इससे पहले 2016 और 2025 में भी यही टूर्नामेंट जीता था।
2: और मुंबई में शीर्ष वरीयता प्राप्त मयंक चक्रवर्ती ने आज एशियाई जूनियर क्लासिकल चैंपियनशिप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारत के विघ्नेश अद्वैत वेमुला और कजाकिस्तान के अखिलबे इमांगली के मैच ड्रॉ रहे। और एथलेटिक्स की अब बात करते हैं। लुसाने डायमंड लीग में कल जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर से आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के जरिए नीरज डायमंड लीग फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। एक रिपोर्ट।

0: का के पैथिरानी ने नीरज को तगड़ी चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक ही जीत पाए थे। इसके तीन सप्ताह बाद ये दोनों खिलाड़ी फिर से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। 23 वर्षीय पैथिरानी इस सत्र में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। उन्होंने दोहा और रोम डायमंड लीग में जीत हासिल करने के अलावा ग्लासगो में 89.75 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक भी जीता। जून में रोम में 92.62 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ उन्होंने 90 मीटर का आंकड़ा भी पार किया था। श्रीलंकाई खिलाड़ी ने इस सत्र में अब तक जिन 9 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनमें से 8 में जीत हासिल की है। वह पहले ही डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। दूसरी तरफ चोपड़ा पिछले साल सितंबर में पीठ के निचले हिस्से की चोट से परेशान रहे हैं। इसके कारण उनकी वापसी दोहा में आयोजित डायमंड लीग तक टल गई थी। ग्लासगो में वह पूरी तरह से फिट नहीं थे, लेकिन फिर भी 85.83 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीतने में सफल रहे थे।
1: तो ये थी ज्योत्सना की रिपोर्ट। एथलेटिक्स से ही एक और खबर, एशियाई खेल 2018 के स्वर्ण पदक विजेता हिपाथलीट स्वप्ना बर्मन को प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। मलेशिया के कोटा किनाबालू में ईस्ट बंगाल एफसी ने आज एएफसी महिला चैंपियंस लीग 2026-27 के शुरूआती चरण में गुआम की रोवर्स एफसी को 12-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत की टीम ने इतिहास रच दिया। यह किसी भी भारतीय क्लब की एशियाई प्रतियोगिता के किसी भी वर्ग में सबसे बड़ी जीत है। उधर एफसी गोवा को कुआलालंपुर में आज जारी एफसी चैलेंज लीग 2026-27 के ड्रॉ में कुवैत की कदासिया एफसी, बांग्लादेश की फोर्टिस एफसी और तजाकिस्तान की एफसी रेगार टेजेट के साथ मुश्किल ग्रुप में रखा गया है। एक और खबर, टॉमी पॉल और जेसिका पेगुला अमरीका में सिंसिनेटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैंप में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल मैदान की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैंप की ईमेल आईडी sportscamp.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला

0: प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमालिया बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
4: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

0: योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।

भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबार्डो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिली।

0: 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुअर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी क्षेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यप।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपये पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग। दिस इज आका। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है नीरज, संगीतकार है सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।

आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है योगेश ने। तर्ज है सलील चौधरी की, फिल्म का नाम है रजनीगंधा।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू किया है महासतैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: आइए अब सुना जाए अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है पड़ोसन।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं फारूक कैसर, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी और फिल्म का नाम है पासपोर्ट।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: नमस्कार। आज के फनकार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिनकी बातें करते ही

0: और उनकी एक झलक पाते ही
1: दिल डांस मारे, डांस मारे, दिल ये डांस मारे, ओए हैप्पी इन माय हार्ट, दिल डांस मारे।
0: भाई दिल का ये हाल तो होना ही है, क्योंकि रात हो या दिन उन्हें देखकर सभी कह उठते हैं आपने बिल्कुल सही पहचाना। आज इस कार्यक्रम में बातें सैफ अली खान की।

15 अगस्त 1970 को देश की मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत अदाकारा शर्मिला टैगोर के घर किलकारी गूंजी गहरी आंखों वाले एक शरारती मासूम बच्चे की, जिसका नाम रखा गया साजिद अली खान। लेकिन हम इन्हें जानते हैं सैफ अली खान के

पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलकर खेल भावना तो अपने दिल में सजा ली थी यूएसएफ ने, लेकिन कदम बढ़ चले फिल्मी दुनिया की ओर। चुलबुले शरारती नटखट अंदाज से भरे हुए सैफ अली खान को 23 साल की उम्र में पहली फिल्म में काम मिला। ये फिल्म थी यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म परंपरा। लेकिन इस फिल्म को बनने में इतना समय लगा कि तब तक सैफ अली खान की दूसरी फिल्म पूरी होकर लोगों के बीच आ गई। इस तरह उनकी पहली रिलीज फिल्म बनी आशिक आवारा।

पहली ही फिल्म में अपने नाम दो चीजें कर ली, एक बेहतरीन नए चेहरे का अवार्ड और दूसरा नटखट शरारती रोमांटिक हीरो की इमेज। ये दोनों चीजें तो मिली, लेकिन नहीं मिली सबसे जरूरी चीज, फिल्म को दर्शकों का प्यार। सैफ को प्यार मिलता रहा और इसी तरह फिल्मी गाड़ी भी आगे बढ़ी, पर उन फिल्मों ने भी कुछ अच्छा न करने की परंपरा निभाई। सैफ अली खान फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के इम्तिहान से गुजर रहे थे और इसी बीच 1994 में आई फिल्म ये दिल लगी।

तारीफ दिल लगी। इस फिल्म ने सैफ अली खान के करियर को एक नई उड़ान दी। इसके बाद वो घर घर में पहचाने जाने लगे। शरारती बेफिक्र अल्हड़ किशोर के किरदार में जैसे निर्माता निर्देशक सैफ को ही देख पाते, यही हाल दर्शकों का भी था। शरारती मुस्कान के साथ जब सैफ की आंखें चमकती तो पर्दे पर उनका अभिनय सहज लगता। ऐसे में आई अक्षय कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

दर्शकों के बीच चुलबुले नटखट रोमांटिक हीरो की इमेज कायम कर चुके सैफ अली खान के करियर की गाड़ी कोयला इंजन की गति से बढ़ रही थी। थोड़ी सफलता के बावजूद उनके हाथ पूरी तरह स्टारडम नहीं आया था। उनकी फिल्में पसंद तो की जाती, गाने प्रचलित होते, लेकिन बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट का तमगा उनके नाम नहीं आता। एक वक्त आया जब फिल्म

क्रिटिक्स ने ये कह दिया कि सैफ का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन सैफ ने हारना नहीं सीखा था। यहाँ पिता से विरासत में मिली खेल भावना काम आई, जिसने सैफ को हार मानने नहीं दिया। वहीं माँ से मिला अभिनय का गुर भी उनके पास था। जरूरत थी तो एक ऐसे जरिए की, जिससे वो उसे लोगों के सामने रख सके।

दशकों की मेहनत रंग लाई और साल 1999 में सैफ अली खान को वो सफलता मिली जिसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म थी

ताकि कच्चे धागे ही अब तक सैफ को मिले थे, लेकिन इस बार इस कच्चे धागे को पक्का कर दिया अगली सुपरहिट फिल्म ने। सैफ के आत्मविश्वास को एक नए जोश से भरने वाली ये फिल्म थी राजश्री बैनर तले बनी मल्टी स्टारर फिल्म हम साथ साथ हैं।

0: I love you, I love you.
1: इस फिल्म के बाद सफलता भी सैफ के साथ साथ चलने लगी। साल दर साल सैफ अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे और एक बार फिर एक बड़ी सफलता का स्वाद चखा। ये फिल्म थी फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है।

फैन चाहता है। इस फिल्म में सैफ के किरदार सिद्धार्थ उर्फ सिड को सभी ने बेहद पसंद किया। सच्चे प्यार की तलाश में भटकते युवा के किरदार को सैफ ने जीवंत कर दिया था। वैसे वो इस वक्त तक अपने एक ही तरह के किरदार से ऊब चुके थे और कुछ बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में डिंपल कपाड़िया, जो इस फिल्म का हिस्सा भी थी, उन्होंने सैफ को समझाया।

ये वो वक्त था जब सैफ को लगातार सफलता मिल रही थी। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बातें होने लगी कि सैफ हर फिल्म में किसी न किसी दूसरे हीरो के साथ होते हैं। सवाल उठने लगा कि क्या सैफ अली खान अपने दम पर कोई फिल्म चला सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने में वक्त बर्बाद न करते हुए जवाब दिया अपनी एक फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी हम तुम।

हम तुम फिल्म में सिर्फ अकेले हीरो थे और इस फिल्म में उन्होंने इतने अलग अलग तरह के रूप धरे कि उनके अभिनय की सराहना किए बिना कोई रुक ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद सैफ ने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें वो अकेले हीरो थे और एक ऐसी फिल्म इसी दौर में उन्होंने की जिससे आलोचक भी उनके मुरीद हो गए। ये फिल्म थी महान उपन्यासकार शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म परिणीता।

परिणीता के बाद सैफ अली खान की इमेज तो बदल गई थी। वो अब सिर्फ नटखट चुलबुले रोमांटिक हीरो नहीं रह गए थे, बल्कि उनके अंदर के गंभीर अभिनय की एक झलक लोगों के सामने आ चुकी थी और इस एक झलक ने ही सभी को प्रभावित कर दिया। पर अभी सैफ लोगों को और चौंकाना चाहते थे और ये काम किया शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो पर आधारित विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा ने।

अली खान के फिल्मी करियर से अलग हटकर अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैफ आम तौर पर लोगों से बेहतर व्यवहार करते हैं, किसी भी विवाद से दूरी बनाकर ही रखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके सैफ का कहना था कि वो खुद को इस काबिल भी नहीं मानते थे और उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना करने का विचार किया था, लेकिन जब उनके पिता ने उन्हें समझाया तो उन्होंने इसे सिर माथे रखकर स्वीकार किया।

बार माइल्ड हार्ट अटैक से गुजरने के बाद सैफ ने धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ दिया और अपनी सेहत को पूरी तरह काबू में कर लिया। इसका श्रेय उनके अनुशासन और दृढ़ निश्चय को जाता है। 48 साल की उम्र में भी सैफ अली खान अपने फिटनेस का इतना ध्यान रखते हैं

अभिनय में एक मुकाम बना चुके सैफ अली खान को सिर्फ अभिनय से ही संतोष नहीं था, वो कुछ और करना चाहते थे। वो कई अलग तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में देखना चाहते थे, उसमें काम करना चाहते थे और उनकी चाह ने उन्हें फिल्म निर्माता बनने पर मजबूर किया। बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी लव।

लव आजकल के बाद बतौर निर्माता उन्होंने कुछ और फिल्मों का निर्माण किया है। ये फिल्में हैं गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, एजेंट विनोद और

दौर के साथ चलते हुए सैफ अली खान वेब सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी अभिनीत वेब सीरीज सेक्टर गेम लोगों ने खूब पसंद की है। सैफ अली खान अपने अलग अलग अंदाज सहज अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी वो जगह बना चुके हैं जो उन्हें हमेशा हासिल रहेगी। अपने व्यक्तित्व और मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल करने वाले सैफ अली खान को विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सैफ अली खान इसी तरह अलग अलग विषयों पर फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों को जीतते रहें, यही हमारी कामना है।

0: आज के फनकार। यह कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता सैफ अली खान पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छह गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का मैं ही चैनल है। इस समय रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनाते हैं पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में मोहरा फिल्म से। गीत के बोल इंदिवर के हैं और धुन बनाई है विजू शाह ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में विजय पद फिल्म से। गीत के बोल फैज अनवर के हैं और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

श्रोतियों भी आपने अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में विजय पद फिल्म का गीत सुना। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आपको सुनाते हैं कुमार सानू की आवाज को फिल्म उफिया मोहब्बत में। गीत के बोल लिखे हैं रानी मलिक ने और धुन बनाई है निखिल विनय ने।

श्रोताओं भी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में स्वर्ग से सुंदर फिल्म का गीत सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के ही मधुम बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं तड़ीपार फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। गीत के बोल समीर के ही मधुम बनाई है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गाए तड़ी पार फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11 बजने हुए, अब से कुछ ही पल में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ 3री उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी

0: आया है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। एम्स्टर्डम में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ दो मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह के 5:55 पर रेड तरंग जरिए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, शुभ रात्रि, जय हिंद।